सुप्रभात। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि तदनुसार 16 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 5:48 और 35 सेकंड हो रहे हैं। हम हाजिर हैं आपकी सेवा में पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: विश्व की संभवतः सबसे प्रमुख व्यक्तिगत समस्या है चिंता। चिंता हमारे विचारों को कुत्सित बना देती है, आकांक्षाओं को कुंठित कर देती है, अरमानों को कुचल देती है, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को रोक देती है। अगर हम यूं कहें कि चिंता हमारी समग्र बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक शक्ति का ह्रास करती है तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक प्रसिद्ध विचारक बीचर ने कहा है, व्यक्ति काम करने से नहीं मरता बल्कि चिंता ही उसे मार डालती है। काम करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है किंतु चिंता तो ब्लेड पर लगे जंग जैसी होती है। मशीन के कलपुर्जे उसके चलते रहने से खराब नहीं होते, परंतु यदि कलपुर्जे आपस में अनावश्यक रूप से रगड़ खा रहे हो तो वे बहुत जल्द बेकार हो जाते हैं। चिंता ही वह घुन है जो अंदर ही अंदर व्यक्ति को खाए चली जाती है। मनुष्य अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर, चिंता मुक्त होकर और प्रसन्न चित रहकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। यदि हम स्वतः अपने आप में शांति और सुख का अनुभव करना चाहते हैं और जीवन को उसके वास्तविक रूप में आनंद पूर्वक भोगने के आकांक्षी हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपने आप में प्रसन्न चित्त बने रहने की प्रवृत्ति को जागृत करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि हम प्रसन्न चित्त और चिंता मुक्त कैसे हों। इस संबंध में बड़े बड़े संत महात्माओं, चिंतकों, विचारकों और दार्शनिकों

0: का कहना है, बीते को बिसार कर वर्तमान यानी आज की परिधि में जीवन जीने की कला को मूर्त रूप देने रहने का हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। कुछ लोग भूत और भविष्य में ही उलझे रहते हैं। हमें इस बात पर गंभीरता से मंथन करने की आवश्यकता है कि आज की कठिनाइयां ही आज के लिए कम है क्या? विगत और आगत का बोझ वर्तमान में एक साथ ओढ़कर चलने वाला प्रचंड पराक्रमी भी सफर में दम तोड़ देता है। इसलिए आगत को भी विगत की तरह भूलकर हमें वर्तमान का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हमारा काल आज है। कल नाम की कोई चीज है ही नहीं। कल करे सो आज कर। आगत यानी भविष्य की चिंता करने वालों की शक्ति व्यर्थ में ही नष्ट होती है। कल की चिंता छोड़ देने का अभिप्राय यह कदापि नहीं कि हम भविष्य के लिए समुचित उपाय ही न करें। भविष्य पर विचार और मनन होना चाहिए, योजनाएं भी बनाई जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य के लिए सम्यक आयोजन करने का उपयुक्त उपाय यही है, हम अपनी समग्र बुद्धि और अदम्य उत्साह के साथ आज के कार्य को अच्छी तरह संपादित कर लें, और यही भविष्य में हमारे काम आएगा। इस समय हम भूत और भविष्य के संधि स्थल पर खड़े हैं। एक ओर जहां कभी वापस नहीं आने वाला विशाल भूत है, वहीं दूसरी ओर भविष्य है जो तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। वर्तमान की उपेक्षा करके हम पल मात्र के लिए भी इन दोनों युगों में से किसी एक का होकर नहीं जी सकते। इसलिए जिस कालखंड में हम जी रहे हैं, हमें उसी कालखंड से पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए। मानवीय प्रकृति सोचनीय प्रवृत्ति है। वह वस्तु स्थिति से पलायन कर मद में चूर अपने उद्यान में ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिट्स ने लिखा है, सब कुछ बदलता है, केवल परिवर्तन का नियम नहीं बदलता। इसीलिए निरंतर परिवर्तित, अनिश्चित और अनबुझे भविष्य की गुत्थियां सुलझाने में हम आज के सुख से वंचित क्यों रह जाएं? आज ही शाश्वत है, हम आज का स्वागत करें। यही जीवन है, जीवन का सार है, इसी में विकास का वरदान है, कर्म का महात्मा है और सिद्धि का वैभव है।
1: ये था आज का चिंतन। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि सूचना है। विषय है वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं। जानकारी दे रहे हैं श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। आजकल जैविक खेती की बातें होती हैं, साथ में अनेक तरह से उत्पादन बढ़ाने की बातें भी होती हैं। जैविक कृषि में वर्मी कंपोस्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्मी कंपोस्ट एक जैविक खाद है जो कि बेकार कार्बनिक पदार्थों से एपिजाइक तथा एनिसिक केंचुओं द्वारा बनाई जाती है। एपिजाइक का मतलब हुआ सतह पर पाए जाने वाले और एनिसिक का मतलब हुआ सतह के अंदर पाए जाने वाले केंचुए। केंचुआ द्वारा कंपोस्ट बनाने की इस प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, जिसमें जैविक खाद और केंचुओं का उत्पादन साथ साथ होता है। इस विधि का विकास डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल ने किया था। इस खाद में गोबर की खाद की अपेक्षा नाइट्रोजन 1 से 1.5%, फास्फोरस 1.8 से 2% और पोटास 0.5% से 0.75% अधिक होता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवाणु, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, हार्मोन और एंजाइम भी पाए जाते हैं जो पौधों के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। अब आप जान लें वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएंगे। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम गड्ढे, लकड़ी की पेटी, प्लास्टिक क्रेट अथवा किसी अन्य प्रकार के कंटेनर में किया जा सकता है। गड्ढे या पेटी की गहराई 1 मीटर से कम रखना चाहिए और इसके नीचे 8 से 10 छेद जल निकास के लिए बना दें। किसी ऊंचे एवं छायादार जगह पर 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा बना लेना चाहिए। गड्ढे के सबसे निचली सतह पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी, ईंट अथवा पत्थर गिट्टी बिछा दें। मिट्टी की परत 2.5 से 3 सेंटीमीटर

0: मीटर मोटी बालू भी बिछा दें उसके ऊपर, बालू की परत के ऊपर 6 सेंटीमीटर दोमट मिट्टी की परत भी एक डाल दें। अब इस मिट्टी की परत को पानी छिड़क कर नम कर लेना चाहिए। इसके बाद 50 से 75 केंचुए इस मिट्टी की सतह पर बराबर की संख्या में डाल दें। अब नमी युक्त मिट्टी के ऊपर गोबर का ढेर बनाकर रख दें। गोबर के ढेर के ऊपर 2 से 4 सेंटीमीटर पुआल या सूखी पत्तियां बिछा दें। अब इसके ऊपर 20 से 25 दिनों तक पानी का छिड़काव आप करते रहें। 26वें दिन प्रति सप्ताह 2 बार आप जो कचरा है उसकी तह बनाकर रखते रहें। यह प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक कि गड्ढा भर न जाए। इसे सप्ताह में 1 बार पलटते रहें और उस पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। इस प्रकार जब गड्ढा भर जाता है तब कचरा डालना बंद कर दें। लगभग 40 से 45 दिनों बाद वर्मी कंपोस्ट बन जाने पर 2 से 3 दिन तक पानी का छिड़काव बंद कर दें। इसके बाद खाद निकालकर छायेदार जगह पर ढेर कर दें और थोड़ा सूखने के बाद 2 मिलीमीटर साइज की जाली से छान लें। इस तैयार खाद में 20 से 25% तक नमी होनी चाहिए। छनी हुई खाद को प्लास्टिक के थैले में आवश्यकता अनुसार पैक कर लें। क्योंकि यह खाद अत्यधिक पौष्टिक होता है अतः इसकी मात्रा गोबर की खाद से बहुत कम उपयोग की जाती है। अनाज वाली फसलों में 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप प्रयोग कर सकते हैं। खाद की ये मात्रा 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप दे सकते हैं। इसकी आधी मात्रा खेत तैयार करते समय दें। शेष आधी मात्रा में से आधी मात्रा यानी 12.5 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रोपण या बुआई के 15 दिनों के बाद दें। फलदार वृक्षों में आवश्यकता अनुसार 1 से 10 किलो प्रति पेड़ वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। किचन गार्डन और फूल के गमलों के लिए 50 से 100 ग्राम प्रति गमला पर्याप्त होता है। सब्जी वाली फसलों में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से कई लाभ होते हैं। वर्मी कंपोस्ट अधिक किफायती होने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाती है। इसके प्रयोग से सब्जियों फल एवं फूलों वाली फसलों में बीज का जमाव अपेक्षाकृत जल्दी होता है और पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है।
1: वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाए इस विषय पर अभी जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास सहाय। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है और ये समय है हिंदी में समाचार का। इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रिभोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।

0: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 500,000 आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देश वंदना से।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरित मानस से पाठ। मुख्य स्वर है ए हरिहरण का।

देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी

का कारण पूछती हैं, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है, कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा। हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहां से दूर परदेश में है और तुम यहां कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा? मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह, आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से पाठ, यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य सूचनाएं। कार्यक्रम में आज का विषय है कमर और गर्दन के दर्द के इलाज में फिजियोथेरेपी की भूमिका। इस विषय पर डॉक्टर रवि प्रकाश से बातचीत कर रहे हैं हरेंद्र आजाद।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कमर दर्द और गर्दन दर्द में फिजियोथेरेपी की भूमिका के बारे में। आप सभी जानते हैं स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए हम सबका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आए दिन हम देखते हैं हम में से कई लोग, हमारे आसपास में हमारे परिजन कमर दर्द या गर्दन दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं। तो क्या कारण है, क्या इससे बचाव के उपाय हैं और इसमें फिजियोथेरेपी कैसे कारगर है, इस पर हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हमारे स्टूडियो में हैं आज जाने माने पटना के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रवि प्रकाश। सर कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद अजय साहब।
1: सर जैसा कि हमने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं कमर दर्द और गर्दन दर्द के बारे में, और इस दर्द के निवारण में आपकी जो पैथी है यानी फिजियोथेरेपी कैसे कारगर है।
2: देखिए आज कमर दर्द और गर्दन दर्द इतना कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा आदमी को सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कमर के दर्द को हम लोग लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं और गर्दन दर्द को सर्वाइकल के नाम से जानते हैं। तो सर्वाइकल और लंबर बहुत कॉमन हो गया है ड्यू टू पोस्चर मेंटेन नहीं करने के कारण
1: जी।
2: दूसरा बहुत ज्यादा देर तक बैठ करके काम करने के कारण। तीसरा सर झुका करके काम करना, लैपटॉप यूज करना, मोबाइल यूज करना, ज्यादा देर तक स्कूटर ड्राइव करना, मोटरसाइकिल ड्राइव करना, कार ड्राइव करना, और उसके बाद जूता चप्पल सही से नहीं पहनना, क्योंकि जूता चप्पल के कारण भी स्पाइन पे बहुत ज्यादा भार पड़ती है। और खाने का सही मात्रा में नहीं होना, क्योंकि आज लोग ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, तो फास्ट फूड खाने से कैल्शियम का जो और मिनरल्स का जो मात्रा में मिलना चाहिए वो हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो ये सारा भार हमारे हड्डी पे पड़ता है, जो सर्वाइकल हड्डी और लंबर हड्डी, उसमें जो नर्व रहती है उस पे भार पड़ती है। इसी कारण सर्वाइकल और लंबर बहुत ज्यादा कॉमन है
1: जी। तो

0: तो ही समस्या है, ये समस्या आखिर कैसे उत्पन्न होती है? फिर अगर हम इसके निदान की बात करें, उपचार कैसे संभव है और फिजियोथेरेपी से?
1: देखिए, अगर आपको सर्वाइकल या लंबर हो गया है तो डैट मीन्स कि आपको पेन होने लगता है गर्दन और कमर में।
0: जी
1: तो अगर आपके प्राइमरी कोई डिजीज नहीं है और उसके बाद अगर ये दर्द हो रही है, तो सिंपल सा जो एक्सरसाइज है, स्टेटिक नेक मसल्स एक्सरसाइज, मतलब कि अपने हाथ को गर्दन के तरफ रख करके गर्दन को उधर ठेलिए 15 से 20 सेकंड, फिर इसके बाद उसके दूसरे साइड में 15 से 20 सेकंड ठेलिए, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा बारीक बारीक कर करके 6 बार से लेकर 10 बार तक इधर कर कीजिए और 6 से 10 बार दूसरे तरफ कीजिए, और दोनों हाथ को फिर सर के नीचे पीछे ले जा करके सर को ठेल करके अपने केहोनी को सटाना है। इसको स्टेटिक नेक मसल एक्सरसाइज कहते हैं। फिर दोनों हाथ को अपने केहोनी से शोल्डर पे रख करके राइट घुमाइए 10 बार और लेफ्ट 10 बार घुमाइए। इसको स्टेटिक नेक मसल एक्सरसाइज कहते हैं।
0: जी
1: इसी के लिए कि बहुत बार क्या होता है ना कि हड्डी और जो नस है उसमें ओस्टियोफाइट का फॉर्मेशन होता है, तो कुछ लोग गर्दन को इधर हिलाते हैं इधर हिलाते हैं, तो ऐसा ना करें, ताकि इस करने से जो उधर एक्स्ट्रा मसल्स और बोन का फॉर्मेशन होता है तो स्पाइनल कॉर्ड का वो डिजॉल्व मतलब कि डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसी कारण दूसरा प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
0: जी तो सर ये तो हुई कि किस तरीके से कौन से एक्सरसाइज करें हम गर्दन को लेकर के और कमर को लेकर के। सर अगर कमर को विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कमर दर्द की समस्या से, और आजकल जाड़े का सीजन चल रहा है और ऐसे में हमारे सोसाइटी में आजकल देखिए कि डायबिटिक होना आम बात हो गया है और कुछ कुछ तो मतलब जेनेटिक बीमारी भी लोगों में है, तो ऐसे में अगर इस तरह के दर्द हो और आप जो बता रहे हैं तो हमारे कई श्रोता हैं जो कि या तो बेहतर समझ नहीं पा रहे होंगे या देख नहीं पा रहे होंगे, तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के मार्गदर्शन में यह करना चाहिए या स्वतः कर लेनी चाहिए?
1: नहीं, नहीं। देखिए, अगर अगर आपके अगल बगल में कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं या सरकारी हॉस्पिटल हैं या
0: जी
1: पीएससी है या आपके कोई बगल में कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उनके मार्गदर्शन में एक्सरसाइज करें
0: जी
1: और उनके मार्गदर्शन में कमर के एक्सरसाइज और गर्दन के एक्सरसाइज सीख ले और घर में करें। और इसके साथ साथ अगर आप हीट थेरेपी लेते हैं, अगर गर्म पानी का में डाल करके एक तौलिया को गर्म करके उसमें से कर सकते हैं, या आप शहर में रहते हैं तो एक हीट पैड आता है उसको लेकर के गर्दन में और कमर में सिकाई करने से बहुत ज्यादा आराम मिल सकती है।
0: निश्चित रूप से तो बचाव के लिए आपका सजग रहना बहुत जरूरी है, और एक कुशल चिकित्सक कहें या फिजियोथेरेपिस्ट जिनके मार्गदर्शन में अगर आप ये कुछ नुस्खे जो डॉक्टर साहब बताए एक्सरसाइज करते हैं तो आप कमर दर्द और गर्दन दर्द की समस्या से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य सूचनाएं कमर और गर्दन दर्द के इलाज में योग की भूमिका। इस विषय पर फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका होती है, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रवि प्रकाश, इनसे बातचीत कर रहे थे हरेंद्र आजाद। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं आपको बता दें आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हालचाल। सुबह 7:25 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय गायन। कलाकार होंगे पंडित राम नरेश मिश्रा, इनसे हम सुनेंगे राग गुजरी तोड़ी। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन पेश करेंगे सुबह 9:10 पर, इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 10:30 पर। दोपहर 12:00 का समय है कार्यक्रम बिहार के लोक संगीत का। बिहार के लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मगही लोकगीत, राम विनय शर्मा कमल और अनिल कुमार अकेला की आवाज में। महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी जगत का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:05

सांध्यकालीन सभा में शाम 4:30 पर प्रस्तुत करेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। मगही कार्यक्रम मागधी का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर। ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल प्रस्तुत करेंगे शाम 6:30 पर। और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं शाम 7:00।

रात्रि 10 बजे प्रस्तुत करेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार, और रात्रि 10:30 पर आप आनंद उठा सकते हैं फिल्म संगीत का।

तो श्रोताओं, ये थे आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, फिर सुनेंगे हिंदी समाचार। इसे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तन्त्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में

0: तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दाम्बुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, हालचाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 जून और 16 जून का दिन भारतीय और विश्व इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं, वैज्ञानिक उपलब्धियों और कई प्रसिद्ध हस्तियों के जन्म और निधन के लिए दर्ज है। तो आज हम आपको बता दें कि आज का दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1606 में सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने मुगल शासक जहांगीर के अत्याचारों के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और लाहौर में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसलिए आज हम मनाते हैं बलिदान दिवस। इसके अलावा 1911 में आईबीएम की शुरुआत की गई थी। न्यूयॉर्क में आईबीएम कंपनी की स्थापना की गई, जो आज दुनिया की अग्रणी प्रौद्योगिकी और परामर्श कंपनियों में से एक है। 1963 में अंतरिक्ष में सोवियत संघ की वैलेंटिना तेरेश्कोवा उड़ान भरने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। 2007 में भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आज 16 जून को 1950 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ था। 1858 में आज ही के दिन भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के निकट युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो ये थे इतिहास से जुड़ी कुछ घटनाएं, जानकारियां हमारे पास और भी हैं, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये एक प्यारा सा गीत मन्ना डे की आवाज में।

0: कभी तो हंसाए।
1: श्रोताओं, योग हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग में शारीरिक व्यायाम, मुद्रा, ध्यान, सांस लेने की तकनीक और व्यायाम को जोड़ा जाता है। ये एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम करती है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है जो हमारे शरीर को लचीला, मजबूत और शांत बनाए रखने में मदद करता है। जैसे कि प्राणायाम। प्राणायाम सांस लेने की तकनीक है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और तनाव को कम करती है। ध्यान करके हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। योग तनाव को कम करने में मदद करता है। योग में सांसों पर संतुलन भी सिखाया जाता है। योग हमारे आंतरिक अंगों पर अधिक प्रभाव डालता है। योग से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। और योग हमारे तनाव को कम करने और मानसिक शांति प्रदान करने में भी मददगार साबित होता है। तो श्रोताओं, स्वस्थ रहें, योग करते रहें और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये एक और प्यारा सा गीत मुकेश की आवाज में, रजनीगंधा फिल्म से।

श्रोताओं, इस गाने के साथ ही हालचाल का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं भज्जी का लोकगीत। कलाकार हैं शैलेंद्र सिंह राकेश।

ओरे तोहरे चरण हितकारी ये प्रभु जी, तोहरे चरण हितकारी, तोहरे चरण

शैलेंद्र सिंह राकेश से अभी आप सुन रहे थे बज्जी का लोकगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आप सुनेंगे राम नरेश मिश्र से शास्त्रीय गायन। इनसे हम सुनेंगे राग गुजरी तोड़ी। पहले प्रस्तुत करेंगे विलंबित एक ताल में निबद्ध और फिर सुनेंगे द्रुत तीन ताल में निबद्ध। तबले पर इनका साथ दे रहे हैं डी काले। तो लीजिए सुनिए राग गुजरी तोड़ी राम नरेश मिश्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे राम नरेश मिश्र से शास्त्रीय गायन राग गुजरी तोड़ी। तबले पर इनका साथ दे रहे थे डी काले और सारंगी पर थे किशोरी प्रसाद मिश्र।
1: काल के ललाट पर, समय के कपाट पर कभी उभरा था एक प्रकाश स्तंभ, जो आज भी वैसा ही खड़ा है जैसा तब था। काल के थपेड़ों में कभी डूबा कभी उतराया, पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मूल मंत्र कभी न छोड़ पाया। जन जन से जोड़ा खुद को, बना प्रथम व्यक्ति से अंतिम व्यक्ति की वाणी, ऐसी है हम सबकी अपनी आकाशवाणी। साहित्य संगीत और कला को गर्भ में समेटे, लोक संस्कृति और लोक कलाओं को अपने तन पर लपेटे, गुजरी शताब्दी से दशकों तक इस देश की वाणी, मेरी अपनी आकाशवाणी अब और भी उन्नत और भी समृद्ध और भी प्रभावी हो गई है। समय की मृदुमंद मंथर गति में तिरता मेरा ये अपना संस्थान आज भी सुना रहा है अपना यशस्वी और तुमुल गान। 9 दशकों तक फैली इस अद्भुत संस्था की अद्भुत यात्रा के कुछ लम्हों कुछ पलों और एक छोटे से पड़ाव का साक्षी बना अदना बौना समय, जन जन की वाणी इस महती महान आकाशवाणी को उसकी 90वीं जयंती पर करता हूँ शत शत नमन और अविरल वंदन। प्रार्थना है कि

0: स्वीकार हो। शिवेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व सहायक निदेशक, आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यह आकाशवाणी पटना है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्या खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62370

0: मीट्रिक टन एलएनजी के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यार्ड्स का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की 0 सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए

0: तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहाँ से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बमवर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम

0: सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया, अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा, टेटनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे, to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at U.S. Air Force Base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt.

0: बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया, जबकि बेल्जियम और मिस्र का मैच एक एक गोल से बराबर रहा। अब खबरें तफसील से। स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के आला तरीन सरकारी एजाज द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बावकार एजाज पर स्लोवाकिया के सदर, स्लोवाकिया की हुकूमत और वहां के अवाम का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। एजाज कबूल करते हुए उन्होंने कहा कि ये एजाज भारत के 1 अरब 40 करोड़ अवाम और भारत व स्लोवाकिया के दरमियान देरीना दोस्ती के नाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एजाज भारत और स्लोवाकिया के अवाम के दरमियान मौजूद खलूस, एतमाद और मोहब्बत के मजबूत रिश्तों का मजार है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये एजाज दोनों ममालिक की आने वाली नस्लों को भी बाहमी दोस्ती और खसूसी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की तरगीब देगा और इस दोस्ती को आइंदा भी फरोग देता रहेगा। भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। ब्रेटिस्लावा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हमनसब रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के बाद फरीकैन ने अहम शोबों में बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल है। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ताल्लुकात का फरोग मुश्तरका अकायद, तरजीहात और मुस्तकबिल की अलामत है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबों में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फीको ने भारत की तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म के दौरे ब्रातिस्लावा के दौरान कई तारीखी फैसले किए गए, जिनमें भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को नुमाया तौर पर मजबूत करने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी के दौरे के दौरान कुल 11 अहम मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। इन मुआहदों में दिफा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, सियाहत, क्वांटम कम्युनिकेशन और मसनूई ज़हानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी और आला तालीम जैसे शोबों में ताउन बढ़ने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने में ताउन को मजबूत बनाने के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज ब्रातिस्लावा से रवाना होंगे और G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस जाएंगे। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम पुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दो मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में दो रोजा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियन पहुंचेंगे, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों उनका बाज़ाब्ता इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू नई शराकत दारियों का क़याम और बैन-अल-अक़वामी इत्तेहाद की अज़सरे नौ तश्कील है। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकत दार ममालिक के नुमाइंदे, नीज आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के साथ दो तरफा मीटिंगें भी मुतवक्की हैं। इसके बाद वजीर आजम फ्रांस के सदर

0: मैखों की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों की दावत पर फ्रांस के उस शहर का दौरा कर रहे हैं जिसे एक नहायत अहम, नतीजा खेज और हमाजहत दौरा करार दिया जा रहा है। काबिले जिक्र बात यह है कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में ये भारत की 13वीं शिरकत होगी, जबकि वज़ीर आज़म मोदी मुसलसल 7वीं मरतबा इस इजलास में शरीक हो रहे हैं। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंसों में भारत की मुसलसल शिरकत आलमी उमूर में मुल्क के बढ़ते हुए रोल और अहमियत की अक्कासी करती है। यह आलमी सतह पर अमन, सलामती, तरक्की और माहौलियाती पायदारी से मुतालिक चैलेंजों से निपटने में भारत के रोल और खिदमात के एतराफ की अक्कासी भी करती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: G7 मुल्कों के लिए भारत की स्ट्रेटजिक अहमियत अब ठोस इक्तसादी और तकनीकी शराकत दारियों की सूरत में मजीद नुमाया हो रही है। इसका सबूत हाल ही में तय पाने वाला भारत यूरोपीय यूनियन तजारती मुआहदा है, जबकि नीस में मुनक़िदा भारत इनोवेट्स प्रोग्राम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत का सरकारी AI पार्टनर मुल्क के तौर पर इंतखाब भी इसी सिलसिले की अहम मिसालें हैं। ये पेशरफ जाहिर करती है कि G7 ममालिक भारत को सिर्फ एक बड़ी मंडी के तौर पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, अख्तरा, मैन्युफैक्चरिंग और मजबूत सप्लाई चेन्स के शोबों में एक काबिले एतमाद शराकतदार के तौर पर भी देख रहे हैं। अहम बात यह है कि फ्रांस की G7 सदारत की जानिब से तय की गई मुतअद्दिद तरजीहात, जिनमें आलमी अदम तवाजुन को कम करना, बैन अल-अक़वामी शराकत दारियों का फरोग और मसनूई ज़हानत AI शामिल हैं, भारत की सलाहियतों और मफादात से करीबी मुताबकत रखती हैं। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले साल 6 और 7 मई की दरमियानी रात शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये वाजे पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता, अलबत्ता वो दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ऑपरेशन ने एक नई सुर्ख लकीर खींच दी कि अगर दहशतगर्दी को हुकूमत की पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका बराह रास्त और सख्त जवाब दिया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में वाकई दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी से तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। 9 और 10 मई को भारत दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने एक ही ऑपरेशन में एटमी सलाहियत रखने वाले मुल्क के 11 फजाई अड्डों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान फजाइया के तकरीबन 20% बुनियादी ढांचे तबाह कर दिए गए। इस ऑपरेशन के बाद आलमी सतह पर भारत को वसी हिमायत हासिल हुई और मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने भारत के मौकिफ की तायीद की। ये भारत की बढ़ती हुई आलमी साख और बैन अल-अक़वामी बयाने पर उसकी मजबूत गिरफ्त की अक्कासी करता है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, जो जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के कमांडर रह चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कारकर्दगी की भरपूर तारीफ की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: NDA हुकूमत दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर साबित कदम है और इस पर पूरी संजीदगी और अजम के साथ अमल पैरा है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मा।
0: हुकूमत ने अपने ताजा तरीन 15 रोजा जायजे में डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बरामद पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आज से नाफिजुलअमल डीजल बरामदी ड्यूटी 13.05 रुपये फी लीटर से 14 रुपये फी लीटर कर दी गई है। जबकि एटीएफ की बरामद पर महसूल 9 रुपए

0: पाँच पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 12 रुपये 5 पैसे फी लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर बरामदी ड्यूटी 1 रुपये 5 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। घरेलू खपत के लिए क्लियर किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटियों की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। रकीक कुदरती गैस एलएनजी लाने वाला जहाज दिशा बाहिफाजत अब नए हुरमुज से गुजर गया है। एलएनजी बरदार ये जहाज 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इस जहाज का इंतजाम शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया की क्यादत में कायम एक कंसोर्शियम कर रहा है। यह इन अव्वलीन तजारती जहाजों में शामिल है जहां अमरीका और ईरान के दरमियान इब्तदाई जंगबंदी माहदे के ऐलान के बाद अब नए हुरमुज को पार किया है। जनूबी कैलिफोर्निया के सहराए मोहावी में अमरीकी फिजाइया के फौजी अड्डे से परवाज होने के फौरन बाद एक B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसमें सवार सभी 8 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी फौज ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतला दी कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:20 पर एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर तैयारा गिरने के बाद हंगामी टीमें जाए वकूफ पर पहुंची। फिजाई फुटेज में बेस के रनवे के करीब सेहरा से काले धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। इसके बाद एयरफील्ड को बंद कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे में स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 साल गोलकीपर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इससे पहले ग्रुप जी के इफ्तिताही मैच में बेल्जियम और मिस्र का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। इसी तरह आज सुबह अमरीका के मियामी स्टेडियम में ग्रुप एच के मुकाबले में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच भी 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया फैजल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के स्लोवाकिया दौरे की खबर को अवलियत के साथ शाया किया है। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और स्लोवाकिया में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, नरेंद्र मोदी और रॉबर्ट फिको की मुलाकात, दिफा मसनूई जहानत, तजारत और सकाफती रवाबित को नई समझ देने का ऐलान। रोजनामा प्रताप ने अपने सफे अव्वल पर एक अहम खबर को शाया करते हुए पहली सुर्खी बनाई है, ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी अमन माहदा स्विट्जरलैंड में 19 जून को बाजाबता दस्तखत होंगे। अमेरिका ईरान मुफाहमतनामे का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खैर मकदम किया। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियाँ इस तरह हैं।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: त्रिपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर आज से प्रदेश के सभी प्रखंडों में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। 18 जून तक चलने वाले इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, ईकेवाईसी तथा लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सिवान में आयोजित शिविर में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: शिविर में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान व्य वंदन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, लखपति दीदी, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान और छात्रवृत्ति योजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। शिविर में 25 विभागों के अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे, जिस पर संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। शिविरों में हेल्प डेस्क, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की सहायता और स्वास्थ्य जांच शिविर की भी व्यवस्था रहेगी, जिससे लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन और सेवाएं आसानी से मिल सकें। लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर शिविर में पहुंचे, ताकि योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के प्राप्त किया जा सके। समाचार कक्ष से सविता पारीक।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की है। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि आगामी 15 जुलाई से प्रदेशवासी हवाई सेवा के माध्यम से ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण कर सकेंगे।
2: 15 जुलाई से मैंने टारगेट किया, एक टूरिज्म की व्यवस्था खड़ा करूंगा और पटना सिर्फ देखने के लिए जाए, राइड करने के लिए हेलीकॉप्टर में मात्र 2100 रुपया देगा और पटना से चाहे वो राजगीर हो, मुंडेश्वरी माता का मंदिर हो, चाहे पुतला भवानी का मंदिर हो, इन तमाम जगह को जाने के लिए भी हमने कहा है कहीं हेलीकॉप्टर लगाइए और बिहार के लोगों को बिहार की खूबसूरती दिखाने के लिए मात्र 6000 रुपया में सबको हेलीकॉप्टर की सेवा भी देने का काम।
0: पूर्व मध्य रेल 17 जून को होने वाली मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्र और पटना जंक्शन सहित विभिन्न स्टेशनों से 14 विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा। एडीजी रेल डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने बताया कि परीक्षा में लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए आज और कल विभिन्न रूटों पर ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पाटलिपुत्र जंक्शन और पटना जंक्शन से अररिया, नौगछिया, भभुआ रोड, गया, बक्सर, राजगीर और झाझा सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। इस बीच पाटलिपुत्र जंक्शन पर तोड़फोड़ और पथराव मामले में रेल पुलिस ने 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। रेल पुलिस के अनुसार घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों तक चीट पहुंचाने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में नवादा से 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें जैमर ऑपरेटर और बायोमेट्रिक एजेंसी से जुड़े कर्मी शामिल हैं। मामले में कुल 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि इसी भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को भागलपुर से भी गिरफ्तार किया जा चुका है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन हुआ है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेशवासियों को एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आज से 18 जून तक सभी प्रखंडों में सहयोग सह जन कल्याण शिविरों का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 जुलाई से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेल आज और कल 14 विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा। और मॉनसून की रफ्तार थमने से दक्षिण बिहार में गर्मी का असर फिर बढ़ा। 41.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुर

0: बिहार ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। राज्य में जनधन खातों में जमा राशि 30,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार बिहार 6,87,00,000 जनधन खाते के साथ देश भर में दूसरे स्थान पर है। इस मामले में उत्तर प्रदेश देश भर में शीर्ष पर है। इधर बैंकिंग सेवाओं की भागीदारी में भी बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है। प्रदेश के 629 पीएम श्री और राजकीय विद्यालयों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में आयोजित समीक्षा बैठक में बताया कि इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से कक्षा 7 से 11वीं तक के छात्र छात्राएं मिट्टी परीक्षण, नमूना संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारिक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मंत्री ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य के 160 विद्यालयों में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून का प्रसार थम गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले तीन दिनों से मॉनसून की उत्तरी सीमा मुजफ्फरपुर से आगे नहीं बढ़ सकी है। मॉनसून की सक्रियता में कमी आने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पथ निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया मूल रूप से स्वीकृत अलाइनमेंट के अनुसार ही चल रही है। प्रदेश की लगभग 1,00,000 आशा कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच और रोगों की पहचान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के साथ आशा सर्टिफिकेट प्रदान करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के माध्यम से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद लिखित और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित होगी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में बिहार और मध्य प्रदेश ATS ने संयुक्त कार्रवाई में मधुबनी से एक मदरसा शिक्षक को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार आरोपित इजहारुल हक पर पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में रहकर गोपनीय सूचनाएं साझा करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उसके ठिकानों पर तलाशी ली गई, जहां से दो मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 127 शराब माफिया की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय को प्रस्ताव भेजा है। ब्यूरो के DIG अजय कुमार पांडे ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी।
2: कुल 127

0: लोगों के विरुद्ध बीएनएसएस धारा 107 के तहत उनकी संपत्ति जब्ती करने की कार्यवाही भी हम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मादक पदार्थ के जो बड़े बड़े सेलर हैं इनके विरुद्ध। जिले में 89 मादक पदार्थ कारोबारी के विरुद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही का प्रपोजल हम लोगों ने बढ़ाया है और हो जाएगा और उन्हें निरुद्ध किया जाएगा जेलों में।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2026 में राज्य पुलिस ने प्रतिमा औसतन 3,50,000 लीटर से अधिक शराब बरामद की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। वहीं मद्य निषेध ब्यूरो की बरामदगी में 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मई तक मद्य निषेध अधिनियम के तहत 57,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें लगभग 20,000 कारोबारी शामिल हैं। पटना में सीबीआई की विशेष अदालत ने चर्चित अलकतरा घोटाले के एक मामले में ट्रांसपोर्टर डीएन सिंह को दोषी करार देते हुए उन पर 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में पथ निर्माण विभाग के 3 पूर्व कनीय अभियंताओं को बरी कर दिया गया। भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि जिले के जिन प्रखंडों में 20 सूत्री कार्यालय नहीं हैं, वहां जल्द ही कार्यालय उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जिले के प्रभारी मंत्री सह 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष नीतीश मिश्रा की उपस्थिति में आयोजित बैठक में श्री चौधरी ने कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर सभी प्रखंडों में इस संबंध में बैठक आयोजित की जाएगी। किशनगंज जिले में पुलिस ने रामपुर चेक पोस्ट पर 1,40,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से लगभग 700 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका और ईरान समझौते के लिए सहमत, स्विट्जरलैंड में 19 को किए जाएंगे हस्ताक्षर। दैनिक जागरण ने लिखा है, बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 का मसौदा तैयार, शहरों में अब बन सकेंगी ऊंची और अधिक क्षमता वाली इमारतें। दैनिक भास्कर लिखता है, दीपक प्रकाश मामले में सुप्रीम कोर्ट का सरकार और आयोग को नोटिस। प्रभात खबर ने लिखा है, पूरे दक्षिण बिहार में 20 तक गर्मी से राहत नहीं। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, पटना आरा में भीषण गर्मी के बीच स्कूलों का समय बदला। आज अखबार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सारे कोचिंग सेंटर हो जाएंगे बंद। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रदेशवासियों को एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आज से 18 जून तक सभी प्रखंडों में सहयोग सह जन कल्याण शिविरों का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 जुलाई से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेल आज और कल 14 विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा। और मॉनसून की रफ्तार थमने से दक्षिण बिहार में गर्मी का असर फिर बढ़ा, 41.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है। पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो। ये गजल आप समाअत फरमा रहे थे अबिदा परवीन की आवाज़ में, और यकीनन किसी भी इंसान का उसके पास ना होना दूसरे इंसान के लिए बास फिक्र होता है, और उससे जुड़ी हुई यादें उसे सहारा देती हैं। ऐसे ही सहारा ख़ानदानी जो निज़ाम है उसमें जो लोग अपने ख़ानदान की जिम्मेदारी उठाते हुए रोज़गार की मुनासबत से घर से बाहर को चले जाते हैं, उन लोगों की यादें भी उनके फ़र्द जो लोग उनके घरों में हैं उन्हें याद सताती है, और उनकी याद के सहारे ही वो तमाम लोग जिंदा होते हैं। आज ख़ानदान को रकम भेजने का ये जो आलमी दिन है यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली विद रेमिटेंस IDFR, ये भी उसी से जुड़ी हुई है सामीन, क्योंकि हर साल 16 जून को इसे दुनिया भर में मनाया जाता है। ये दिन जो है वो उन लाखों तारकीन वतन के मुआशी तआवुन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मखसूस है जो बैरून मुल्क मेहनत मजदूरी करके अपने ख़ानदानों को रकम भेजते हैं। मेहनत कशों का जो एतराफ़ है वो दुनिया भर में 200 मिलियन से ज़ायद तारकीन वतन की कुर्बानियों और मेहनत को तस्लीम करना, जो अपने 800 मिलियन ख़ानदानी अरकान की किफ़ालत करते हैं। इन रकम के ज़रिए तरक्की पज़ीर ममालिक में गुरबत को कम करने और रहन सहन के मेयार को बेहतर बनाने पर तवज्जो दिया जाता है। अगर इसके तारीखी पस मंज़र की बात करें हम सामीन, तो इस दिन को पहली बार 16 जून 2008 को इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक की कोशिशों से मनाया गया था, जिसे अक़वामे मुत्तहिदा के जनरल असेंबली ने 2018 में बाकायदा एक करारदाद के ज़रिए इस दिन को आलमी सतह पर मनाने की मंजूरी दी थी। भेजी जाने वाली जो ये रकम होती है वो गरीब ख़ानदानों के लिए खुराक, सेहत, तालीम और रिहाइश जैसे बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने का अहम तरीन ज़रिया होती है। तरसीलात ज़र का जो नसब से ज़्यादा हिस्सा है वो देही इलाकों में जाता है, जहाँ ये रकम ज़राअत, छोटे कारोबार और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने में मददगार और मुआविन साबित होती है। ये रकम अक़वामे मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ, बिलखसूस गुरबत और भूख के खात्मे में कलीदी किरदार भी अदा करती है। मौजूदा दौर के तकाजे और मुहिम की मुनासबत से अगर हम इसे देखें तो डिजिटल शमूलियत में बैंकों और मोबाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए रकम भेजने के अमल को आसान, तेज़ और महफूज बनाना और

0: आबादी के बारे में नियाज़ फतेहपुरी ने कहा था, इनके यहाँ कबीर के अखलाक और खुसरू के जहन का एक दिलकश इम्तजाज मिलता है। तो अब हमने दो शायर को आपको बताया, दो नाकिद को, कलीमुद्दीन साहब ज़बरदस्त नाकिद हैं, खड़े और खोटे की परख करने में देरी नहीं करते, नियाज़ फतेहपुरी साहब रूमानी मिजाज के शायर भी हैं, अफसाना निगार भी हैं और तनकीद निगार भी हैं। उन्होंने आपको बता दिया कि दिलकश इम्तिजाज है इनके यहाँ। ठीक उसी वक्त एक साहब ने नज़ीर के खिलाफ ज़बरदस्त बयान दिया, चूँकि दोनों पहलू आना चाहिए जब हम मुज़ाकरे में बैठे हैं, तो शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने जो जदीदियत और माँ बाद जदीदियत के अलम्बरदार हैं, जिससे दूर दूर का भी रिश्ता नज़ीर का नहीं बनता, तो उन्होंने एक जुमला कहा कि नज़ीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है। तो ठीक है, आज के हालात के मुताबिक अगर हम देखते हैं या शम्सुर रहमान फारूकी के मुताबिक देखेंगे तो नज़ीर के पीरियड को आप पहले देखना होगा। किसी शायर को जांचने और या परखने के लिए उसका अहद क्या है, उस वक्त के हालात, सियासी हालात क्या थे, उस वक्त के आवामी हालात क्या थे, उस वक्त के माली एतबार क्या थे, उस वक्त का तारीखी क्या पहलू क्या था, तो इन तमाम चीज़ों को जब हम देखेंगे तभी किसी शायर के बारे में हम सही राय कायम कर सकते हैं। यही वजह है कि शम्सुर रहमान फारूकी साहब का ये जुमला नज़ीर पे बहुत देर तक चल नहीं पाया, लेकिन कलीम साहब या नियाज़ फतेहपुरी का जुमला आज भी चल रहा है। इसलिए एक बार फिर कलीम साहब ने एक जगह कह दिया, देखिए, नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शंदा सितारा है। यानी जब कलीम साहब एक शायर को सितारा बनाए तो मेरे जैसा आदमी बिल्कुल मिन्नुअन मानने में ज़रा भी देर नहीं करेगा कि कलीमुद्दीन अहमद जैसा आदमी जब यह कह रहा है तो इसका मतलब है कि नज़ीर वाकई उर्दू शायरी के सितारा है। और अवाम में मकबूलियत उनको है ही, उनके सामने तो कोई नज़ीर अकबर आबादी के सामने तो कोई टिकता ही नहीं है, कोई शायर भी नहीं टिकता, कोई भी नहीं आज तक। आने वाले वक्त में क्या होगा कहना शायद गैर मुनासिब है। फिलहाल
1: इम्तियाज़ करीमी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में कौमी यकजहती यानी हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब की नुमाइंदगी मिलती है।
2: बिल्कुल, तौकीर साहब ने अभी बताया कि नाकिदीन ने भी उनको एक अजीमुल मर्तबत शायर कहा है,
1: तस्लीम किया है
2: जी। लेकिन आपने जो कहा कि कौमी यकजहती के नज़रिए से भी उनका मकाम, उनकी शायरी भी, वो यकीनन हम कह सकते हैं कि उनकी नज़र पूरे हिंदुस्तान पर थी और उनको हिंदुस्तानी शायर, खालिस हिंदुस्तानी शायर कहा जा सकता है। वो हिंदू मुसलमान के गम में, मातम में शरीक होते थे। अगर उन्होंने ईद पर नज़्म लिखी है तो होली पर भी नज़्म लिखी है।
1: बिल्कुल,
2: एक तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गुरु नानक को भी नज़र अकीदत पेश करते हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि वो कौमी यकजहती के शायर थे, वहाँ कोई तफरीक नहीं था। उनका, उनकी शायरी का असल मकसद इस्लाह मुआशरा था। समाज में जिस समाज में भी और जहाँ भी उन्होंने अच्छाई और खूबी देखी उसको अपने शायरी का मौजू बनाया, इस ज़िंदगी के बारे में भी लोगों को बताया। बल्कि उनके एक शेर का एक मिसरा तो घर घर में बोला जाता है, समझा जाता है, मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। वो है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो ये बंजारा नामा से है। तो गांव की औरतें, चाहे वो पढ़ी लिखी हो ना हो, वो खेत में धान काट रही हो, फसल उगा रही हो, लेकिन उनके मुंह से जब वो कभी गुस्से में होती हैं या किस कोई मिसाल पेश करना चाहती हैं तो शेर के इस मिसरे को ज़रूर पेश करती है कि सब ठाट पर आ रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। انہوں نے اسے شاعری میں یہ بتا دیا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، بنجارے کی طرح سے خانہ بدوش کی زندگی ہے، کبھی یہاں اور کبھی خیمہ اٹھا کر کے پھر دوسری زندگی کی طرف جانا ہے، اس لیے ہرس و حوث کو چھوڑ کر اصل کی طرف آنا چاہیے اور اس

0: ये जो दुनियावी जिंदगी है इसको एक मुसाफिर की हैसियत से समझना चाहिए और बरतना चाहिए। तो इसके साथ ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी
1: तमाम
0: मजाहिब पर अपनी शायरी की और उसकी खूबियों को भी बयान किया। होली पर लिखा, ईद पर लिखा, उसी तरीके से गुरु नानक की तारीफ़ की और दूसरे मजाहिब रहनुमा पर भी अपने अपनी बातें की। तो हम कह सकते हैं कि वो खालिस हिंदुस्तानी शायर थे, वो हिंदू मुसलमान के गम और मातम में बराबर के शरीक थे। उनको समाज की बुराई से वो तकलीफ़ महसूस करते और अपनी शायरी में ढालते।
1: शुक्रिया जनाब इम्तियाज़ करीमी ने बहुत ही खूबसूरती से इस बात की तायद की कि हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब की नुमाइंदगी नज़ीर ही के ज़िम्मे रही। अब हम प्रोफेसर तौकीर साहब आपकी जानिब आते हैं, आपसे हम ये जानेंगे कि नज़ीर अपनी नज़्म बंजारा नामा के ज़रिए दुनिया की बेसबाती का पैगाम देते हैं। अपने सामीन के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि बेसबाती और इंसानी अमल के दरमियान का ताल्लुक दरअसल है क्या।
2: देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि नज़ीर के यहाँ ये सब चीज़ें इसलिए मिल जाती हैं कि नज़ीर अकबर आबादी का कोई शायर नहीं, कोई उनका उस्ताद नहीं है।
1: बिल्कुल,
2: ये पहले शायर हैं जिनका कोई उस्ताद है ही नहीं, वरना सबके कोई ना कोई उस्ताद है, इनका कोई उस्ताद नहीं। तो जाहिर है वो सब चीज़ें आ जाएंगी जो आपने अभी पूछा। तो कोई उस्ताद नहीं, और नज़ीर अकबर आबादी मीर तकी मीर के हम असर हैं। तो जब हम असर हैं तो नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में नुमाइंदा शेर भी आ जाएगा। और इसी तरह से जो बेसबाती का आपने ज़िक्र किया, एक तनवीर हबीब तनवीर ने एक ड्रामा लिखा जिसका उन्वान है आगरा बाज़ार, और इसको सबसे पहले जामे मिल्लिया इस्लामिया में पर्दे पे खेला गया और दिखाया गया। उसमें इन तमाम चीज़ों की वजाहत आगरा बाज़ार में हो गई। हालांकि आगरा बाज़ार जिस वक्त लिखा जा रहा था उस वक्त तनवीर हबीब साहब के हबीब तनवीर के दिमाग में ये बातें ज़रूर थी, वो नज़ीर को बिल्कुल सामने रखे हुए थे और सामने रख के लिख रहे थे, इसलिए कि नज़ीर पैदा हुए दिल्ली में। आज बहुत कम लोग जानते हैं कि नज़ीर दिल्ली में पैदा हुए, चूंकि नज़ीर ने हमेशा अपना वतन आगरा बताया,
1: लेकिन पैदाइश
2: उनकी दिल्ली में है। वो तो एक जब वहाँ अहमद शाह अब्दाली
1: के फसादात के बाद,
2: जब 1757 में 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने जो हमला किया, तो उस वक्त वो अपनी वालदा को ले करके अकबराबाद, उस वक्त का अकबराबाद बाद का आगरा वो चले गए और फिर वहीं के होकर रह गए। और जब भी उन्होंने कहा तो उन्होंने अपना वतन हमेशा बताया आगरा, उन्होंने दिल्ली का जिक्र ही नहीं करते वो अपनी जबान से। ये तो मौर्रिख लिखते हैं कि वो दिल्ली में पैदा हुए, ऐसे ऐसे ये सब वजह थी जो यहाँ से वो निकल करके चले गए। इसीलिए जो बंजारा नामा का आपने जिक्र किया, तो बंजारा नामा में इसीलिए उन्होंने कहा, जो अभी जैसा कि हमारे बीपीएससी के मेंबर जनाब इम्तियाज़ करीमी साहब ने एक शेर पढ़ के सुनाया, ठाट पड़ा रह जाएगा, ये बहुत मशहूर जुमला है, ये टीप का बंद है उनका बंजारा नामे में जो नज़्म है उसका। और इसीलिए हम लोग जब बराबर कहते हैं कि साहब क्या गेहूं चावल मूठ मटर, क्या आग धुआं, क्या अंगारा, अब ये जो शायर इस तरह की बात करेगा चावल की मूठ की अंगारा की, जाहिर है धुआं की, तो ये सब सारी चीज़ें नज़ीर ने अपनी शायरी में लपेट लिया है। और उसी चीज़ को फिर भी कई जगह कहा उन्होंने, आदमी नामा में कहा, हाँ आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर है, अच्छा भी आदमी कहता है ए नज़ीर। तो ये सारी चीज़ें नज़ीर क्या मिलती है, दूसरे शायर क्या तो है नहीं। तो जाहिर है कि तमाम खूबियाँ नज़ीर की शायरी में हमारे यहाँ मौजूद हैं और हमें मिल जाती हैं, तो बेसबाती वगैरह सब इसमें आती हैं। तो यही है, और नज़ीर ने शायरी तो की, और सिर्फ शायरी की, शादी भी बहुत बाद में की, उन्होंने अपने अधेड़ उम्र में आकर के शादी की। जाहिर है कि वो आवाम की तकलीफ उनकी मुसीबतों में लगे रहे, उसका जितना मुमकिन होता है वो अपने तौर पे कोशिश करते थे कि मामलात हल हो जाएं, कभी हल हो भी गए कहीं नहीं भी होते थे, तो जब नहीं होते थे तो वो बहुत मायूस हो जाते थे।

0: जो रूसो ने दिखाया उसी चीज को हम पीछे जो अभी बोल चुके हैं वहां पे लाते कि हबीब तनवीर ने जो लिखा आगरा बाजार, मुझको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने भी रूसो को पढ़ा होगा। अभी चुके हमने अभी तनवीर को बहुत ज्यादा मुताला नहीं किया, करेंगे तो मालूम हो जाएगा इन्होंने पढ़ा होगा, चूंकि उनके भी उसमें आगरा बाजार में ये चीजें झलकती हैं रूसो की तहरीर का असर, तो इसलिए नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में भी वो तमाम चीज़ें हैं, होली भी है, दिवाली भी है, हर चीज़ का की अक्कासी हो रही है। तो इससे हमको लगता है कि नज़ीर की शायरी पर जाने या अनजाने रूसो का असर है, और चूंकि रूसो भी अवामी शायर थे फ्रांस में, उन्हीं की शायरी से फ्रांस में इनकलाब बरपा हुआ, इनकलाब बरपा जो फ्रांस में हुआ है उसमें रूसो की शायरी का, रूसो के लिटरेचर का बहुत बड़ा असर है, और उसका उसकी झलक अवामी शायरी के तौर पे हमारे यहाँ नज़ीर अकबर आबादी पे हमें नज़र आती है। तो इसलिए तो हम ये कह सकते हैं कि रूसो का असर नज़ीर की शायरी पे है। अब ये मजीद तहकीक की गुंजाइश है कि पूरे तौर पे है या नहीं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी के हवाले से मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इसमें रंगारंगी, मंजर निगारी, हकीकी, नफसियाती, कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी, मोहब्बत और रवादारी, दुनिया की बेसबाती, खुदा तरसी, इंसानियत जैसे तमाम मौजुओं की बेहतरीन तस्वीर कशी के ज़रिए इसे कमाल उरूज पर पहुँचाया। यही उनकी खसूसियत और इनफरादियत है। हम आज के मुज़ाकरे को यहीं इख्तिताम कर रहे हैं। इस खूबसूरत अदबी सफ़र में हम अपने रफ़का जनाब प्रोफेसर तौकीर आलम और जनाब इम्तियाज़ अहमद करीमी के बेहद शुक्रगुजार हैं। बिलखसूस आपने अपना कीमती वक्त हमारे सामईन के लिए वक्फ किया, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी की, इसके लिए हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं।
2: शुक्रिया।
1: सामीन, नज़ीर अकबर आबादी पर मुश्तमिल ये मुज़ाकरा आप समाअत फरमा रहे थे, जिसका उनवान था नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में उनका मखसूस अंदाज बयान। शुरका प्रोफेसर तौकीर आलम और इम्तियाज़ अहमद करीमी थे। आइए अब अगली पेशकश कला मौसिकी, इसमें मेहंदी हसन की आवाज़ में हम आपको ये गज़ल सुनवा रहे हैं। लीजिए, आपकी समातों के हवाले है, मुलाहिज़ा फरमाएँ।

तेरी हर चाप से, यानी हवा के झोंके से कोई पत्ता हिला या पत्ता हिल गया है, आठ आठ को चाप कहते हैं, कि तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग, इन्हें खुशी कि शायद महबूब आ गया।

आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं रसमंजरी।

श्रोता रस मंजरी कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए पहला गाना मोहित चौहान की आवाज में, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत ए आर रहमान का है और फिल्म का नाम है तमाशा।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं रसमंजरी और कार्यक्रम में लीजिए पेश है अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, ऐ दिल है मुश्किल फिल्म से। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल पर इस गाने की धुन बनाई है प्रीतम ने।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गाना। इशाद कामिल ने इस गाने को लिखा था और संगीत विशाल शेखर का था। और चलिए सुनते हैं अगला गाना वेक अप सेट फिल्म से। शंकर महादेवन ने इस गाने को संगीतबद्ध किया है, बोल जावेद अख्तर की और आवाज है शंकर महादेवन का।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्मी गानों का कार्यक्रम रसमंजरी, और कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गाना मोहित चौहान की आवाज में शादी के साइड इफेक्ट फिल्म से, जिसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत है प्रीतम का।

0: आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, इसके कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 17 जून 2026 को दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 06122222500 एवं 06124026349। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लें, 06122222500 और 06124026349। रिकॉर्डिंग की तारीख है 17 जून 2026 और समय है दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आइए सुनते हैं योग विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षक से बातचीत।
4: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम इनसे मिलिए में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष हासिल किया है और उनके पास समाज को बताने के लिए, देने के लिए बहुत सारे अनुभव हैं। तो ऐसे ही अनुभव आज हम साझा करेंगे। आज हमारे चर्चा का विषय है योग। इस विषय में विशेष जानकारी देने के लिए, योग पर प्रकाश डालने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रख्यात योगाचार्य हृदय नारायण झा जी को। हृदय नारायण झा जी योगाचार्य तो हैं ही, साथ में ये लोकगीत गायक, गीतकार, लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए हम गौरवान्वित हैं और हम स्वागत करते हैं हृदय नारायण झा जी आपका हमारे स्टूडियो में।
5: नमस्कार।
4: श्रोताओं, योग पर हम चर्चा करें और पतंजलि योग सूत्र की बात ना करें तो यह बिल्कुल ही अधूरी बात रहेगी। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है योगः चित्त वृत्ति निरोधः, इस वाक्य से परिभाषित किया गया है। तो यह तो मूल मंत्र है, इस पर विशेष रूप से हमें जानकारी देंगे हृदय नारायण झा जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस परिभाषा को जब पतंजलि ने योग के बारे में बताया कि यह योग है
5: जी,
4: तो इसका विस्तार क्या है, जनमानस इस वाक्य से, मूल मंत्र से क्या समझे?
5: जी जी, ये प्रथम सूत्र उन्होंने दिया योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने। इससे पहले उन्होंने कहा अथ योगानुशासनम, मैं अब योग का अनुशासन कह रहा हूँ। किस चीज का अनुशासन कहना है? तो योगस चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अब वो निरोध की अवस्था जो है उसके लिए अब उन्होंने अनुशासन बताना शुरू किया। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था में चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है।
4: चित्त वृत्ति से हम क्या समझ सकते हैं? हाँ, साधारण भाषा।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
4: बाद में हम इसके निरोध के
5: जाने। चित्त वृत्ति का ये आप समझ सकते हैं कि रूढ़ भाषा में ये समझिए कि हमारा चित्त जो है वो जन्म से बहुत ही ज्यादा चंचल रहता है। एक समय में चित्त कई जगह हमारा चंचल होके भटकता है। अभी यहाँ वो, अभी वहाँ, आंख बंद कीजिए तो 10 जगह हमारा चित्त चला जाता है
4: जी, जी।
5: तो जीवन जो है वह किसी उद्देश्य को लेकर चलता है। कर्तव्य कर्म के पथ पर आपको चलने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, आपको चलना ही है
4: जी, जी।
5: तो आप किसी कर्तव्य कर्म के पथ पर आप चलेंगे, किसी उद्देश्य को लेकर चलेंगे। और यदि मन आपका एकाग्र नहीं है, मन उसके प्रति लगनशील नहीं है, मन आपका उस कर्म के प्रति समर्पित नहीं है, तो सफलता तो मिलना मुश्किल हो जाएगा ना।
4: असंभव है।
5: असंभव।

इस गाने के साथ ही रसमंजरी का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से एक आवश्यक सूचना।

0: है,
1: जी
0: तो इसीलिए कहा कि जो आप योग द्वारा अभ्यास करके चित्त के वृत्ति को शांत करके आप अपने कर्म में प्रवृत्त होइएगा, तो जो आपका उद्देश्य रहेगा उसमें आप नियत समय, एक निर्धारित समय आप लक्ष्य कर लीजिए कि हमको इतने समय के भीतर हमको ये सफलता प्राप्त करनी है, और आप एकाग्र होकर के उसमें लग जाइए तो वो सफलता प्राप्त होगी। तो ये योग मार्गदर्शन करता है,
1: यानी एकाग्रता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनुशासन दिया।
0: हाँ।
1: आपने चर्चा की थी अनुशासन के बारे में,
0: जी जी,
1: तो बारी बारी से हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या क्या वो अनुशासन।
0: हाँ, अब देखिए उसमें है कि अब एक गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, 6 अध्याय में इसकी चर्चा है
1: जी,
0: योग में जब हम बैठते हैं तो किसी न किसी आसन में बैठते हैं,
1: जी जी,
0: तो वहीं से इसका आप यम नियम की मैंने चर्चा की, तो उन्होंने उसमें कहा है कि तत्रैकाग्र मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासनं युञ्जात योग आत्मा विशुद्धये। कहते हैं भगवान कि अब आप मन को एकाग्र करके बैठिए। वो एकाग्रता कैसी होगी? जिसमें चित्त और इंद्रियों की सभी क्रियाएं बंद हो।
1: सेंस ऑर्गन्स,
0: सेंस ऑर्गन, मोटर ऑर्गन ऑल्सो।
1: अच्छा,
0: 5 हमारे सेंस ऑर्गन है, अब 5 हमारे मोटर ऑर्गन है। ज्ञान इंद्रियां हो गई, आंख कान नाक जीव त्वचा, और 5 हो गई कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुख गुदा और उपस्थ।
1: अच्छा,
0: तो उसमें आप देखिएगा कि आजकल जितना रोग हो रहा है या मन की विकृति हो रही है या तनाव हो रहा है या आचार भ्रष्टता आ रही है या किसी तरह का व्यभिचार में लोग गिर रहे हैं, तो उसमें कर्मेंद्रियों का जो है वो बहुत बड़ा हाथ होता है। और कर्मेंद्रियों में हमारे योग में इसीलिए कहा गया है, गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मेंद्रियों में 2 पर आप यदि नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो आप जीवन में कैसा भी कठिन लक्ष्य को रखिए आप अवश्य हासिल करेंगे। और वो 2 कर्मेंद्रिय क्या है? एक है जीभ और दूसरा है जननेन्द्रिय। यही 2 ऐसी परेशानी, आप देखिए जीभ पर यदि आपका नियंत्रण नहीं है तो खान पान में आप परहेज नहीं कर पाइएगा, संयम नहीं रहेगा। तो खान पान में संयम नहीं रहने के कारण आज देखिए कई लोगों के जीवन शैली विकृति से संबंधित रोग उनको उत्पन्न हो रहा है। खान पान के कारण भी कई आदमी बीमार पड़ रहे हैं।
1: हाँ, अत्यधिक खान पान
0: से हो जा रहा है
1: और गलत खान पान,
0: गलत खान पान से
1: जी।
0: तो इसके चलते योग में बता दिया गया है कि वो आपको पहले बैठिए, योग करने के लिए तो आप इंद्रियों और चित्त की सभी क्रियाओं को स्टॉप करके बैठिए, तो मन एकाग्र होगा। और तब बैठ के क्या करना है दिया है कि बैठना क्यों है, तो योग से आत्मा की शुद्धि करने के लिए। तो आत्म शुद्धि के लिए अब आप चले जाइए फिर योग अभ्यास में पतंजलि में
1: जी,
0: तो वो चित्त और इंद्रिय की क्रिया कैसे बंद करके आप बैठिएगा, स्वतः नहीं बैठ सकते हैं आप ऐसे।
1: हाँ, क्योंकि वो कोई जन्मजात सिद्धि तो प्राप्त,
0: क्योंकि अभी मान लीजिए आज से आप योग अभ्यास करेंगे तो अभी तो आपका मन जो है आपके बस में नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: वो आप जब मन आपके बस में नहीं है तो मन कहाँ है? इंद्रियों के बस में है
1: जी।
0: मन इंद्रियां अपने अधीन ले ली, अब इंद्रियां आंख है वो कहती है कि ये पिक्चर देखो ये दृश्य देखो, अब उधर आंख लगा दिया। कान कहता है कि ये गाना सुनो ये धुन सुनो, तो उधर कान चला गया। तो मन इंद्रिय के अधीन रहता है।
1: कहने का मतलब कि अंदर नहीं देखकर इंद्रियां बाहर
0: बाहर रहती है,
1: आपको दिखाने का प्रयास
0: करती है। मतलब मन इंद्रिय के अधीन है, तो मन को इंद्रिय के अधीन से खींच करके
1: जी
0: अपने बस में करने के लिए और इंद्रियों को भी नियंत्रण में करने के लिए योग में पहले दिया गया अष्टांग योग में यम और नियम। यम नियम से स्वतः, यम नियम का पालन करके देखिए महीना दिन 2 महीना उस आपका मन आपके बस में रहेगी, इंद्रियां आपके बस में आने लगेगी। वो क्या है यम नियम?
1: क्या है यम नियम?
0: यम है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह। सत्य तो सत्य है, यथार्थ है। सत्य में एक चीज ध्यान में रखना चाहिए जो सबके लिए सत्य है, धरती चांद सितारे हवा पानी ये सबके लिए सत्य है,
1: यूनिवर्सल ट्रूथ,
0: यूनिवर्सल ट्रूथ। और अहिंसा में 3 प्रकार की अहिंसा कही गई है आपको इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए
1: जी।
0: कायिक, शरीर से किसी को घात नहीं लगाना, चोट नहीं पहुंचाना। वाचिक, कहा गया है कि शरीर से आप किसी को मारते हैं तो उसका घाव यदि होता है या चोट होता है तो कुछ देर के बाद वो चोट खत्म हो जाता है,
1: भर जाता है,
0: भर जाता है
1: जी।
0: लेकिन वाणी से यदि आप

0: किसी की हिंसा कर दी, तो बहुत दिनों तक वो बात उसके मन से निकलती नहीं है। इन्होंने ये मुझे दुर्वचन कहा, वाचिक चोट हुआ ये।
1: अच्छा,
0: वाचिक चोट। अब मानसिक है क्या कि मुंह पर अच्छे अच्छे बात कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हमारे शुभचिंतक हैं, लेकिन परोक्ष होने पर उन्होंने किसी साजिश के तहत मानसिक रूप से मेरी हिंसा करवा दी।
1: अच्छा,
0: तो मानस हिंसा को और सबसे जघन्य माना गया है
1: जी।
0: तो कहा गया कि तीनों प्रकार की हिंसा से आप निवृत्त रहिए मन को एकाग्र करने के लिए।
1: सत्य हिंसा हो गया,
0: सत्य हिंसा हो गया। अब अस्तेय में है
1: जी,
0: न चोरी करिए, न चोरी के प्लानिंग में अपनी सहमति दीजिए, न छल कीजिए, न प्रपंच कीजिए। तो ये अस्तेय इतना पालन कीजिएगा तो अस्तेय का पालन होगा। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के पालन में देखिए कि यूथ पावर में तो खास करके कहा गया है कि 25 वर्ष की अवस्था जो हमारे पूर्वजों ने बाल्यावस्था ब्रह्मचर्याश्रम कर लिया उसको बाल्यावस्था कहा।
1: हाँ।
0: तो कहा कि इसमें क्या करना है, तो इसमें ड्यूटी दिया गया, कर्तव्य कर्म दिया गया कि आपको ज्ञान विज्ञान और कला सुशोभित व्यक्तित्व चरित्र धारण करना है,
1: चरित्र निर्माण करना है,
0: निर्माण करना
1: 25 वर्षों तक,
0: 25 वर्षों तक
1: जी।
0: क्योंकि 25 वर्ष के बाद जब आप ज्ञान विज्ञान कला सुशोभित चरित्र व्यक्तित्व लेके अपने गारस्थ वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे तो आप विहित जो उसका कर्म है वो करते हुए 50 वर्ष तक आप उस युवा अवस्था जिसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं उसको आप सफलतापूर्वक आप पास कर सकते हैं,
1: भटकेंगे भी नहीं,
0: भटकेंगे भी नहीं।
1: आपने तपस्या 25 वर्षों तक
0: 25 वर्षों तक की है तो इसीलिए वो ब्रह्मचर्य दिया गया
1: जी।
0: तो ये यदि रहेगा तो आपका बाहरी आकर्षण से मन आपका नियंत्रित रहेगा
1: जी।
0: अपरिग्रह, अपरिग्रह तो खैर लर्नर के लिए नहीं है, अपरिग्रह उनके लिए है कि आपके मन में अति संचय की भावना नहीं होनी चाहिए। आप बड़े घर के हैं, आपकी बहुत प्रॉपर्टी है, आप बहुत बड़े क्या करते हैं, प्रॉपर धनवान व्यक्ति हैं, तो एक बात अपने मन में बैठा के चलिए कि मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं इसका एक न्यासी हूं, मैं इसका एक रखवाला हूं।
1: अच्छा।
0: एक समय के बाद ये मुझे छोड़ के जाना है यहां से, इसीलिए अपरिग्रह किसी वस्तु के प्रति हम परिग्रही नहीं रहे,
1: अत्यधिक जमा करने की भावना
0: भावना हमें
1: नहीं होनी चाहिए।
0: तो ये हो गया 5 यम
1: जी,
0: 5 नियम है। नियम है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान
1: जी।
0: तो शौच जो है उसमें 2 प्रकार का शौच हमारे पूर्वजों ने बताया,
1: शुद्धता,
0: शुद्धता
1: जी।
0: तो शुद्धता में एक है कि बाह्य शौच और एक है आभ्यंतर शौच। तो बाह्य शौच में 3 प्रकार का शौच बताया
1: जी।
0: अब वो 3 प्रकार का शौच जो है वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कभी कभी चर्चा करते हैं तो उनकी भाषा में ये आप सुनिएगा, ये चीज आता है,
1: स्वच्छता की बात,
0: स्वच्छता की बात करते हैं और व्यवहार में भी स्वच्छता की बात करते हैं
1: जी, जी, जी।
0: तो 3 प्रकार की स्वच्छता जो हमारे पूर्वजों ने निर्धारित की उसमें कहा कि पहला शरीर शुद्धि, दूसरी बाह्य शुद्धि में है व्यवहार शुद्धि। तो कहा कि व्यवहार शुद्धि के लिए स्वार्थ का त्याग आवश्यक है।
1: अच्छा,
0: बिना स्वार्थ के त्यागे आप व्यवहार शुद्ध नहीं कर सकते हैं
1: जी।
0: इसका प्रमाण देखना चाहते हैं तो आप जो कुशल गृहिणी हैं उनके जीवन में देखिए
1: जी,
0: घर में कोई चीज लेके आप जाइएगा तो पति खाएंगे, बच्चे खाएंगे, बड़े बुजुर्ग खा लेंगे, उसके बाद ही वो खाएंगे
1: जी। व्यवहार शुद्धि का ये प्रमाण है,
0: व्यवहार शुद्धि का ये प्रमाण है
1: बिल्कुल।
0: और वही चीज देखिए हमारे देश में होता था कि पहले जो नेतृत्वकर्ता जितने भी हुए वो व्यवहार शुद्धि के लिए अपना स्वार्थ त्याग करके चले, कई उदाहरण आज भी हमारे देश में मिलते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी।
0: तो दूसरा हुआ व्यवहार शुद्धि और तीसरा कहा आहार शुद्धि,
1: भोजन में भी शुद्धि,
0: भोजन शुद्धि। भोजन शुद्धि किसको कहा, कहा कि न्याय संगत तरीके से, धर्म संगत रास्ते से उपार्जित किया हुआ जो धन है उससे जो अन्न आदि प्राप्त करके आप ग्रहण करेंगे उससे होगी आहार की शुद्धि
1: बिल्कुल।
0: तो ये इससे हो गया बाह्य शुद्धि और आभ्यंतर शुद्धि के लिए कहे कि अहंकार घमंड ऐठ अकर ये सब चीज को त्याग करके, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध आदि को त्याग करके आप अंतर की शुद्धि कीजिए। तो आंतरिक बाह्य शुद्धि हो गई। उसके बाद ये है कि हमसे करोड़ों धनवान है, करोड़ों हमसे गरीब हैं, तो हम जहाँ हैं भगवान ने मुझे जो प्रारब्ध से दिया हमें उसमें संतुष्ट रहना है, भगवान को धन्यवाद करना।

0: संतोषम परम सुखम,
1: संतोषा धनुत्तम सुख लाभ। अच्छा। कहा गया कि संतोष से, योग में कहा गया है, ये योग दर्शन का चीज मैंने आपको बताया
0: जी जी,
1: कि संतोष सिर्फ आप पालन करते हैं तो उत्तम सुख का लाभ आपको मिल जाएगा। ये सोचना नहीं कि कब मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा।
0: हाँ।
1: तो संतोष दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है तप। अब तप को कहिएगा तो उसको सारे जो रेडियो के श्रोता अभी सुन रहे हैं
0: जी,
1: उनके लिए ये तप है कि सभी वो मान के चलें कि संसार में सब तपस्वी है, जो कमा खा रहा है, जी रहा है, वो एक चाहे वो श्रमिक वर्ग का हो, चाहे वो एक पदाधिकारी का काम कर रहे हो, या वो प्रबंधकीय व्यवस्था में हो, या बहुत बड़े पद पर में बहुत बड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हो,
0: जो भी जिस स्थिति
1: स्थिति में हो, तप सबके लिए कॉमन है। वो कॉमन क्या चीज है? तप का साधारण अर्थ समझिए, जो हम आप सभी उसको अपने जीवन में अपना करके

0: या बहुत बड़े पद पर में बहुत बड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हों,
1: जो भी जिस स्थिति
0: स्थिति में हो, तप सबके लिए कॉमन है। वो कॉमन क्या चीज है? तप का साधारण अर्थ समझिए, जो हम आप सभी उसको अपने जीवन में अपना करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो है कि शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित करना।
1: सहिष्णुता।
0: सहिष्णुता
1: जी,
0: तो सहिष्णुता, आपको शरीर मजबूत रहेगा तो तप कीजिएगा,
1: बाहरी
0: तो
1: वातावरण से आपको
0: शरीर को तप बर्दाश्त करने की क्षमता रहेगी।
1: एक लेवल तक आप
0: एक लेवल तक उसको बर्दाश्त कर सकते हैं
1: जी।
0: मन में किसी तरह का उल्टा सीधा बात आया, उत्तेजक बात आया, अब उसको पचाने की क्षमता आपको आ गई
1: जी। जी, सामने वाले के प्रति द्वेष ना,
0: द्वेष नहीं आया।
1: सुनकर भी
0: आपको द्वेष नहीं आया
1: जी।
0: तो ये जो है, ये तप है
1: जी।
0: कहा गया है कि धर्म पालन करने के लिए जो कठिनाइयों को बर्दाश्त करता है उसको तप कहा गया है। तो इसमें शारीरिक, मानसिक और भावात्मक तीनों प्रकार की सहिष्णुता आ जाती है
1: जी।
0: चौथे नंबर पर है स्वाध्याय, नियम में
1: जी।
0: स्वाध्याय को हमारे रेडियो के श्रोता में जो युवा होंगे या किसी भी उम्र के हों, स्वाध्याय को आप साधारण शब्द में यदि सबके फायदे के लिए आप योग की दृष्टि से कहें तो ये टाइम मैनेजमेंट है, समय प्रबंधन।
1: अच्छा,
0: स्वाध्याय यदि आप करते हैं तो आपका एक मिनट का समय बर्बाद नहीं होगा। वो स्वाध्याय क्या है कि आप यदि किसी से वार्ता करते हैं तो वो हितकर वार्ता हो, प्रिय वार्ता हो, वो वार्ता शास्त्र पर आधारित हो, आपके शिक्षा पर आधारित हो, आपके बड़े बुजुर्गों द्वारा कभी उपदेशात्मक किसी ज्ञानोपदेश पर आधारित हो, वो कोई व्यर्थ बात नहीं हो,
1: जिसका कि कोई अर्थ निकले,
0: जिसका कोई अर्थ निकले
1: और उससे कुछ लाभ हो,
0: लाभ हो, तो ये स्वाध्याय हुआ। सत्संग, प्रवचन सुनना, ये सब भी स्वाध्याय होता है। लेकिन यदि किसी ने, किसी कोई मेरे पास नहीं है, हम अकेले हैं, तो अकेले में स्वाध्याय का दो रूप है, स्व का अध्ययन और स्व से अध्ययन।
1: अच्छा, अपना अध्ययन,
0: अपना अध्ययन,
1: इंट्रोस्पेक्शन।
0: इंट्रोस्पेक्शन किस चीज का? हमारी ज्ञान शक्ति क्या है, हमारी क्रिया शक्ति क्या है, हमारी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति क्या है,
1: अपने आप को जानना,
0: अपने आप को जानना। और अपना जो अभी तक मैंने ज्ञान, बुद्धि, विवेक हासिल की है, उस ज्ञान, बुद्धि, विवेक से संसार को देखना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में विचार व्यक्त करना।
1: अच्छा,
0: बिना इसके किसी के बारे में भी विचार व्यक्त नहीं करना। इसीलिए हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि श्रेयस नामंग बधनाति ज्येष्ठ पुत्रा कलत्रयो। हमसे जितने श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, बुजुर्ग हैं
1: जी,
0: उनके प्रति कोई अभिव्यक्ति के लिए हमको पहले स्वाध्याय करना चाहिए।
1: यानी बिना विचारे आप किसी पर कोई आक्षेप या कोई कमेंट आप नहीं करें, आप उनको जानिए,
0: उसके बाद
1: बोलिए।
0: तो ये आपको स्वाध्याय हो। और अंतिम जो है
1: जी,
0: उसका अर्थ यही है कि उस हिसाब से आपको ये लगेगा कि योग ही आज के समय में विश्व समुदाय को एक सूत्र में जोड़ने का कोई विधा है, जिसमें न धर्म है, न जिसमें पंथ है, न जिसमें कोई बाद है। ये सबसे अलग अपवाद है, ये आप कह सकते हैं कि इसके लिए पहले बता दूं कि ये ईश्वर प्रणिधान जो नियम का पांचवा है, वो है ईश्वर प्रणिधान। मतलब क्या कि जिसको आप सर्वशक्तिमान सत्ता समझते हैं अपने जीवन में, आप चाहे किसी भी धर्म पंथ के हों
1: जी,
0: तो आपके लिए योग कहता है कि आप किसी भी धर्म पंथ के हों, सबके लिए कल्याणप्रद है ये कि आप अपनी आत्मा में उनको, उनकी उपस्थिति है
1: जी,
0: वो आप महसूस करें कि हमारे भीतर में ही वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो जो भी है,
1: परम सत्ता जो भी है,
0: जिसके भी जो मानने वाले हैं, वो हमारे अंदर में है। गॉड रियलाइजेशन विद इन सेल्फ
1: जी,
0: इसको ईश्वर प्रणिधान आप कह सकते हैं
1: जी।
0: तो ये यम नियम यदि आप पालन करेंगे तो, अब इतना हम कहे तो आप समझ सकते हैं कि इसके पालन करने से चित्त और इंद्रियों की सभी क्रियाएं तुरंत बंद हो जाएगी।
1: तुरंत तो नहीं कह सकते, प्रैक्टिस करके,
0: वही प्रैक्टिस करते करते आपके मन में एकाग्रता आपको आ जाएगी
1: जी। जी,
0: अब कहा कि यम नियम पूर्वक इस दोनों का पालन करते हुए अब आप आसन का अभ्यास कीजिए, आसन के साथ प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। आसन के अभ्यास से आपको शरीर में, जब भी कहे सहिष्णुता की चीज, आसन के अभ्यास करने से

0: सर्दी गर्मी बरसात को झेलने की क्षमता इस शरीर को प्राप्त होती है, शरीर मजबूत दृढ़ होगा। प्राणायाम के अभ्यास से, प्राण से जुड़ा हुआ है प्राणायाम, तो प्राण आपके बस में आएगा। प्राण से जुड़ा हुआ है मन, मन आपके बस में आएगा
1: जी,
0: मन स्थिर हो जाएगा
1: जी,
0: मन की सभी उच्छृंखलताएं दूर हो जाएंगी।
1: आसन तो कई प्रकार के योग में बताए गए हैं।
0: हाँ,
1: तो ये तो किसी कुशल योगाचार्य के संरक्षण में ही सीखने की चीज है, मुझे
0: जी,
1: ऐसा
0: जी,
1: लगता है।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये आसन जो है वो तो आप गुरु के संपर्क में जाएंगे तो आप आसन सीखेंगे
1: जी। आपने जो कहा उससे यही निकल कर आता है कि यम नियम के जो तमाम पहलू हैं उनका पालन करके आज भी लोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य,
0: शारीरिक मानसिक भावात्मक तीनों रूप से इतने सबल हो सकते हैं कि अपने 100 वर्ष के जो दिया हुआ भगवान का ये हमारी आयु है, 100 वर्ष की आयु, उस आयु का भोग आप रोग रहित तनाव रहित होकर के कर सकते हैं
1: और लोगों के और देश के कल्याण में भी अपना योगदान,
0: बिल्कुल दे सकते हैं।
1: बिल्कुल, चर्चा के दौरान आपने कहा कि महिलाएं जो हैं व्यवहार कुशलता का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
0: बिल्कुल।
1: तो महिलाओं के लिए योग किस प्रकार से कारगर है, क्योंकि आजकल महिलाएं हो या पुरुष सभी घर के भी कार्य बाहर के भी कार्य कर रहे हैं और इसमें तनाव वगैरह शारीरिक कष्ट व्याधि रोग सब हो जाते हैं, तो खास करके गृहिणियां जो हैं उनके सशक्तिकरण के लिए
0: बिल्कुल
1: कैसे योग कारगर साबित होगा।
0: देखिए, गृहिणियां जो है वो उनको एक सशक्त स्वरूप देके तो उनका जन्म ही हुआ है
1: जी।
0: और एक स्त्री गृहिणी की बात आपने की, तो एक गृहिणी को अपने घर में ज्ञान शक्ति की अधिष्ठात्री के रूप में, क्रिया शक्ति के अधिष्ठात्री के रूप में, इच्छा शक्ति के अधिष्ठात्री के रूप में
1: जी।
0: तीनों रूप उसको जीना पड़ता है नित्य प्रति। जब वो शिक्षा की बात करती है तो ज्ञान शक्ति के रूप में वो अपने घर में अपना आचरण करती है
1: जी।
0: जब वो घर के कार्य में वो व्यस्त रहती है, खाना पीना से लेकर के बचत करने, उन्नति करने के बारे में जब सोचती है,
1: चलाने,
0: तो उस समय वो क्रिया शक्ति की स्वरूपा रहती है
1: जी।
0: और जिस समय में वो डिसिप्लिन मेंटेन करती है, ये नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त होने लायक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, इस पर जब उनका शासन होता है,
1: बच्चों को अनुशासित करती है,
0: तो उस समय उनका इच्छा शक्ति का ये है। इसे जो है सो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, तीन शक्ति के रूप में उनका जीवन जीने की कर्तव्य दिया गया है।
1: और तो, जब वो बाहर जाती हैं धनोपार्जन के लिए,
0: हाँ,
1: तो अर्थ शक्ति भी,
0: हाँ, अर्थ शक्ति भी वो लाती हैं
1: जी।
0: तो उनके लिए इसलिए आवश्यक है कि एक पुरुष के लिए सिर्फ पुरुष परिभाषा है, एक नाम है, लेकिन स्त्री में बहुत सारे सद्गुण हैं
1: जी।
0: तो उन सद्गुणों को विकसित करने के लिए उनमें अपनी स्थिति में, नारीत्व में, नारी का नारीत्व, मेरा तात्पर्य यह है कि एक नारी का कितना नाम है आप समझिए, स्त्री नाम है, वामा नाम है, मेना नाम है, मान्या नाम है, सुनरी नाम है, प्रमदा नाम है, योषा नाम है, जाया नाम है, ललना नाम है,
1: इतने कार्य हैं,
0: इतने क्वालिटीज हैं एक स्त्री में,
1: क्वालिटीज के आधार पे अनेक
0: अनेक उनके विशेषण हमारे पूर्वजों ने दिए
1: जी।
0: तो उनके लिए तो ये योग इसलिए है कि ये योग, चूंकि हमने जो जितना आसन प्राणायाम की बात में बताया, उनके लिए इसलिए आवश्यक है कि वो घर की भी आधारशिला होती हैं
1: जी।
0: तो एक स्त्री यदि स्वस्थ रहे और योग निष्ठ रहे तो उस घर का बच्चा भी योग निष्ठ होगा, उनके पति भी योग निष्ठ होंगे, उस घर में भी योग का वातावरण, योग निष्ठ वातावरण बनेगा। और जिस घर में योग निष्ठ वातावरण बनेगा उस घर में लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, माने जीवन शैली विकृति से होने वाले किसी प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों का जो प्रकोप है वो उस घर में नहीं होगा
1: जी। जी, जो आजकल बहुत देखा जा रहा
0: बहुत
1: है
0: देखा
1: समाज
0: रहा
1: में
0: जी।
1: और चित्त वृत्ति का तो निरोध होगा ही,
0: हाँ,
1: साथ में रोगों का भी निरोध योग से संभव,
0: पूरा।
1: तो इसी बात पर हम अपने इस चर्चा को आज विराम देना चाहेंगे, अंतिम सवाल करके आपसे कि किस प्रकार योग जो है आज के परिदृश्य में, पुरातन काल की जो संस्कृति हमारे ऋषियों ने दी वो आज भी किस प्रकार प्रासंगिक है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए
0: जी, जी।
1: कह सकते हैं सबके लिए,
0: बिल्कुल
1: किस प्रकार योग सबके लिए है।
0: हाँ, मैंने इस पर काम किया है, इसमें चूंकि शरीर से क्रिया होती है ना, इसमें तो सांस लेंगे तो सांस की क्रिया से प्राणायाम है, अंग

0: एक क्रिया से आसन है, आसन जो है वो आसन को करने में थोड़ा सा आपको गुरु के संपर्क में रहना होगा।
1: जी, जी.
0: तो आसन प्राणायाम के अभ्यास से कोई भी अब बच्चा रहे तो बच्चा में आप क्रियाशीलता का विकास कर सकते हैं। युवा में योग से सबसे जो चीज आप सूत्र वाक में पूछे हैं युवा के लिए है कि काम क्रोध लोभ मोह मद असूया, ये 6 दुर्गुण पर जब तक कमांड नहीं होगा तब तक एक युवा अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आसन प्राणायाम प्रत्याहार का अभ्यास जो है यम नियम का अभ्यास सहित आसन प्राणायाम उसमें वो शक्ति देगा जो वो काम क्रोध लोभ मोह मद असूया पर कमांड करके उसको जीत करके और कठिन लक्ष्य को वो प्राप्त करेगा।
1: जी, और युवा ही हमारे देश के कर्णधार,
0: युवा ही हमारे देश के कर्णधार है।
1: तो इस प्रकार से समाज का और देश का भी विकास
0: इसमें एक एक वाक्य में मैं यह भी आपको बता दूं
1: जी
0: कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में एक नई बात कही युवाओं के लिए
1: जी
0: कि हमारे युवा जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ते हैं उनमें ग्लोबल सिटीजनशिप की फीलिंग हो।
1: जी, ये किसी बात है,
0: ये अहम बात है
1: जी
0: कि वो समझे कि मैं एक वैश्विक नागरिक का एक इकाई हूँ, मैं किसी रीजन का नहीं हूँ। तो उसके लिए और सामाजिक दायित्व बोध के लिए योग आवश्यक शिक्षा के रूप में सभी कॉलेज विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलपति हैं या प्राचार्य हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किया गया है उससे जितनी जल्दी हो सके मैं युवाओं को जोड़ूं ताकि ये युवाओं में विकृति जो है काम क्रोध लोभ मोह आदि का जो दोष है वो उसको परेशान नहीं करे। और हमारे प्रधानमंत्री ने जैसा युवा भारत की परिकल्पना की है वो युवा भारत विश्व गुरु के रूप में भारत को प्रतिष्ठित करने में शीघ्रता से अपनी उपस्थिति दर्ज करें।
1: जी, तो योग में वह शक्ति है, वह क्षमता है कि भारत को विश्व गुरु बनाएगा।
0: सबसे पहले विश्व को ग्राम, आज हम लोग ग्लोबल विलेज कहते हैं,
1: परिकल्पना कर रहे हैं
0: लेकिन ग्लोबल विलेज को डिफाइन किया हमारे ऋग्वेद ने
1: जी,
0: और उसी के आधार पर में योग की परिकल्पना आई जो विश्व समुदाय के लिए हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहने का सबसे द बेस्ट पैकेज के रूप में योग को प्रतिपादित किया।
1: बिल्कुल,
0: और इस हिसाब से समझिए तो हम समझते हैं कि ये भारत की एक ऐतिहासिक तारीख के रूप में, धरोहर के रूप में ये दर्ज होगा कि इस देश में बहुत दिनों के बाद प्रधानमंत्री के प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब मनाया जाने लगा है। फिर से योग का जो वो कंसेप्ट हमारे वैदिक ऋषियों ने दिया था आज विश्व समुदाय उसको 21 जून को प्रतिवर्ष कर रहा है, उसको चरितार्थ कर रहा है।
1: बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए कि इसकी जो धरोहर है वो पूरे विश्व ने उसको माना और स्वीकारा है, स्वागत किया है उसका।
0: स्वागत किया।
1: जी, तो निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को इस बातचीत का लाभ पहुंचा होगा और हम ये कह सकते हैं कि योग से सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक आध्यात्मिक और व्यवहार कुशलता भावात्मक जुड़ाव और संपूर्ण मानवता में भाईचारे की भावना, जो भी तमाम सद्गुण है वो योग के अभ्यास
0: कुटुंबकम सारा का सारा इसमें है, समरसता का संपूर्ण भाव योग में है।
1: विश्व ग्राम की परिकल्पना योग का यह संदेश ही है कि योग सबके लिए। तो इसी बातचीत के आधार पर हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ योगाचार्य एवं पत्रकार गीतकार लेखक श्री हृदय नारायण झा जी उपस्थित थे योग के तमाम विषयों पर बात करने के लिए। इनका हम आभार व्यक्त करते हैं। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आभार।
2: इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे योग विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षक हृदयनाथ झा से सचिन कुमार की बातचीत। यह आकाशवाणी पटना है। एक आवश्यक सूचना, आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 से किया जाता है जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 17 जून 2026 को दोपहर बाद 3:30 से। आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0612-2222500 एवं 0612-4026349। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लें 0612 22225

0: 00 और 0612402634 9। रिकॉर्डिंग की तारीख है 17 जून 2026 और समय है दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारे स्टूडियो के घड़ी में दिन के 11 बज चुके हैं। एक अंतराल के बाद सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत और कार्यक्रम में सुना रहे हैं आपको पहला गाना अलीशा चिनॉय की आवाज में मर्डर फिल्म से। राहत इंदौरी के बोल हैं और इस गाने को संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।

आशा भोसले के गाय इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम। बिहार के लोक संगीत कार्यक्रम में सुनिए लोक भजन। कलाकार हैं राम विनय शर्मा कमल।

बिहार के लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। कलाकार थे राम विनय शर्मा कमल। आइए सुनते हैं पूर्वी गीत राम विनय शर्मा कमल के ही स्वर में।

0: बिहार के लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पूर्वी गीत। गीत अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये अंतराल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

बिहार के लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे झूमर। कलाकार थे राम विनय शर्मा कमल। आइए सुनते हैं लोक भजन, कलाकार हैं अनिल कुमार अकेला।

बिहार के लोक संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पूर्वी गीत। कलाकार हैं अनिल कुमार अकेला। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।

0: KIR at 90. अभी आप सुन रहे थे बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी जगत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को रेडियो सखी गुंजन कुमार का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, दूरी चाहे कितनी भी हो, रिश्ता कम नहीं होता। जो दिल में बसते हैं उनके लिए आंखें नम नहीं होती। मीलों का फासला तो सिर्फ नक्शों पर होता है, याद करने का कोई मौसम नहीं होता। बहनों, जब प्रियजन दूर होते हैं तो सबसे बड़ी ताकत होती है उम्मीद, फिर से मिलने की उम्मीद। और यह दूरी हमें सिखाती है कि उस इंसान की

हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है? दूर रहकर भी फ़ोन की एक घंटी, एक छोटा सा मैसेज या वीडियो पर जो मुस्कान लाती है, वो सुकून अनमोल होता है। बहनों, प्रियजन का मतलब है कि माता पिता हो, भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदार, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से वे हमसे दूर रहने लगते हैं। ऐसे समय में उनकी याद आना स्वाभाविक है। बहनों, जब प्रियजन दूर हो, तब हमें उदास होने के बजाय उनके साथ जुड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए। आज तो मोबाइल फोन, वीडियो कॉल जैसी सुविधाओं के कारण दूर रहकर भी बातचीत की जा सकती है। उनकी बातें सुनकर और अपनी बातें साझा करने से मन हल्का हो जाता है। प्रियजन की दूरियां हमारे उनके महत्व का एहसास भी कराती है। हम उनके साथ बिताए अच्छे पलों को याद कर सकते हैं और उनसे मिलने की उम्मीद बनाए रख सकते हैं। बहनों, ये दूरी केवल शरीर की होती है, दिलों की नहीं। सच्चा प्यार, विश्वास और अपनापन हमेशा लोगों को जोड़े रखता है। इसलिए जब प्रियजन दूर हों, तो उनकी यादों को संजोए रखें और उनसे संपर्क बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। और फिलहाल हम लेते हैं, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, और ऐसे समय में बड़े हों या बच्चे, छुट्टियां का उपयोग हम सही तरीके से करना चाहिए। गर्मियों की या त्योहारों की छुट्टियां सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये खुद को अपग्रेड करने और कुछ नया सीखने की

0: सबसे बेहतरीन समय होता है। अगर सही प्लानिंग की जाए तो छुट्टियों को सार्थक हम बना सकते हैं और नई चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि नए स्किल्स सीखें। यह समय कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर कोई नई भाषा सीखने के लिए बेस्ट होता है। आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट पर भी इसके कई फ्री कोर्सेज उपलब्ध हैं। छुट्टियों में हम अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं बहनों, जैसे चित्रकारी सीखना है, संगीत, नृत्य, खेल कूद या बागवानी। इससे हम अपनी प्रतिभा को भी निखार सकते हैं। रोज कुछ समय पुस्तक पढ़ने, नई कहानियां जानने और ज्ञान बढ़ाने में भी लगाना चाहिए। इससे भी हमारे सीखने की आदत बनी रहती है। सुबह जल्दी उठने की भी आदत डालिए। योग, रनिंग या मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। माता पिता हो, दादा दादी के साथ थोड़ा बैठिए, उनके अनुभव सुनिए, दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जाइए या फिर घर पर ही गेम नाइट प्लान कीजिए। बहनों, छुट्टियाँ केवल आराम करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर भी होती हैं। बहनों, नई और अच्छी बातें सीखकर हम छुट्टियों को यादगार और उपयोगी बना सकते हैं। और बहनों, योग भारत की प्राचीन और अमूल्य परंपरा है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं बल्कि यह मन और बुद्धि को भी मजबूत बनाता है। नियमित योग करने से व्यक्ति स्वस्थ, जागरूक और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। मैनु, आइए इसी विषय पर सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है स्वास्थ्य, ज्ञान और शांति के लिए योग। इस विषय पर वरिष्ठ योग शिक्षिका सारिका सिंह से बातचीत कर रही हैं गुंजन कुमार। स्वस्थ जीवन, ज्ञान और योग तीन ऐसे आधार हैं जो हमारे जीवन को बेहतर, खुशहाल और सफल बनाते हैं। यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, नई नई बातें सीखें और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो हमारा जीवन संतुलित और सुखद बन सकता है। बहनों, आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ योग शिक्षिका सारिका सिंह। सारिका जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमें बताइए सारिका जी कि योग क्या होता है और ये स्वास्थ्य, ज्ञान और शांति के लिए योग करना क्यों जरूरी है?
1: योग, सबसे पहले ऐसा जाने कि योग एक संस्कृत का शब्द है और युज धातु से लिया हुआ शब्द है,
0: जी
1: जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना।
0: हम्म,
1: जोड़ना किन बातों का? तो जोड़ना हमारे संस्कार का, सदकर्मों का, सद्विचारों का, सद्भावनाओं का। जितने भी सदकर्म है, जितने भी सत्संगत की बातें हैं, वो हमें योग सिखलाती है। इसके साथ ही योग हमें स्वस्थ जीवन जीने की कला भी सिखलाती है। योग एक सुगढ़ वैज्ञानिक पद्धति है, ये सहज प्रक्रिया नहीं है। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि स्वास्थ्य, ज्ञान एवं शांति का एक संपूर्ण मार्ग है। नियमित अभ्यास से तन एवं मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। जब हमारा तन स्वस्थ होगा, मन पर नियंत्रण होगा, तो निश्चय ही मानसिक शांति कायम रहेगी।
0: जी,
1: जैसा कि विदित है, योग अब पूरे विश्व में पुरुष, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सबके द्वारा किया जाने वाला एक जीवन शैली है, एक विधा है। सामान्यतः हम मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की अपेक्षा उनसे ही जीवन में चलने लगते हैं। हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते हैं, उनके अनुसार ही, मन के अनुसार चलते हैं। मन कर रहा है ये करने को तो वो करें। तो योग हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना सिखलाती है, अपने इंद्रियों को वश में करना सिखलाती है। और योग के माध्यम से हम अपना आंतरिक विश्लेषण कर पाते हैं। जब हम आंतरिक विश्लेषण करते हैं तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होने लगती है। हमारे अंदर जो अशुद्धियाँ हैं, या फिर यूं कहें कि हमारे अंदर जो अज्ञानता है या हमारे अंदर जो कमी है, जो नकारात्मकता है, उनको हम पहचानने लगते हैं। और उनको हम जब पहचानेंगे तो दूर करने की चेष्टा करेंगे। योग के माध्यम से हम अपने इंद्रियों को जब वश में करते हैं तो इन सब क्रिया के द्वारा हम अपने आप को परिष्कृत कर पाते हैं। इस प्रकार से हमारे अंदर नकारात्मक विचार का लोप होता है, हमारी आशंकाएं दूर होती है। अगर ये सब हमारे जीवन में प्रभावित करें, हमारे जीवन में रहें, तो नाड़ी तंत्र में इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, जिससे शारीरिक कार्य में असंतुलन पैदा हो जाता है। और इसके साथ ही जब हमारे शारीरिक कार्य में असंतुलन पैदा होगी तो निस्संदेह बहुत सारी बीमारियों और दुख से हमारा शरीर घिर जाएगा। तो इस प्रकार से हमें योग के माध्यम से अगर हम अपने इंद्रियों को वश में करते हैं, हम शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं।

0: प्राणायाम आसन आदि करते हैं तो इससे शरीर तो लचीला बनता ही है, मन एकाग्रचित होती है, चित्त की चंचलता दूर होती है, श्वास जो है हमारी वह रिदमिक होती है, लयबद्ध होती है। योगाभ्यास के माध्यम से हम अपने नकारात्मक गुणों और विचारों को दूर तो करते ही हैं, सकारात्मक विचारों और व्यवहारों को विकसित भी करते हैं। ध्यान की तकनीक हमें नकारात्मक गुणों और स्वभावों से दूर करने के योग्य बनाती है और जीवन में समस्याओं का बेहतर प्रबंधन करना सिखाती है।
1: और जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं की जिंदगी की बात करें तो उनकी जिंदगी काफी भाग दौड़ वाली हो गई है आजकल। उन्हें घर भी देखना पड़ता है, बाहर भी देखना पड़ता है और अपने व्यस्त जिंदगी में कहीं ना कहीं उनके मन में अशांति फैली रहती है। तो महिलाएं किस तरह से अपनी मानसिक शांति के लिए अपना स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं योग के माध्यम से?
0: बहुत ही सुंदर सवाल आपने किया है कि महिलाओं के लिए खासकर योग क्यों आवश्यक है।
1: जी
0: यूं तो योग हर किसी के लिए आवश्यक है, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबके जीवन में तनाव है। महिलाओं के जीवन में खासकर विशेष तनाव है क्योंकि उनकी भूमिका परिवार में, समाज में, और अगर वो कोई कार्य कर रही है, वर्किंग है, तो उनकी तो और भी ज्यादा समस्याएं हैं, या तनाव,
1: दोरी
0: उनके दोहरी भूमिका उनकी हो जाती है,
1: जी
0: दोहरा
1: जी
0: तनाव उनको झेलना पड़ता है।
1: जी
0: तो जिस प्रकार से पुरुषों को तनाव का सामना करना पड़ता है, महिलाओं में भी तनाव का एक एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, इसलिए कि घर परिवार को देखते हुए समाज में भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाना है, पारिवारिक जिम्मेदारी निभानी है, और इसके साथ फिर कार्यस्थल पर भी अपनी जिम्मेदारी को निभानी है। तो इन सब के लिए महिलाओं के लिए खास करके योग अत्यंत आवश्यक है। महिलाएं खास करके बहुत भावुक होती हैं, जब ये योग से जुड़ती हैं, योग को अपनाती हैं, तो उनके मन में सकारात्मकता और धैर्य का विकास होता है, जिससे वो दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना शांत मन से कर पाती हैं। अभी महिला आधी आबादी हैं, इसीलिए महिला का मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। महिला अगर स्वस्थ रहेंगी तो ही समाज का विकास संभव है। महिलाओं की भूमिका पुरुषों के बराबर, या यूं कहें कि पुरुषों से ज्यादा है।
1: बिल्कुल
0: जब तक वो मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगी तो विकास बाधित होगा। अगर बच्चे, पति और परिवार का साथ न मिले तो महिलाएं मानसिक रूप से बीमार हो सकती हैं, और जब मानसिक तनाव होगा तो शारीरिक रुग्णता होने लगेगी। जब तक वो स्वस्थ नहीं रहेंगी तो घर, परिवार और समाज के लिए सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पाएंगी, और अगर महिला कामकाजी हो तो उनका दायित्व तो और भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर पारिवारिक सहयोग नहीं होगा तो उनको अपना दायित्व का निर्वहन करना काफी कठिन होगा। अपने दायित्व को सही तरीके से करने के लिए अपने आप को चुस्त, दुरुस्त और मानसिक रूप से सबल बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए एकमात्र माध्यम योग है। योगाभ्यास से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास होता है। योग करने से मन की चंचलता दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है। योग से मन की चंचलता तो दूर होती है, मानसिक शांति भी होती है।
1: जी
0: इसके साथ ही जब ऑक्सीजन हमें ज्यादा मिलेगा शरीर के अंदर, तो इसकी इससे क्या होता है कि तनाव तो दूर होता ही होता है। तनाव दूर होने के साथ साथ जो सेल बीमार हो रहे हैं, टूट रहे हैं, उस सेल का रीजनरेशन, पुनर्निर्माण शुरू हो जाता है।
1: अच्छा,
0: हाँ, पूरे शरीर में रक्त का संचार अच्छे ढंग से होता है।
1: कहिए कि एक नई तरंग दौड़ जाती है पूरे
0: बिल्कुल
1: शरीर में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की महिलाओं की भूमिका सिर्फ माँ बेटी वाली नहीं है, आज की महिलाएं माँ बेटी और अपनी पारिवारिक भूमिका से कहीं ऊपर उठ करके, अपने चार दीवारी से बाहर निकल करके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी वो बहुत सारे निर्णयों को लेती हैं। तो इसके लिए उन्हें सबल होना बहुत आवश्यक है। सबल का तात्पर्य ये है मानसिक रूप से सबल, आध्यात्मिक रूप से सबल, और इसके साथ ही शारीरिक रूप से भी सबल और स्वस्थ होना उन्हें अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए जो एक माध्यम है वो योग ही एकमात्र माध्यम है, जो उन्हें एक सुती अगर सुबह के आधे घंटे वो अपने लिए निकालती हैं तो सारा दिन तरोताजा रहती हैं और अपने कार्य को। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं के अंदर हार्मोन का इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, असंतुलन। तो हार्मोन के असंतुलन को भी ये प्राणायाम की क्रियाएं, या कुछ एक आसन है, उष्ट्रासन है, भुजंग आसन है, और कई एक आसन है ऐसे।
1: तो ये जो सारे जो आसन आप बता रही हैं, तो ये क्या कोई खास उम्र में ये करनी चाहिए कि या किसी भी उम्र की ये महिलाएं कर सकती हैं?
0: नहीं, कुछ एक आसन है जो कठिन आसन है, वो सब उम्र की महिलाएं नहीं कर पाती हैं, लेकिन इसके दीगर कुछ ऐसे भी आसन है जिनको सारी उम्र की महिलाएं कर सकती हैं। हाँ, जैसे मंडूक आसन है, योग मुद्रासन, ये सारे लोग कर सकते हैं।
1: जैसे आपने बताया कि हार्मोन्स इनबैलेंस होता है, असंतुलन होता है।

0: है, तो ये चीज खासकर 40-50 की उम्र के बाद होना शुरू होता है।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: इस उम्र की महिलाओं को किस तरह का आसन करना चाहिए?
1: तो 40 से 50 की उम्र की महिलाओं के लिए प्राणायाम तो सबसे सर्वप्रथम सर्वोपरि है कि उन्हें प्राणायाम जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव की क्रिया जिसे ध्यान की क्रिया कहते हैं, ये तो करना ही है। आसन में उन्हें मंडूक आसन करना है, उन्हें शशांक आसन करना है जिससे कि डायबिटीज कंट्रोल हो, इसके साथ ही बीटा सेल एक्टिवेट

0: उम्र से पहले हो रहा है ये सब।
1: हड्डी से संबंधित
0: हाँ
1: बहुत सी
0: हाँ हाँ
1: बीमारियां
0: हाँ
1: होती हैं।
0: और जो कैल्शियम की कमी शरीर में होने लगती है, तो ये सब बैलेंस होने लगता है। ये
1: जी
0: आसन से इसका दूरगामी प्रभाव है।
1: तो हमें प्रतिदिन योग के लिए समय कितना निकालना चाहिए? कितनी देर में योग से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं?
0: देखिए, यूं तो करने के लिए आप 1 से 1.5 घंटा करें, लेकिन अगर कम समय है
1: क्योंकि
0: तो आप,
1: अक्सर महिलाओं को समय की कमी
0: कमी
1: रहती
0: रहती
1: है।
0: बिल्कुल, तो इसका भी एक निदान है। 20 से 30 मिनट का समय तो प्रत्येक व्यक्ति, न सिर्फ महिलाएं, पुरुष बच्चे सारे लोग निकाल सकते।
1: बिल्कुल।
0: तो महिलाओं को अपने लिए, ये सिर्फ अपने लिए, ये समय अवश्य निकालना चाहिए, आधे घंटे का कम से कम, 20 से 30 मिनट का, जिसमें वो चुनाव कर लें कुछ आसन का। जैसे बहुत सारे आसन हैं, अगर वो 10 आसन का चुनाव करती हैं तो आज 5 आसन कर लिए, कल नेक्स्ट डे फिर चेंज कर लिए, मतलब सप्ताह में चेंज करके कर लें, दो
1: हाँ
0: तीन दिन
1: हाँ
0: एक आसन, दो तीन दिन फिर एक आसन, लेकिन प्राणायाम को प्राथमिकता दें। वो
1: लेकिन नियमित अभ्यास जरूरी है।
0: नियमित अभ्यास जरूरी है, चाहे वो अभ्यास 20 ही मिनट का क्यों ना हो, उसमें 2 से 5 मिनट का ध्यान की क्रिया भी करने की चेष्टा करें, क्योंकि ध्यान की क्रिया जो है ये बहुत बड़ा हीलिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर।
1: जी
0: अगर कोई महिलाएं मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, या वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, या पारिवारिक रूप से किसी कलह और क्लेश का भी शिकार हो गई हैं, तो उस पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव है।
1: जो महिलाएं योग करती हैं तो उनका खान पान भी कुछ अलग होता है। किस तरह से उनका खान पान रहना चाहिए?
0: मैं यहाँ इस पर जोर देना चाहूंगी कि जो लोग योग से जुड़ते हैं और वास्तव में योग करते हैं, वो अपने खान पान को भी बहुत व्यवस्थित कर लेते हैं। 3 चीजों का विशेष रूप से त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। 3 सफेद चीजें हैं, चीनी, मैदा, नमक। जी, तो इसका सेवन कम से कम करें।
1: जी
0: हाँ, आहार में महिलाएं अपना खान पान और रहन सहन का ध्यान नहीं रख पाती हैं, तो जैसे वो 11-12 बजे खाती हैं, अगर कामकाजी हैं तो भूखे ऑफिस चली गई, नहीं, सुबह में कुछ भी उनको ग्रहण करने की आवश्यकता है। 9 बजे तक कुछ ना कुछ लें,
1: जी
0: चाहे वो स्प्राउट लें, फ्रूट्स लें, जो भी लें जो वो ले सकती हैं, खाली पेट ना रहें, इससे एसिडिटी होने लगता है, गैस की समस्या होती है, और इसका दूरगामी असर बहुत बुरा है।
1: जी
0: हाँ, इससे अल्सर होने लगता है। तो समय से खाना, जैसे पानी का प्रचुर मात्रा में सेवन करना, ये अत्यंत आवश्यक है।
1: जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बातें बताई सारिका जी कि योग से हम महिलाएं स्वस्थ भी रह सकते हैं और मानसिक शांति के रूप में योग अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो चलते चलते हमारे श्रोता सखियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: तो मैं महिलाओं से खास करके ये अपील करना चाहती हूँ कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करें, उन्हें अपनाएं, और अपने मन की शांति और शारीरिक संतुलन को प्राप्त करने में इससे, योग के माध्यम से मदद लें और सक्षम हो पाएं। तो मैं खास करके महिलाओं के दैनिक दिनचर्या में योग की आवश्यकता को इसलिए जोड़ने पर अब जोर दे रही हूँ कि इससे उनकी जीवन शैली तो उन्नत होती ही है, उन्हें निरोगी काया और स्वस्थ मन, शांत चित्त, एकाग्रता और कुशाग्र बुद्धि की वो स्वामिनी बन सकती हैं। और इसके साथ ही क्या होता है, जब महिला इससे स्वस्थ रहेंगी, सकारात्मक होंगी, तो पूरे परिवार, समाज और देश भी स्वस्थ रहेगा, सकारात्मक होगा। मतलब हम सबके घर की महिलाएं अगर स्वस्थ हों, तो उससे कहीं ना कहीं सामाजिक स्वस्थता, समाज में एक कल्याण की बात होगी, समाज में सकारात्मकता का प्रादुर्भाव होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा, उसकी सोच स्वस्थ होगी, तो निस्संदेह हमारे देश का कल्याण और देश हमारा स्वस्थ और सकारात्मक विचारों से, स्वस्थता से भर जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: धन्यवाद।
1: इतनी सकारात्मक बातें की योग के बारे में कि आज का ये समय भी और सकारात्मक हो गया
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: तो
0: धन्यवाद।
1: सच बहनों, स्वस्थ शरीर, अच्छा ज्ञान और नियमित योग जीवन को सफल और सुखमय बनाते हैं। हमें प्रतिदिन संतुलित भोजन करना चाहिए और नई बातें सीखनी चाहिए और कुछ समय योग के लिए अवश्य निकालना चाहिए। तो
0: जी
1: सारिका जी आई और इतनी सारगर्भित बातें बताई हमारी सखियों को। उम्मीद करते हैं बहनें आपकी बातें सुनकर जरूर अपने जीवन में अपनाएंगी। आप यहाँ आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों, अभी हम सुन रहे थे भेंट वार्ता। विषय था स्वास्थ्य, ज्ञान, शांति के लिए योग। इस विषय पर वरिष्ठ योग शिक्षिका सारिका सिंह से बात कर रही थी रेडियो सखी गुंजन कुमार। बहनों, गर्मी का मौसम आते ही तेज धूप और चिपचिपी गर्मी का कहर शुरू हो जाता है।

आता है। इस मौसम बहुत अधिक गर्म हवा चलती है, जिसे हम लू भी कहते हैं। बहनों, लू लगने से किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए हमें लू से बचाव के उपायों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहनों, लू से बचने के लिए बेहद जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी ना होने देना, भरपूर पानी पीजिए। देसी पेय पदार्थ यानी घर से बाहर निकलते समय या दिन के समय, जैसे आम का पन्ना हो, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी या बेल का शरबत जरूर पीजिए। ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित बनाकर रखता है। आप कभी भी घर से खाली पेट बाहर ना निकले, कुछ खाकर या कुछ पीकर ही बाहर जाइए। गर्मियों में हमेशा हल्के रंग या ढीले ढीले ढीले या फिर सूती कपड़े पहनिए, इससे शरीर को हवा लगती है और पसीना आसानी से सूख भी जाता है। बाहर निकलते समय अपने सिर को स्कार्फ, टोपी या तौलिया से ढकिए और धूप का चश्मा जरूर लगाइए। समय का ध्यान रखिए, दोपहर में 12 से लेकर शाम 4 बजे के बीच, जब धूप बहुत तेज होती है, तो बहुत जरूरी ना हो तो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाइए। यदि जाना बहुत जरूरी है तो छाते का उपयोग कीजिए। और खाने की बात करें तो बहनों, बासी भोजन और बहुत अधिक तला भुना खाना खाने से बचिए। इस मौसम में आप ताजे फल, हरी सब्जियां खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आप मौसमी फल, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी या संतरा जैसे भी फल खा सकती हैं, जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। खाने में आप कच्चा प्याज का भी इस्तेमाल कीजिए। धूप में निकलते समय जेब में छोटा कच्चा प्याज रखना भी एक पुराना और असरदार घरेलू नुस्खा है, माना जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आ जा रहा है, या तेज बुखार हो, या सिर दर्द हो, या बहुत कमजोरी महसूस हो रही हो, तो उसे तुरंत छायादार स्थान पर ले जाकर पानी पिलाना चाहिए। या फिर आप उसे ORS का घोल भी दे सकती हैं या नींबू पानी दे सकती हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आप उसे डॉक्टर के पास जरूर ले जाइए। और बहनों, लू से बचाव करके हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा तो कर सकते ही हैं, थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी हम गर्मी के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रह सकते हैं। और बहनों, रिश्ते हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर होती है। परिवार, मित्र और रिश्तेदार हमारे सुख दुख के साथी होते हैं। बहनों, रिश्तों को प्रेम, सम्मान, विश्वास और सहयोग के साथ बनाए रखने के लिए रिश्तेदारी निभाने की कला आनी चाहिए। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले हमें बड़ों का सम्मान करना और छोटों से स्नेह देना का भाव रखना चाहिए। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो बदले में हमें भी सम्मान मिलता है। विश्वास भी किसी भी रिश्तों की नींव होती है बहनों। यदि रिश्तों में विश्वास बना रहे तो छोटी मोटी गलत फहमियाँ भी आसानी से दूर हो जाती है। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने वादों को निभाने का प्रयास करना चाहिए। बहनों, मधुर वाणी और अच्छा व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। मीठे शब्द लोगों के दिल जीत लेते हैं, और जबकि कटु वचन रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा विनम्रता और शालीनता से बात करनी चाहिए। बहनों, आज के व्यस्त जीवन में अक्सर अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं, इसलिए समय समय पर फोन, संदेश या मुलाकात के माध्यम से संपर्क बनाए रखना चाहिए। छोटी सी बातचीत भी रिश्ता में नई ऊर्जा भर सकती है। रिश्तों में कभी कभार मतभेद भी हो जाती है बहनों, ऐसे समय में हमें धैर्य और क्षमा का परिचय देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को तिलों से लगाने के बजाय आप समझदारी से इस समस्या का समाधान भी कर सकती हैं। क्षमा करने वाला व्यक्ति रिश्तों को लंबे समय तक बनाए रखता है बहनों। हम रिश्तों में स्वार्थ नहीं बल्कि अपनापन रखना चाहिए। केवल अपने लाभ के लिए रिश्ते निभाना सही नहीं होता बहनों। सच्चे रिश्ते निस्वार्थ प्रेम, विश्वास और सहयोग पर आधारित होते हैं। सच बहनों, रिश्ते प्यार और विश्वास की डोर से बंधे होते हैं, और इन्हें सहेज के रखना ही रिश्तेदारी निभाने की सच्ची कला है। और हमारा भी एक रिश्ता है आपके साथ, और इसे हम निभाते हैं गीत के साथ। तो चलिए एक गीत का हम आनंद लेते हैं।

इसी गीत के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा होने का, तो अब दीजिए रेडियो सखी गुंजन कुमार को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी जगत। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अब आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय

0: नीतियों को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षयवट।
3: स्वास्थ्य, ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग का महत्व। श्रोताओं, आज हम एक ऐसी व्यस्त जीवन शैली में जी रहे हैं जहां हमारे पास सुख सुविधाएं तो बहुत है, पर क्या हमारे जीवन में वास्तविक शांति है? आज हम सब एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, चाहे ऑफिस का काम हो, व्यापार हो या घर की जिम्मेदारियां। इस भागम दौड़ में सबसे ज्यादा नुकसान हमारे अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति का हो रहा है। आज इंसान के पास आरामदायक बिस्तर है पर चैन की नींद नहीं। मेज पर अच्छे पकवान है पर खुलकर भूख नहीं लगती। स्कूल के बच्चों से लेकर समाज के अति व्यस्त लोगों को योग सिखाने के दौरान मैंने एक बात गहराई से महसूस की है, हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर के आलस, प्रमाद और अज्ञानता में छिपी है। आज हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, योजनाएं बहुत बनाते हैं, पर जब अमल करने की बात आती है तो हम कर्म के धरातल पर शून्य हो जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने ठीक ही कहा था, पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा अपना शरीर और मन ही स्वस्थ नहीं है तो हम अपने परिवार या समाज के लिए क्या कर पाएंगे। स्वास्थ्य और तनाव का वैज्ञानिक सच के बारे में बात करते हैं।

श्रोताओं, जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार चिंता, ईर्ष्या या स्वार्थ की भावना में जीते हैं तो हमारा शरीर 2400 घंटे तनाव की स्थिति में रहता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इससे शरीर में कार्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है। यही हार्मोन धीरे धीरे हमारे पाचन तंत्र को बिगाड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और शुगर जैसी बीमारियां की जड़ बनता है। व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है और इससे हमारे रिश्तों में करवाहट आने लगता है, जिसका प्रभाव हमारे बौद्धिक स्तर को प्रभावित करता है। योग यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक ब्रेक का काम करता है। आज सबसे पहले हम योग के बारे में जानते हैं। जैसे ही हम योग शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में कठिन आसन, शरीर मोड़ना या हिमालय पर बैठे तपस्वियों का चित्र उभर आता है। ये ऐसे लगता है जैसे साधु संत की बात हो रही है। वास्तव में योग का इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। योग का सीधा सरल अर्थ है जोड़ना। हमारे बिखरे हुए विचारों को, शरीर और सांसों को एक साथ एक जगह पर लाकर जोड़ देता है। महर्षि पतंजलि ने हजारों वर्ष पूर्व अष्टांग योग का सूत्र दिया, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का उल्लेख है। यह संपूर्ण उच्च जीवन शैली है जो हमारे पूर्वजों ने आत्मसात किया है। और आज जब भागम भाग की जिंदगी बनता जा रहा है, अशांति पैदा हो रहा, वहाँ योग और प्रासंगिक होता जा रहा है, जो मजहब और धर्म से उठकर है, सर्वकाल और सार्वभौमिक है। पूरी दुनिया इसे स्वीकार भी रहा है और इसे अपना भी रहा है। आइए हम सब इसे चर्चा करके इसका लाभ लेते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, सीधा बैठकर बाएं नाक से धीरे धीरे श्वास खींचना और फिर दाएं से छोड़ देने और पुनः दाहिने से लेना और बाएं से छोड़ना। यह प्रक्रिया कुछ समय तक करने से चमत्कारिक लाभ होता है। और यह प्राणायाम बच्चे, बुजुर्ग या किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। और इसका अत्यंत बहुत व्यापक लाभ है। मस्तिष्क के स्तर पर बात करें तो मस्तिष्क संतुलन और शांति में इसका एक अहम योगदान है। राइट और लेफ्ट ब्रेन का नियंत्रण होता है। जब हम बाईं नासिका से श्वास लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा सक्रिय होता है, जो रचनात्मकता और शांति से जुड़ा है। जब हम दाहिने नासिका से श्वास लेते हैं तो मस्तिष्क का बायां हिस्सा लेफ्ट ब्रेन सक्रिय होता है, जो तर्क और तार्किकता से जुड़ा है। दोनों नासिकाओं से बारी बारी श्वास लेने पर मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में न्यूरोनल गतिविधियां संतुलित होती है, शांति की स्थापना। और यह प्राणायाम हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को तुरंत सक्रिय करता है। इससे शरीर में कार्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर गिरता है और हृदय की गति सामान्य होती है, जिससे साधक जो रोगी हैं उनको तुरंत गहरी मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। भ्रामरी प्राणायाम, जब हम कानों को बंद करके मकार का गुंजन करते हैं तो मस्तिष्क की नसों को गहरा विश्राम मिलता है। और यह भी सभी उम्र के लोग कर सकते हैं और इसको करने से ये लाभ तो अत्यंत है। विज्ञान कहता है कि इससे मस्तिष्क में डोपामाइन अर्थात खुश रहने का जो हार्मोन्स है और नाइट्रिक ऑक्साइड का असरा होता है, जो तनाव को तुरंत शांत करता है। जब हम मौन और मेडिटेशन करते हैं, इससे भी अद्भुत एकाग्रता में क्षणिक सुधार लाभ मिलता है। ध्यान की अनेकों विधियां हैं, उसमें एक आसन का तरीका यह भी है कि शांत बैठ जाए और कुछ नहीं करना है, बस सहजता के साथ आंखों के साथ बिना कोई प्रयत्न मात्र श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया बढ़ाएं और पाएंगे स्वयं का सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। ज्ञान मुद्रा की हीलिंग पावर, मेरी एमए योग और हीलिंग की व्यवहारिक अनुभव का निचोड़ यही है। जब आप अपने अंगूठे और तर्जनी के पोरों को मिलाकर ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं तो आपके बिखर रही मानसिक ऊर्जा एकाग्र होने लगती है। इसका सीधा असर आपकी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता पर पड़ता है। जो व्यक्ति कल तक दफ्तर के काम से या पारिवारिक कलह से परेशान होकर केवल शिकायतें करता था, योग के प्रभाव से वह शांत होकर समाधान खोजने लगता है। योग हमें

0: थाली पुलाव पकाने वाले बातों को शेर से बदलकर धरातल पर कार्य करने वाला कर्म का वीर बना देता है। व्यस्त जीवन शैली में योग में ही मिताहार भी विश्व शांति के लिए जरूरी है। जब आपके सब मन में सवाल उठेगा कि हमारी व्यक्तिगत शांति से विश्व शांति का क्या संबंध है? श्रोताओ, विश्व शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजारों में मिलती है या हथियारों के बल पर स्थापित होती है। विश्व शांति की सबसे पहली और सबसे छोटी इकाई हमारा स्वयं का मौन और शांत होना है। जब एक व्यक्ति शांत होता है तो उसका घर शांत होता है। जब घर में खुशहाली होती है तो समाज और राष्ट्र में समरसता आती है। जब दुनिया का हर नागरिक भीतर से शांत होगा तभी वैश्विक स्तर पर वर्चस्व और स्वार्थ की लड़ाई खत्म होगी। इस शांत और सुंदर जीवन शैली को जीने के लिए योग के साथ मिताहार यानी सही खान पान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जैसा अन्न वैसा मन। बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाले या वासी भोजन हमारे शरीर में आलस्य और मन में चिड़चिड़ापन पैदा करता है। रात का भोजन सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले कर लें और अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं। जब भोजन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे। जब विचार शुद्ध होंगे तो हमारे आपसी संबंध सुधरेंगे, चाहे आप शिक्षक हो, किसान हो, अधिकारी हो। जब आप स्वस्थ और शांत मन से काम करेंगे तो आपकी कार्य क्षमता दोगुनी हो जाएगी। यही देश और विश्व के लिए आपकी सबसे बड़ी सेवा है। संकल्प करते हैं इन सबको, भाइयों और बहनों, जीवन में व्यस्तता हमेशा रहेगी और चुनौतियां भी आती रहेंगी, लेकिन क्या हम अपने 24 घंटे में से मात्र 20 मिनट से 1 घंटा इस अनमोल शरीर रूपी यंत्र की सर्विसिंग के लिए नहीं निकाल सकते? योग कोई बोझ या धार्मिक कर्म कांड नहीं है। यह खुद को बेहतर बनाने का, अपनी ऊर्जा को हिल करने का एक अत्यंत सरल विज्ञान है। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम योग को केवल 21 जून का उत्सव नहीं मानेंगे, बल्कि इसे अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे। यह आलस्य को छोड़कर कर्म की ओर बढ़ेंगे। याद रखिएगा, स्वास्थ्य शरीर और शांत मन, यही है मानव जीवन का असली धन। जब हम खुद बदलेंगे तो हमारे आसपास की दुनिया अपने आप सुंदर और शांत हो जाएगी। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षयवट, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद।

90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा

0: का कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 17 जून 2026 को दोपहर 3:30 बजे से। आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0612225000 एवं 0612402649। फोन नंबर एक बार फिर से सुन ले, 0612225000 और 0612402649। रिकॉर्डिंग की तारीख है 17 जून 2026 और समय है दोपहर 3:30 बजे से। इसी के साथ ये सूचना समाप्त हुई।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए देशगान। कलाकार हैं उषा उत्थप और अलका याग्निक।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.8 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म धुनकी से। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं प्रीतम। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। गाने अभी और भी हैं एक अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अखिल सचदेवा और मुंशी गुजराल की आवाज़ों में भी सुन रहे हैं ये खूबसूरत सा गीत, हमने लिया है फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।

कुमार शानू की आवाज में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन का ये खूबसूरत सा गीत। गीत के बोल लिखे हैं देव कोहली ने और संगीत निर्देशन जतिन ललित का है। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी

केके की आवाज में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म काइट्स का ये खूबसूरत सा गीत। गीत के बोल लिखे हैं नासिर फराज ने और संगीत निर्देशन राजेश रोशन का है। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।

आर्को की आवाज में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म रुस्तम का ये खूबसूरत संगीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।

मोहित चौहान की आवाज में भी आप सुन रहे हैं फिल्म तमाशा। फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत निर्देशन A.R. रहमान का है। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।

मोहित चौहान के गाए इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में फिर उर्दू में।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड स्थित पहनिया पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लिया। उन्होंने मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीते एक महीने में सहयोग शिविर के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में से 90% निष्पादित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जनता से संवाद और जनता की समस्या का हल करना। इधर मुख्यमंत्री का अगला कार्यक्रम सिवान जिले में निर्धारित है। वहां वे पचरुखी प्रखंड के पपौर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल होंगे तथा 415 करोड़ रुपए से अधिक की 44 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर आज से प्रदेश के सभी प्रखंडों में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 18 जून तक चलने वाले इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, ईकेवाईसी तथा लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि शिविरों में हेल्प डेस्क, प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता और स्वास्थ्य जांच शिविर की भी व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन और सेवाएं आसानी से मिल सके। पूर्व मध्य रेल 17 जून को होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्र और पटना जंक्शन सहित विभिन्न स्टेशनों से 14 विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा। एडीजी रेल डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने बताया कि परीक्षा में लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है, जिसे देखते हुए आज और कल विभिन्न रूटों पर विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा।

0: पाटलिपुत्र जंक्शन और पटना जंक्शन से अररिया, नवगछिया, भभुआ रोड, गया, बक्सर, राजगीर और झाझा सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। श्री मोहन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा शुरू होने के 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। एजेंसी ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उनकी टीम सर्वरों पर लोड की लगातार निगरानी कर रही है। एजेंसी ने यह भी आश्वासन दिया है कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले समय पर प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीमित और निश्चित अवधि के लिए टेलीग्राम एक्सेस पर रोक लगाने के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्णय का स्वागत किया है। एनटीए ने कहा है कि यह प्रतिबंध पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान औरंगाबाद, अरवल और रोहतास जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी ने आज कैमूर ज़िला के भगवानपुर ब्लॉक वाक़े पहनिया पंचायत में मुनक़दा सहयोग शिविर में शिरकत की। उन्होंने मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करके रियासत की खुशहाली के लिए दुआएं की। वज़ीर-आला ने जनसंवाद प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता एक माह में सहयोग शिविर के तवसुत से मौसूला दरख्वास्तों में से 90% हल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का खास मकसद है आवाम से बात और अवामी मसाइल को हल करना। इधर वज़ीर-आला का आइंदा प्रोग्राम सीवान ज़िला में तय है। वहाँ वो पचरुखी ब्लॉक के पपौर पंचायत में मुनक़द सहयोग शिविर में शामिल होंगे और 415 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 44 तरक्याती मंसूबों का इजरा और संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-आला की आमद को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में खिदमात, सुशासन और गरीब फलाह के 12 साल मुकम्मल होने पर आज से रियासत के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक सहयोग सह जन कल्याण शिविर मुनक़द किए जा रहे हैं। 18 जून तक चलने वाले इन कैंपों में मरकज़ी और रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबों से मुतालिक दरख्वास्त, रजिस्ट्रेशन, EKYC और फ़ायदा पहुँचाने की सहूलत एक ही मुकाम पर दस्तयाब कराई जा रही है। मुख्तलिफ अजला से हमारे नुमाइंदों ने बताया कि कैंपों में हेल्प डेस्क, ट्रेंड स्वयं सेवकों की मदद और सेहत जांच कैंप का भी नज़्म किया गया है, जिससे लोगों को ज़रूरी रहनुमाई और खिदमात आसानी से मिल सकें। ईस्ट सेंट्रल रेलवे 17 जून को

होने वाले एक्साइज कांस्टेबल दाखिला इम्तहान के पेश नज़र पाटलिपुत्रा और पटना जंक्शन समेत मुख्तलिफ स्टेशनों से 14 खसूसी ट्रेनें चलाएगा। एडीजी रेल डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने बताया कि इम्तहान में तकरीबन 5.5 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने का इम्कान है, जिसे देखते हुए आज और कल मुख्तलिफ रूटों पर खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। पाटलिपुत्रा जंक्शन और पटना जंक्शन से अररिया, नौगछिया, भभुआ रोड, गया, बक्सर, राजगीर और झाझा समेत मुख्तलिफ स्टेशनों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने नीट यूजी री एग्ज़ाम से कबल तहफ़ुज़ और तैयारियों के जायज़ा के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। उन्होंने तलबा की सहूलत, हिफाजती इंतजाम और इम्तहान के अमल की शफाफियत पर ख़ास ध्यान देते हुए इस री एग्ज़ाम के लिए रियासती हुकूमतों की तैयारियों का जायज़ा लिया। दाखिला सेक्रेटरी ने सभी रियासती हुकूमतों, यूनियन टेरिटरीज़ और मरकज़ी एजेंसियों को हिफाजती प्रोटोकॉल की तामील करने की हिदायत दी है। जनाब मोहन ने रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ रियासतों से तलबा के सफ़र को आसान बनाने की अपील की है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने बताया है कि आइंदा नीट UG री एग्ज़ाम 2026 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सहूलत शुरू होने के 24 घंटों के अंदर ही 10 लाख से जायद उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। एजेंसी ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों की आसानी के लिए उनकी टीम सर्वरों पर लोड की लगातार निगरानी कर रही है। एजेंसी ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि सभी उम्मीदवारों को इम्तहान से कबल वक्त पर एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। 21 जून को मुकर्रा नेशनल इंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट UG 2026 के री एग्ज़ाम को देखते हुए हुकूमत ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन पैगाम भेजने पर रोक लगा दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने महदूद और मुकर्रा मुद्दत के लिए टेलीग्राम एक्सेस पर रोक लगाने के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के फैसले का इस्तकबाल किया है। NTA ने कहा कि ये पाबंदी री एग्ज़ाम के दिन और उसके फौरन बाद तक नाफिज रहेगी। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए पैगामात को नशर करने की सहूलत को भी बंद करने की हिदायत दी गई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 घंटों के दौरान औरंगाबाद, अरवल और रोहतास अजला के कुछ हिस्सों में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए या ओ लेवल सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित आप विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देख सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियम के हिसाब से आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 जून 2026। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इनकी शैक्षणिक योग्यता भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देख सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए।

0: आरक्षित वर्ग को नियम के हिसाब से आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप www.ssc.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के कुल 4500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। शैक्षणिक योग्यता भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप विज्ञापन देख सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के हिसाब से आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 22 जून 2026। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप www.centralbank.bank.in से प्राप्त कर सकते हैं। कृपया एक बार फिर से सुने। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। शैक्षणिक योग्यता भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए या लेवल ओ लेवल सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप विज्ञापन देख सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ रोजगार सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अब आप दोपहर समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों भागीदार देशों के नेता

0: विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक फिबाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
1: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
3: UNSC reform would be grossly inadequate.
4: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के

0: चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म परिणीता से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और संगीत निर्देशन शांतनु मोइत्रा का है।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। गाने अभी और भी हैं, उससे पहले एक संदेश।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे हैं ये खूबसूरत सा नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म बर्फी से। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और संगीत निर्देशन प्रीतम का है। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।

0: लगभग पागल समझते थे।
1: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिन।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अब मात्र दो

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया।

साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में भी आप सुन रहे हैं फिल्म जो जीता वही सिंगदन का ये खूबसूरत सा गीत। गीत के बोल लिखे हैं मजरू ने और संगीत निर्देशन जतिन ललित का है। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।

0: जॉन सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉन सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा

कुमार शानू और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा संपन्न होती है। हम पुनः आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम 4:28 से। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक है। बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है।
1: बिल्कुल सही कहा, इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होते देर भी नहीं लगती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से पसीने

0: की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही हैं, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
1: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है,
0: जी
1: अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब
0: बिल्कुल,
1: उठते हो,
0: और
1: और
0: कोशिश
1: धीरे धीरे
0: करिए।
1: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें। ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही, इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की
0: जी
1: हमारी
0: जी
1: आदत होती है वो हमें थोड़ा
0: बिल्कुल,
1: बदलनी है।
0: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए, एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बॉटल जरूर लेके जाए, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबियत ना
1: हाँ,
0: खराब हो।
1: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि
0: हाँ
1: दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर
0: जी
1: हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और
0: बिल्कुल
1: ये जो किताबें हैं वो हमारे ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही हैं, इसके
0: बिल्कुल।
1: अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
0: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती हैं, और जितना हम किताबों से जान जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के, या फिर बाहर इतना ज्यादा, इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहां बाहर जाके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़ें, या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ें, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा।
1: अच्छा लगेगा, खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि हम पढ़ें,
0: जी
1: कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़ें,
0: बिल्कुल,
1: जीवनी
0: और
1: पढ़ें।
0: उस पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा, या क्या
1: हाँ
0: आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें,
1: बिल्कुल
0: देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस उसका
0: जी
1: उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो
0: जी
1: चलिए बताइए, आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं?
0: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजय बना देती है। अजय मतलब ये, आप अगर देखिए, मन के जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
1: सबसे बड़ी बात है हमारा मन
0: बिल्कुल
1: कितना सशक्त है। अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
1: मन
0: जब
1: को
0: बिल्कुल
1: सशक्त बनाते हैं, हमारे
0: हाँ
1: श्रोता बता सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: हमारी
0: कि किस तरह से
1: सखियां।
0: अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है, तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं, या फिर हिचकिचा जाते हैं,
1: और कई बार
0: तो
1: क्या होता है आरती,
0: जी
1: घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती हैं कि अरे भैया आज तो पति देव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया। तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती हैं और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे
0: बिल्कुल
1: करती हैं, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
0: बिल्कुल, और आज हम मुहावरों के दिन में बात करेंगे, दूर के ढोल
1: आ
0: सुहावने
1: हा हा हा ये तो
0: कि
1: होता है।
0: अक्सर होता है ना हम लोगों की, दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है, या कितना अच्छा काम
1: इसके
0: कर रहा
1: मजे
0: है। हाँ,
1: हैं।
0: लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि
1: बिल्कुल
0: किस तरह से वो वहां तक पहुंचा,
1: बिल्कुल, उसकी
0: तो
1: जिंदगी में क्या
0: बिल्कुल
1: क्या घटा, कैसे घटा, उसने कैसे
0: जी
1: उसका मुकाबला किया, इन सब
0: जी
1: बातों को नहीं जानते हम, केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है।
0: जी तो बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे,
1: ये भी
0: और
1: बताएं कि इनकी जिंदगी में
0: हाँ
1: दूर के
0: ये
1: ढोल
0: किस
1: सुहावने
0: तरीके से
1: हुए
0: इस चीज
1: क्या।
0: को समझते हैं, अपना नजरिया बताएं, और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत, आज हम मेघा मलिक जी के बारे में बात
1: अरे
0: करेंगे,
1: वाह क्या बात है।
0: जो हैं डिजाइनर पीपल की संस्थापक, और हल्की फुल्की बातें भी कुछ करेंगे ना
1: हाँ हाँ बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है हर
0: जबकि
1: समय।
0: विषय जो है ना वो हल्की फुल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस विषय है
1: आपने कंट्रास्ट कर दिया है, बातें
0: जी,
1: हल्की
0: क्योंकि
1: फुल्की
0: इस
1: कही
0: विषय
1: है
0: पे अक्सर
1: और विषय
0: तकरार
1: रखा है
0: हो जाती है,
1: घरेलू बजट। बाप रे,
0: जिसपे अक्सर तकरार हो जाती है
1: हाँ ये तो
0: पूरे घर में,
1: बड़ा
0: मतलब एक राय कोई नहीं हो पाता इस विषय पे
1: बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए जो पता है जो गृहिणियां है ना
0: जी
1: वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती हैं।
0: बिल्कुल, और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, तो उसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे।
1: ठीक है, तो हमारे श्रोता भी लिखें और अभी हम सुन लेते हैं
0: एक
1: गीत।
0: गीत जी।

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी।
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं, जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों जब मनाते हैं, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
0: हाँ हाँ
1: तो
0: बिल्कुल।
1: जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है, तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल। ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी एफएडी ने IFAD ने की थी।
1: जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं, वो अपने परिवार को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था।
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना।
0: हाँ, और सुरक्षित धन प्रेक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं।
1: जी, और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी आधार बनता है। इसीलिए इस प्रेक्षण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है।
0: बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना, रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे, तो कितनी कितनी खुशी
1: खुशी होती
0: थी
1: कि ना, कि अब चलो ये जरूरतें हमारी
0: पूरी कर लेंगे, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो कितने उन लोगों को उसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
0: बिल्कुल।
1: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना।

0: तो आरती महीना तो जून का है
1: जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए रखना
1: इस पसीने से भी बचा के रखना है अपने को।
0: तो हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
0: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे आने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को सम्मानिता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है। और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और ये दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हैं हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि

0: अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है। अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी
0: आएंगी
1: ही।
0: ही
1: आप ये नहीं
0: बिल्कुल
1: कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है, या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है ना,
0: हाँ
1: या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी, आपको जरूरी
0: बिल्कुल
1: नहीं है आपको पता
0: बिल्कुल
1: हो उस चीज
0: हाँ,
1: के बारे
0: आपने
1: में।
0: उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना,
1: बिल्कुल
0: आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से
1: जी
0: हंसना बोलना और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन
1: बिल्कुल
0: उसके पीछे का जो संघर्ष है,
1: जी
0: पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां हैं, वो हम
1: जी
0: नहीं जान पाते हैं।
1: बिल्कुल। इसी को लेकर एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे। लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौवा। वो
0: बिल्कुल
1: जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो उस ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो उस तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता,
0: हाँ
1: वो अपनी उड़ान को ऊपर ऊंचा कर देता
0: बिल्कुल
1: है। वो इतना
0: बिल्कुल
1: ऊंचा उठ जाता है
0: कि
1: कि वो
0: कौवा
1: कौवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो
0: हाँ
1: वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
0: वो
1: अपना
0: डिस्टर्ब
1: बिल्कुल
0: नहीं हुआ, अपना
1: हाँ
0: संतुलन
1: अपने
0: नहीं
1: लक्ष्य से
0: बिगाड़ा।
1: नहीं हटा वो
0: हाँ
1: किसी को देख के, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो तंग करने वाले, परेशान करने वाले, है ना, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं, आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए, कि
1: बिल्कुल
0: आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना।
1: बिल्कुल, वो हार मान के अपने आप ही हट जाए वहां से
0: हाँ ये होना चाहिए और होता भी
1: जी
0: है। कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना,
1: बिल्कुल
0: अर्थी। तो जीवन में हर नई चुनौतियों को, हर नए संघर्ष को और हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमें वो हमारा इंतजार कर रही होती है, और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है, बल्कि मानसिक मजबूती का होता है।
1: बिल्कुल, और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र पढ़ दिया और आपने
0: हाँ,
1: एकदम
0: कि
1: से हो
0: आपके
1: गए
0: पास जादू की छड़ी आई, आपने
1: जी
0: गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और
1: जी
0: ताला खुल गया।
1: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं आपके।
0: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते, इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती,
1: बिल्कुल
0: लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
1: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद
0: फिर
1: फिर से
0: से
1: खड़ा हो
0: खड़ा हो
1: जाता है
0: जाता है।
1: जी। और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है, क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि फिर और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
0: तो
1: तो
0: उसका
1: फिर
0: फायदा उठाया
1: बस
0: जाता
1: उसका
0: है,
1: फायदा
0: इसलिए
1: उठाया
0: जो
1: जाता है।
0: कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को,
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए कहते
1: तो
0: हैं।
1: इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी भी कमजोरी
0: हाँ
1: को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए,
0: बिल्कुल सही
1: उसका
0: कहा
1: सामना
0: आपने,
1: करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती, कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी
1: बिल्कुल
0: कोशिश क्यों ना करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए, क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो
1: बिल्कुल
0: आप दो टूक बात करें,
1: जी
0: जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहें,
1: बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश मत
0: अपनी
1: करिए।
0: सफाई देना कोई
1: हाँ
0: जरूरी
1: उसको वही
0: नहीं।
1: सफाई मत दीजिए ज्यादा अपनी,
0: हाँ
1: और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं हैं तो सीधे ना कहना जरूरी है, उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है, ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए

0: या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी
1: नहीं
0: चाहिए।
1: देनी चाहिए। होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं,
0: हाँ
1: वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है या हमारे
1: बिल्कुल
0: अंदर जो जो समुद्र जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही है ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती
1: शांत
0: है।
1: हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता है, जब
0: जी
1: आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पड़ा है इन बातों में।
0: बिल्कुल
1: और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं,
0: निकली
1: क्योंकि उस
0: जी
1: वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो हैं घूम रही होती हैं,
0: जी
1: और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर संयत होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
0: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं, ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप
1: बिल्कुल,
0: पूछिए।
1: सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी हैं,
0: बिल्कुल
1: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं
1: गलत
0: सुनेगा।
1: माने जाते हैं। इसलिए
0: जी
1: किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूं और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है, और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
0: बिल्कुल, और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी
1: कह
0: इमोशन
1: दिया,
0: में आके कह दिया तो फिर आपकी परेशानी आपके
1: हाँ,
0: लिए
1: फिर
0: खड़ी
1: वो
0: हो
1: सारी
0: सकती है।
1: परेशानी खड़ी हो जाती है,
0: बिल्कुल
1: फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन इस
0: जी,
1: वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती
0: अंतराल
1: कि
0: का समय हो गया
1: अंतराल का
0: है।
1: समय हो
0: जी
1: गया है,
0: अंतराल का
1: एक छोटा
0: समय,
1: सा अंतराल लेते हैं।
0: जी।

0: तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात क्या चल रही थी?
1: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं तो और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: क्योंकि ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है। तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना
1: जी।
0: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं,
1: आपने इंतजार किया,
0: आपने हमारा इंतजार किया, है ना।
1: एक थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज का सामने,
0: है ना।
1: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो

0: आप उसको अप्रूव कराने के लिए
1: 10 लोगों के
0: दस
1: पास
0: लोगों के
1: मत
0: पास मत
1: जाइए।
0: जाइए, है ना, कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये चीज सही है ना।
1: देखो
0: कहते ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
1: और ऐसा होता है,
0: बिल्कुल,
1: लोग लोग जो है 10 लोगों के पास जा जाकर
0: हाँ
1: पूछते हैं, है
0: हाँ
1: ना,
0: कि हम सही हैं, हम सही हैं।
1: हम
0: अगर आप
1: सही है
0: सही
1: ना,
0: हैं तो
1: आप
0: अपने,
1: सही हैं,
0: बिल्कुल अपने
1: आप
0: दिमाग
1: सही,
0: से,
1: बिल्कुल
0: अपने आपसे निर्णय लीजिए, आप
1: बिल्कुल
0: सही हैं
1: आपका अपना
0: तो
1: निर्णय
0: सही हैं
1: कोई भी हो सकता है,
0: बस।
1: उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो
0: जी
1: आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल।
1: और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है
0: जी
1: ना,
0: जी बिल्कुल
1: कितना अच्छा है।
0: जी,
1: और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो
0: बहुत
1: कि
0: जरूरी है।
1: हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा, हम भावुकता
0: जी
1: में बह जाते हैं। तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते
0: बिल्कुल,
1: हैं,
0: बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते हैं
1: तब वो कैसे होते
0: तब उनके
1: हैं,
0: चेहरे पे कैसे
1: क्या
0: भाव
1: होता
0: आते
1: है,
0: हैं,
1: ये
0: वो
1: आपको,
0: बहुत
1: हाँ ये
0: जरूरी है।
1: आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि
0: जी
1: आपने जब तक हाँ भरी तब तक
0: हाँ
1: आप बहुत अच्छे थे,
0: जी
1: लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना,
0: बिल्कुल।
1: आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने
0: बिल्कुल,
1: व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत
0: और
1: बनाइए।
0: उसके लिए जरूरी है हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया करते देते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और
1: बिल्कुल
0: जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए,
1: हाँ
0: क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत आ, आ, कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए,
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा,
0: बाद में हमें उसका पछतावा भी होता है। लेकिन
1: हाँ
0: शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: इस बात का हमें ध्यान रख के
1: सोच
0: बोलना
1: समझ
0: चाहिए।
1: के बोलें, तोल मोल के बोलें। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में
0: जी
1: लगा पाते, और अपना समझकर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी ना कहें जो बाद में
0: जी
1: आपको पछतावा दे।
0: बिल्कुल।
1: और हम सब की आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने, तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। ऐसे लोग हमसे
0: अच्छा।
1: नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में
0: जब
1: आ
0: हम,
1: जाती है।
0: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि अब मैं अभी आपकी तारीफ करूं और उस किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ, फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए,
1: हाँ फिर
0: क्योंकि
1: मैं
0: ये
1: हर दिन,
0: चाटुकारिता में आ
1: हाँ ये
0: जाता है।
1: चाटुकारिता में आता
0: जी
1: है। और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं
0: बिल्कुल
1: सामने वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
0: जी, अपनी
1: और
0: खूबी अपनी खामी हर
1: हाँ
0: इंसान को पता होती है,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: होती
0: है ना।
1: है, और
0: तो
1: मजबूत मन ही वो
0: देखिए
1: जादू है
0: जी
1: जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता
0: बिल्कुल
1: है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है।
0: जी
1: इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
0: बिल्कुल, और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें कि वो आपकी तारीफ करेंगे, मजाक
1: जैसा मैंने आज
0: लीजिए
1: उम्मीद की थी कि आरती आते ही मेरी तारीफ
0: जी।
1: करने वाली है, पर
0: नहीं नहीं
1: आरती ने आज
0: आप
1: तारीफ
0: नहीं,
1: नहीं की।
0: मैं तारीफ करती हूँ, लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को,
1: हाँ
0: मैं एकदम सही तरीके से आपकी कि जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ वो करती
1: तो
0: हूँ।
1: मैं आगे उम्मीद रखती
0: बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद रखिए
1: हूँ।
0: अच्छे से तारीफ करिए
1: तो चलिए,
0: जी।
1: आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम उन्हें
0: एक
1: एक प्यारा
0: गीत
1: संगीत
0: सुनाए
1: सुनवा दें।
0: जी।

0: हाँ
1: तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
0: अरे वाह बिल्कुल
1: जी, तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है।
1: जी, और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
0: बिल्कुल, और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉरपोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है।
1: जी, और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, पीपीसी सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं। ये कितना सुंदर दिख रहा है वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
0: क्या बात है।
1: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
0: और इसीलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में

0: अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
1: बिल्कुल, और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
0: हाँ बिल्कुल, और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है, और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है, और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक साबित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
0: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती, कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: और बहुत ही अच्छी बात है ये। और आज महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान, अपनी नई पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
0: बिल्कुल, तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के, लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर बात करें हम?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने।
0: अच्छा, आपको गीत की तलब हो ही गई है चाय की तरह
1: जी।
2: जरा नजरों से कह

0: तो धूल के ढोल सुहावने। कई बार ऐसा होता है ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसी देखने में तो इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें, जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं और जब वो आती है हमारे पास, तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय
0: जी जी
1: बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने।
0: बिल्कुल, और फिर वापस करो ये

0: तो गुस्सा
1: वो
0: आता
1: सारी
0: है ना उस
1: प्रक्रिया
0: समय,
1: शुरू हो जाती है।
0: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस सच में।
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है वो, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है वो पास जाकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण जैसे गांव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोली सुहावने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया है। और एक और मेरे श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब

0: सुंदर लगता है, हम उसकी तुलना करते हैं हर एक चेहरे से, चांद की तरह सुंदर चेहरा है ना, चांद जैसा हमारा टुकड़ा।
1: जी जी जी, लेकिन जब से वहां पे पहुंचे तब से थोड़ा सा
0: पता चलता है कि भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि सच्चाई क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती परिवार, एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी क्रूरता भी दिखाई देने लग जाती है।
1: तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलिया रलिया
0: रलियामणा।
1: जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत और रलियामणा मतलब सुहाना, यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने जो
0: कहा कि पहाड़ों को दूर से जब हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कानफोड़ लगने लगती है। अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
1: बिल्कुल।
0: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, ये हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
1: वैसे सही है। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती है, जैसे हमारी श्रोता जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो, जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से कठिनाइयां और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए। लेकिन तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है।
0: बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती की, दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो अच्छी लगेगी।
1: ऐसा नहीं है कि आपको निराशा हाथ लगी है, आप बिल्कुल हमसे मिलिए तो हम आपको और बहुत अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे,
0: जैसे हम अभी आपको लग रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा, ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और फिर पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता, तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें, तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता, तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव।
0: देखिए, आपका एक आप श्रोता का, आप हम लोगों ने दो दो बार उसको उनको पढ़ लिया।
1: हाँ।
0: उनको इतना ज्यादा उनका बढ़िया, उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके से समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना, वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है। जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना, तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, और सबको लगता है हमारी हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
0: जी बिल्कुल।

हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में, खास करके पति पत्नी में, इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्म पत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियां और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे जिनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे,
1: वो हमसे कृपालु हो, हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्वास

0: तो खुद ही जी अनुमति
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्यूलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वो अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विद। गाइड में पहले पहले शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज़्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि इतना लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे मगर उस चीज़ को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कहा अरे मैंने जो कहा वो ही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज़ बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी और उसके या

0: उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज कल आज की फिल्म होती तो ज़रूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, जो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाई थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा आप जाइए। वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा। और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे।
0: जरूर।

0: वेदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वुदरिंग हाइट्स से मेरे ख्याल से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई, तो दिलीप साहब ने कोई और असिस्टेंट ने पूछा कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शुरू होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है। यहाँ तो ये रूपा जी जो हैं अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से हुआ। तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालती हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो।

0: बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ, तो चुपके से आके कह देते, भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
1: आपको कहा
0: हाँ, क्यों नहीं,
1: किस
0: सबको
1: फिल्म में,
0: कहते थे।
1: किस फिल्म
0: दिल
1: में?
0: दिल दिया दर लिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
1: कोई
0: थी।
1: खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा हो कि
0: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूं होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों, आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उन्होंने कहते जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है, मगर
1: हाँ
0: जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफ़ी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डालो। तो मैं कहूँ कि पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले मैंने आपसे से सुना है वो लफ्ज़। मैंने कहा कब, तो वो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के जैसे आप ये भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं वहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखिए, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
1: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर था, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए।
0: आदमी का
1: हाँ जी,
0: वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है
1: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे, वो तो
0: या
1: लास्ट लास्ट
0: समथिंग,
1: क्लाइमेक्स का
0: हाँ
1: गाना।

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही आपकी, जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मैं मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी। हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वॉज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कहीं नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए। बड़ी ग्रेट फिल्म, आई मीन पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छे थे, और माला सिन्हा, नंदा, यानी कि नंदा मेरी फ्रेंड है मगर उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओ हो इसको, इस सीन को और बेटर गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मज़ा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊँ मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती हूँ, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फ़ायदा, तो वरना मैं उतना इंजॉय नहीं करती अपनी फिल्में।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी। जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
1: नहीं देखिए, लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है, जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज़्यादा ही वायलेंस पे बेस्ड होती थी, और कहानियाँ रट्टी पट्टी की कि दो भाई हैं बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है एक अच्छी, नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मेल या फीमेल, वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो हमारे ज़माने में नहीं होते थे।
0: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
1: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की हो बस।
0: वो फिल्में देख रहे हैं आपकी?
1: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में, मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना, तो बोले टोरंटो में देखी। ओह, मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा, तो बोले नहीं कॉलेज में देखी, मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई, तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है, तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं, और दोनों बच्चे मेरे, कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
0: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया है और साहब बीबी गुलाम का भी आया है, साहब बीबी गुलाम का, तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें।
1: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला,
0: हेमंत कुमार साहब की आवाज़।
1: हाँ, हेमंत कुमार साहब की आवाज़, वो बहुत अच्छा था।

0: अभिनय जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक थे।
1: बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो ये बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने, वैसे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वॉज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं, उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म, तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उनके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे, और मेरे ख्याल से बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की है वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी, उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज़्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं तो मैं नहीं हूँ या नहीं तो राजी नहीं है, तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे और वो बहुत मसरूफ थे, अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज़्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी मगर देख के फिल्म, मुझे खुद ताज्जुब होता था ये कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफ़ा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो बड़ी वैसे हालात में फिल्म बनी और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राज जी, और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज्ड टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू

0: राजू, बहुत. और जो जो रशियन था वो, उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने, आवारा के सब गाया थे, गाते थे.
1: वेदा जी, इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर
0: हाँ
1: जयकिशन साहब का संगीत
0: हाँ
1: था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि मिली भूमिका निभा करके? तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं।
0: हाँ मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, और सिंपल एंड वेरी स्वीट. उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, अच्छी लगती है, दिल को छूती है.
1: कुछ चीज़ें ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी हो, कुछ
0: बिल्कुल
1: उसी तरह की वो
0: सही
1: फिल्म
0: सही.
1: है। उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे। एक गाना उस फिल्म का हम जरूर सुनाएं।
0: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है.

0: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको। बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
1: पहले उनको समझना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी, तो वो बड़े टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजनी का, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उनसे कहा तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कुछ गलत हो रहा है, तो कहने लगे नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा मैं मानती हूँ मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो घड़ी में शाम के ठीक 4:29:52 हो चुके हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांतकालीन सभा। श्रोताओं, सभा क्रम में लीजिए सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त करिश्मा और आज के कार्यक्रम युवाणी में मैं आपका स्वागत करती हूं।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आकाश और मैं भी आपका तहे दिल से आपके अपने कार्यक्रम युवाणी में स्वागत करता हूं।
0: तो आकाश, आज हम अपने श्रोताओं से किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे?
1: जी हाँ करिश्मा, बिल्कुल श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको बताते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा। तो आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में क्या है खास। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेस की, उसके बाद बात होगी विश्व समुद्री कछुआ दिवस की, और साथ ही हमारा आज खास सेगमेंट होगा मनोबल मंगलवार। जैसा कि आप जानते हैं हर एक मंगलवार को हम आपको बताते हैं, हम आपको सुनवाते हैं किसी खास व्यक्ति से बातचीत जो कि आपको देता है मोटिवेशन और आपके मनोबल को करता है मजबूत। श्रोताओं, इसके साथ ही हम बात करेंगे देश बंधु चित्तरंजन दास की पुण्यतिथि की। इसके साथ ही बीच बीच में गानों का सफर तो चलता ही रहेगा और कार्यक्रम के अंत में बात होगी रोचक तथ्य और स्पोर्ट्स अपडेट की। तो करिश्मा, कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल,

0: तो श्रोताओं, अभी हमने सुना फिल्म हम है राही प्यार से सिंगर कुमार सानू और अलका याग्निक और कोरस की आवाज में।
1: बिल्कुल करिश्मा, और यह प्यारा सा गीत जो हमने अभी सुना कितना प्रेरणा हमें देता है, कितने जीवन में सीख की बात करता है। अगर हम एक दूसरे के साथी बने, सहयोगी बने, तो जीवन कितना आसान हो जाता है ना?
0: बिल्कुल। और वैसे आकाश, आज हम कुछ ऐसी ही एक खास दिवस को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेरणा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमेंटेशंस को मना रहे हैं। यह नाम आपको थोड़ा सा तो अलग लग सकता है, लेकिन इसका संबंध लाखों करोड़ों परिवार की जिंदगी से है।
1: बिल्कुल, यह दिन उन करोड़ों प्रवासी श्रमिकों को समर्पित है जो अपने परिवार से दूर रहकर भी उन्हें सहारा दे रहे हैं। आसान भाषा में समझें तो कोई व्यक्ति जब अपने परिवार से दूर रहकर किसी शहर या देश में काम करता है और वहां से अपने घर पैसे भेजता है, तो उसे प्रेषण या रेमिटेंस कहा जाता है। यह सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि यह अपनों को प्यार और सुरक्षा देने का भी तरीका है।
0: यही पैसे कई परिवारों के लिए जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, इलाज, घर का खर्च और बेहतर भविष्य।
1: और करिश्मा, बता दें कि दुनिया भर में करीब 80 करोड़ लोग सीधे तौर पर रेमिटेंसेस के ऊपर निर्भर हैं। यह पैसा उनके लिए सिर्फ एक ट्रांजैक्शन यानी लेन देन नहीं, बल्कि उनकी लाइफलाइन है।
0: क्या बात है आकाश, आपने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात बोली है। परिवार के लिए एक बहुत बड़ा हेल्प होता है। और संयुक्त राष्ट्र और IFAD के अनुसार दुनिया भर में लगभग 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगार अपने परिवारों की मदद के लिए नियमित रूप से पैसे भेजते हैं। तो दोस्तों सोचिए, एक व्यक्ति कहीं दूर मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसके परिवार की मुस्कान बना रहा है।
1: बिल्कुल करिश्मा, और श्रोताओं हम आपको बता दें कि यही वजह है कि हर साल 16 जून को यह विशेष दिवस मनाया जाता है, ताकि उन प्रवासी कामगारों के योगदान और उन्हें सम्मान देने के लिए हम प्रयास कर सकें। उनके परिवारों का जो त्याग है उसे हम याद करें, उनके प्रति सहानुभूति रखें।
0: अकॉर्डिंग 2024 में दुनिया भर के प्रवासी कामगारों ने लगभग 685 बिलियन डॉलर अपने परिवारों को भेजे। और आपको पता है आकाश, हमारा देश भारत इसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा करिश्मा आपने, और श्रोताओं हम आपको बताना चाहेंगे कि यह पैसे सीधे परिवारों तक पहुंचता है, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है। दुनिया के कई विकासशील देशों में परिवार प्रेषण आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। तो आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना करिश्मा एक फिल्म संगीत हो जाए।
0: बिल्कुल आकाश,

0: लक बाय चांस। श्रोताओं, आपने इस फिल्म से सुना यह प्यारा सा संगीत सपनों से भरे नैना शंकर महादेवन की आवाज में। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और करिश्मा, हम कहाँ थे?
1: तो आकाश, अभी हम थे कि हम बात कर रहे थे कि आज फैमिली रिमेटेंसेस दिवस है, तो उस बारे में। और इस साल 2026 की थीम भी बहुत ही प्रेरणादायक है, अनलॉकिंग द पावर ऑफ रेमिटेंसेस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि कैसे हम इन पैसों का इस्तेमाल न केवल घर चलाने के लिए बल्कि बच्चों की बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी कर सकते हैं।
0: श्रोता।

0: अक्सर लोग सोचते हैं कि ये पैसे सिर्फ खाने पीने में ही खर्च होते हैं, लेकिन ताज़ा जानकारी के अनुसार बात तो कुछ और ही है। करिश्मा, क्या है वो बात?
1: आकाश, मैं बताना चाहूंगी कि रेमिटेंस का एक बड़ा हिस्सा अब निवेश और बचत में भी जा रहा है। परिवारों का जीवन स्तर सुधर रहा है, वे अपने बच्चे को बेहतर स्कूल भेज पा रहे हैं, और तो और यहाँ पैसा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। जब एक

0: बेहतर स्कूल भेज पा रहे हैं, और तो और यहाँ पैसा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। जब एक परिवार बाजार से सामान खरीदता है तो वहाँ एक छोटे दुकानदारों की भी मदद होती है।
1: अरे वाह, यानी एक प्रवासी की मेहनत पूरे गांव या कस्बे की अर्थव्यवस्था को गति दे रही है। आज के दौर में तो तकनीक ने इसे और भी आसान बना दिया है। श्रोताओं, 2026 में डिजिटल मनी ट्रांसफर की भूमिका बहुत बढ़ गई है। पहले पैसे भेजने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदले हैं। अब मोबाइल ऐप्स और डिजिटल वॉलेट्स की जगह से यह काम पलक झपकते सेकेंडों में हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, ये बहुत ही आसान होता है और हमारा टाइम टेकिंग भी, मतलब टाइम बहुत बचत होती है
1: बिल्कुल,
0: इससे।
1: ऊर्जा और समय की बहुत बचत होती है करिश्मा।
0: और लेकिन आजकल ऐसे भी लोग हैं जो, मतलब आज की टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जागरूक नहीं है। तो आज के दिन का मकसद ही यही है कि सरकारें और निजी कंपनियां मिलकर ऐसे रास्ते निकाले कि यह सुविधा हर किसी तक, चाहे वो दूर दराज के गांव में ही क्यों ना हो, आसानी से पहुंचे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भेजने वाले की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बिचौलिया के पास न जाकर, यानी कि मेडिएटर के पास न जाकर के सीधा उसके परिवार तक पहुंचे। क्यों आकाश?
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं करिश्मा आपने, क्योंकि जिसने मेहनत किया है उसका भुगतान भी तो सही होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही श्रोताओं, हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में भी प्रेषण की लागत को कम करने और वित्तीय समावेशन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि पैसे भेजने की लागत कम हो ताकि परिवारों तक अधिक धन पहुंच सके। तो दोस्तों, हम आज उन सभी लोगों को सलाम करते हैं जो अपने परिवार से दूर रहकर दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियों की नींव होती है।
0: क्या बात कही आपने आकाश। तो बातें तो होते रहेंगी, क्यों ना अपने दोस्तों को वो फिर से गीत सुनाए।
1: तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं यह अगला ट्रैक।
2: Wanna natural night? Do you feel alright? Wanna natural night?

0: श्रोताओं, कभी अलविदा ना कहना। इस फिल्म से आपने यह सुना प्यारा सा गीत, वेयर इज़ द पार्टी टू नाइट, शान लॉय और साथियों की आवाज़ में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, अब समय है हमारे खास सेगमेंट का, यानी मनोबल मंगलवार, जिसमें आज हम सुनेंगे डॉक्टर बिंदा सिंह से आकाश की बातचीत। विषय है युवाओं के मनोविज्ञान पर, सोशल मीडिया और एआई का बढ़ता प्रभाव।
2: श्रोताओं नमस्कार। युवाओं की वाणी युववाणी सुन रहे हैं आप, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आकाश। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ साथ अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी हमारे जीवन को खासा प्रभावित किया है। ऐसे में युवाओं के मनोविज्ञान पर इन सब का कैसा असर हुआ है, इसी विषय पर हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ चुकी हैं पटना की जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विंदा सिंह। स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास कार्यक्रम युववाणी में।
3: जी नमस्कार सर।
2: मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया और एआई के बढ़ते चलन से युवाओं के मनोविज्ञान पर जो प्रभाव पड़ा है, उसे आप कैसे देखती हैं?
3: बिल्कुल, आपने सही कहा। सोशल मीडिया का प्रभाव तो युवाओं पर बहुत ज्यादा पड़ा है, खास करके एआई का। तो

0: क्योंकि चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए बच्चे युवा उस पर तुरंत अपना मतलब कोई भी प्रश्न का उत्तर खोज लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज भी है, हर चीज का एक वैल्यू होता है, लेकिन हम उसको किस तरह से यूज करते हैं ये निर्भर करता है। तो आज के युवा बहुत ही आसानी से इन चीजों को लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ती हैं।
1: मैम, युवाओं में सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल करने से कुछ दुष्प्रभाव भी देखे जाते हैं, क्या हैं वे नकारात्मक पक्ष और उनसे वो खुद को कैसे बचा सकते हैं?
0: देखिए ये जो भी चीजें हैं वो हमने शुरू से कहा कि ये बहुत ही लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन हम लोग उसका उपयोग जो गलत करते हैं उसका दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि बच्चे डिपेंड हो जाते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच उनका नहीं होता है और एक तरह से ऑब्सेशन कहते हैं एक बीमारी, हर चीज को इंटरनेट पे AI पे खोजने लगते हैं, तो जो कंसंट्रेशन होता है उनका वो खत्म हो जाता है, लोगों से कट जाते हैं, उनकी दुनिया एक छोटी हो जाती है जहां वो कुछ रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, कुछ देखना नहीं चाहते हैं, हर चीज को तुरंत पाना चाहते हैं और बिना मेहनत का। इससे क्या होता है कि उनका जो रियल जो एबिलिटी होता है वो कहीं ना कहीं दब जाता है और वो लोगों से भी कट जाते हैं, सोशल डिसऑर्डर भी यहाँ शुरू हो जाता है, आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है इजी गोइंग वाला, किसी जो भी चीजें हैं उसको AI से पालो, तो कंसंट्रेशन चला जाता है, लोगों से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, एक बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाता है, सोशल आइसोलेशन बढ़ जाता है और दूसरी चीज की आप रियल में जो है उससे कट जाते हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि वो अलग थलग पड़ जाते हैं, कटे कटे से महसूस करते हैं, तो अगर हम बात करें इसमें खासकर परिवार की भूमिका की, उनके माता पिता की भूमिका की, तो वो अपने बच्चों को साइबर क्राइम से, इसमें एक सेक्सटॉर्शन एक वर्ड आता है या ब्लैकमेलिंग आता है, उससे वो कैसे बचा सकते हैं? और किसी विषय को अगर हम टैबू बना के रखें, जैसे मैंने बोला सेक्सटॉर्शन, इसके बारे में बहुत लोगों को अभी पता नहीं होगा या खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं, तो यह क्या सही है? क्या इससे काम चल जाएगा? हमारे सोसाइटी को इससे परेशानी नहीं होगी? इस पर आप क्या सोचती हैं?
0: आपने बहुत ही सही बात कही, क्योंकि बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है, खास करके जो टीनेज होते हैं वो उन चीजों को जल्दी देख लेते हैं जो उनको एक्साइटेड करती हैं, उत्तेजित करते हैं, तो बच्चों को इजी इन सब चीजों से मिल जाता है तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। आपने एक शब्द कहा वो आजकल बहुत बढ़ गया और लोग खुल के बात करने में शर्माते हैं, खास करके पेरेंट्स को लगता है मैं बच्चों से इन सब बारे में क्यों बात करूं, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि उनके उम्र और उनके लेवल के हिसाब से गलत हो और वो मिसगाइड हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि पहले तो बच्चों को ये सही और गलत का ज्ञान दें और डिपेंडेंसी को हटाने के लिए पहले तो खुद भी अपने मोबाइल एडिक्शन या नेट एडिक्शन या AI से थोड़ा सा दूरी बनाएं, इससे बच्चों के साथ आप एक अच्छा इंटरेक्शन कर सके। और बच्चे अगर इस गलत में फंस भी जाते हैं, जैसे बहुत सारे केसेस में पैसे का गमन हो जाता है, कुछ सेक्सुअल अब्यूज कर देते हैं लड़कियों को भी लड़कों को भी, वहां बच्चे डर जाते हैं और डर के वो सारी चीजें देने लगते हैं, कभी पैसा देने लगते हैं, कभी अपने को मारने लगते हैं, कभी कुछ मतलब गलत स्टेप ले लेते हैं। तो वहां पर चाहिए कि बच्चों से बैठ के बात करें और बताएं कि अगर गलती होती है तो गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन उसके लिए अपने आप को मारा नहीं जा सकता है, ना ही अपने आप को नकारात्मक और इसको कहते हैं डिप्रेशन में लाना है। तो बच्चों के साथ अभिभावकों का बैठना, बातें करना, ये बहुत ही जरूरी है, खास करके आज के समय में जब युवा अपने आप को अलग थलग कर चुके हैं, वो पेरेंट्स के साथ बैठना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है हर चीज तो AI दे ही रहा है, फिर उनसे क्या बात करना, और वो AI दे रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ले किस तरह रहे थे ये निर्भर करता है युवा पर, जो गलत तरीके से लेंगे तो उसका दुष्प्रभाव होना एकदम स्वाभाविक सा बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपने, और जैसा कि आप बता रही हैं उदाहरण पेरेंट्स को खुद भी पेश करना होगा, ऐसा ना हो कि पर उपदेश कुशल बहुतरे, जो अक्सर कहा जाता है कि उपदेश देने के लिए तो बहुत लोग मिल जाते हैं, वो स्थिति अगर होती है तो बच्चों पर उनका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। मैम अगला सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, कई बार होता है जैसा आपने बोला कि बच्चे या युवा फंस जाते हैं उस तरह के ट्रैप में, अगर उनको उससे निकलना है बाहर या कोई और स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती है जिसमें उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है, तो कैसे वो सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट का चयन करें, कहाँ सलाह लें, और कई बार AI को जो वो साइकोलॉजिस्ट मान लेते हैं या डॉक्टर मान लेते हैं, अगर उससे सलाह लेते हैं तो उसके क्या दुष्प्रभाव हैं?
0: देखिए किसी भी चीज के लिए एक स्पेशलिस्ट तो होना

0: चाहिए क्योंकि उसको प्रॉपर ज्ञान होता है। और आजकल एक फैशन हो गया है, आप AI पे या इंटरनेट पे इतनी ज्यादा काउंसलिंग करने लगे हैं जिन्हें खुद पता नहीं है वो क्या करते हैं, बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं और बहुत सी चीजें उनको लगता है कि पेरेंट्स से कैसे बताएं, अपने प्रॉब्लम को किससे शेयर करें। ऐसे केसेस भी आते हैं कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हम पेरेंट्स को बताएं या ना बताएं, तो सीधे AI से पूछना शुरू करते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए जिन्हें खुद भी ये पता नहीं है कि उनके पास कोई क्वालिफिकेशन है। अभी देखिएगा कि 90% बैठे हुए हैं लाइफ कोच बन गए हैं, जब बात करें तो पता चला उन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया, तो खुद उनका स्टेप नहीं है तो वो अगले को क्या देंगे। तो मिसगाइड होने का चांसेस बहुत होता है। बच्चों को चाहिए कि प्रॉपर तरीके से, आज के डेट में बहुत सारे RCI से रजिस्टर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करें। कॉग्निटिव थेरेपी होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है और कहीं बदनामी नहीं होती है उनकी। और वो अपने कहते हैं ना कि अपने मन की बात अगर किसी को बता दो तो आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाती है। पर किसको बताओ, ऐसे लोगों को बताओ जो आपको समझता हो, आपके साथ वो प्रोफेशनल हो, उसकी दुनिया और आपकी दुनिया में एक मैच होता हो, उसको आप तलाशें और उसी के पास जाएं। क्योंकि कहते हैं ना, आपने बहुत ही अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, नीम हकीम खतरे जान। आप गलत चीज में गलत इंफॉर्मेशन और गलत डॉक्टर, तीनों आपके हेल्थ के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही घातक होते हैं। इसलिए बच्चों से खास करके मैं कहूंगी, युवाओं को, कि कभी भी इस तरह के साइट पे अपने आप को ना ले जाए, और ऐसा ना कि फंसते चले जाए। आप अपने माँ बाप से बात करें, अपनी समस्याओं के बारे में बात करें, खुल के बोलें कि हाँ मुझे जरूरत है। और मैंने अभी ये महसूस किया है कि बहुत सारे बच्चे अपने अभिभावकों के साथ खुल के आते हैं और बहुत ही अच्छे स्थिति में है। कई बार साइबर क्राइम में भी फंस जाते हैं, सेक्सुअल अब्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन अगर परिवार का सहयोग उन्होंने लिया तो बहुत हद तक उससे निकलने में अपने आप को सक्षम बना देते हैं।
1: जी बिल्कुल, तो परिवार का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है मैम, आप जैसा बता रही हैं। मैम ये भी हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा पेरेंट्स का सहयोग होना चाहिए, तो कई बार ये भी होता है कि पेरेंट्स ही खुद काफी देर तक मोबाइल फोन का या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो कितना एक समय अवधि जो है वो सेफ माना जाए फोन या लैपटॉप के यूज के लिए, जो कि हमारे मनोविज्ञान के हिसाब से ठीक है, और किसे अत्यधिक माना जाए, इस पर आप क्या राय रखती हैं?
0: देखिए, मैं तो अभिभावकों से जरूर कहना चाहूंगी कि आप अगर एक रोल मॉडल हैं और आपका जब व्यवहार, खास करके महिलाओं को मैंने देखा है कि लगातार फोन से हटती नहीं है, बात ही करते रहती है लैपटॉप पे बैठे, पुरुष और महिला अभिभावक दोनों करते हैं, ऐसे में बच्चे जाए तो जाए कहाँ। आप बच्चों के साथ अगर सच में एक उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं पूरे अच्छी तरह से, तो आप बच्चों को टाइम दें, उसके साथ बैठे। ये चीजें पहले नहीं थी तो क्या बच्चों का इंटरेक्शन नहीं होता था, बच्चों में नॉलेज नहीं था, ज्यादा था। अभी के बच्चे माता पिता से कट गए हैं, पारिवारिक संस्कार की बात करें तो जीरो हो गया है। आज किसी को प्रणाम करने की बात करें तो बच्चे शायद खुल के बाहर नहीं आते हैं, तो वो लैपटॉप पर बैठ के बातें कर लेंगे, AI से भी बात कर लेंगे, लेकिन कहीं किसी सार्वजनिक जगह पर उन्हें कहा जाए कि बात करो तो शायद खुलने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। और ये सब होता है उनका डिपेंडेंसी, और इसके लिए अभिभावकों को चाहिए बच्चों के अंदर के क्वालिटीज को निकालने के लिए सहयोग करें, उन्हें बाहर ले जाएं, पार्क में ले जाएं, बहुत सी जगह है सांस्कृतिक कार्यक्रम में ले जाएं, लाइब्रेरी में अपने साथ बैठें, तो शायद बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और एक अच्छा जो उनका बॉन्डिंग के साथ कम्युनिकेशन स्किल और बिहेवियर दोनों में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होगा। तो आज के समय में अभिभावकों को चाहिए कि खुद को ऑब्सेस न करें, एक बीमारी लें, किसी भी चीज को ना चाहते हुए आपका 24 घंटा हाथ मोबाइल पे और 24 घंटा आपका हाथ लैपटॉप पे रहेगा। आप किसी घर में चले जाइए तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे वही देखेंगे जो आपके अभिभावक कर रहे हैं और वही सीखेंगे जो उनके माता पिता कर रहे हैं। तो कभी भी बच्चों को एक सही गाइडलाइन देने के पहले अभिभावकों को चाहिए कोई एक अच्छा रोल मॉडल बने, और यही रोल मॉडल एक बच्चे को एक सही संस्कार और एक अच्छे व्यक्तित्व का मालिक बना।
1: बिल्कुल मैम। मैम थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे टैबू विषय की या टैबू टॉपिक, तो अगर हम बात करें कि हमारा समाज जो है वो अक्सर मानता है कि आपको बुखार हो सकता है, आपको निमोनिया हो सकता है, आपको कई अन्य बीमारियां हो सकती है जो शारीरिक रूप से प्रभावित करती हैं, क्या हमारा समाज इस चीज को मानता है कि मानसिक रूप से भी बीमार पड़ सकता है? और अगर नहीं मान पा रहा है, नहीं स्वीकार कर पा रहा है, तो इसे कैसे, इस पर जागरूक करने की जरूरत है, इस पर कितना खुल के बात करने की जरूरत है?
0: बिल्कुल, बहुत खुल के बात करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हमारा शरीर और मन दोनों हमारा है। अगर शरीर की बीमारी है तो वो उसका कारण भी मन है, और मन की बीमारी है तो उसका कारण शरीर है। मतलब शरीर और मन

0: दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं है। शारीरिक बीमारियों के लिए आप खुल के अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो मानसिक बीमारियों के लिए भी खुल के आना है, क्योंकि अगर आपका मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कैसे कल्पना करेंगे एक स्वस्थ शरीर की। इसलिए आपको इस जो हमारा बना हुआ है ही मानसिक बीमारियों के पास नहीं जाना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, पागल कहेंगे, ये दिमाग से निकालने की जरूरत। और समाज में ये संदेश या जागरूकता देना है कि हर व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ होना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक रूप से। आज डॉक्टर सारे इस बात को मानते हैं कि अगर कोई भी शारीरिक बीमारी है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा मनोस्थिति है। अगर हम नाराज होते हैं, हम चिंता में होते हैं, हम डिप्रेशन में होते हैं, तो बहुत सारी शारीरिक बीमारियां आपके पीछे आती हैं। तो बीपी हो, हम इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, मतलब आधी बीमारियों का कारण हमारा मनोस्थिति है। तो खुल के आए, खुल के बात करें। ये मैं नहीं कहती कि पहले की तरह है, आज लोगों में जागरूकता आई है, पर और ज्यादा आने की जरूरत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आपने भी सुने होंगे कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या कुछ अपने आप को आत्मघाती कदम उठाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम खुल के बाहर आते हैं तो उनकी जान बच सकती है, उनका मनोबल बढ़ सकता है और एक अच्छा व्यक्ति बन के वो निकलते हैं।
1: जी मैम, जरूर। तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारा शरीर और मन आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे का संबंध है, और अगर हम दोनों को ना समझें तो स्वस्थ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जरूरी है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, इसके लिए दोनों पर बातचीत हो। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारत सरकार ने जो टेली मानस एक हेल्पलाइन नंबर है, आप कभी भी मानसिक रूप से परेशानी महसूस करें, कभी भी आपके मन में अवसाद के भाव आए, तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पर जरूर बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। ये नंबर है 14416। मैं नंबर फिर से बता दूं आपको, 14416, यानी कि 14416। इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी सहायता ले सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैम, जाते जाते आखिरी सवाल हमारा आपसे होगा, आप युवाओं को क्या संदेश देंगी, क्या कहना चाहेंगी आज के यूथ को जिनके मन में करियर को लेकर कई सारे सवाल हैं, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कई सारे सवाल हैं, भविष्य को लेकर के कई सारे सवाल हैं।
0: मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ कि वो भविष्य है हमारे देश के, परिवार के और खुद के, तो उन्हें एक रूटीन में रहना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, अपने लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। रूटीन में आपका योगा होना चाहिए, आपके स्वास्थ्य, खान पान, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आती हैं। और युवाओं से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज रातों रात नहीं मिलती है, इसलिए हरदम प्रयासरत रहें, आप सफलता जरूर पाएंगे, लेकिन कोई भी धैर्य को छोड़ेंगे और रातों रात चाहेंगे पाना तो मुश्किल होगा। दूसरी चीज की आप सोशल मीडिया से अपने आप को थोड़ा अलग करें, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच से आप बहुत सी चीजों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और लोगों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, और जहां तक हो सके कि ये कैरियर इस उम्र में ज्यादा जरूरी है, प्यार मोहब्बत तो होता ही रहेगा, इसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, और कोई भी परेशानी हो तो बिल्कुल साझा करें, सबसे पहले अपने परिवार से, और उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो प्रोफेशनल की सहायता लेने में कभी भी पीछे।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोतागण इस बातचीत को सुनकर काफी लाभान्वित होंगे और अपनी समस्याओं पर वो खुल के बात कर सकेंगे, इसके लिए वे आगे आएंगे। मैम, जाते जाते आप अपनी पसंद का एक गाना बताएं जो हम आपको सुनवाना चाहेंगे।
0: मैं रुदाली का गाना बहुत मुझे अच्छा लगता है, दिल होम होम करे घबराए, तो मैं चाहूंगी श्रोताओं को जरूर सुनाए।
1: धन्यवाद मैम।

0: तो श्रोताओं, अभी हमने सुना लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।
1: श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले विषय, जो कि है देश बंधु चित्तरंजन दास की पुण्यतिथि।
0: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नायकों में से एक रहे चित्तरंजन दास की आज पुण्यतिथि है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजनीतिक वकील और कवि होने के साथ साथ एक पत्रकार भी थे।
1: श्रोताओं, इसके साथ ही चित्तरंजन दास ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था।
0: उनके पिता भुवन मोहन दास कोलकाता उच्च न्यायालय के जाने माने वकील थे।
1: चित्तरंजन दास ब्रह्म समाज के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़कर अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज को दान कर दी थी।
0: जिसके बाद उन्हें देश बंधु कहा जाने लगा। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपना विलासी जीवन छोड़कर पूरे देश भ्रमण के लिए निकल पड़े।
1: श्रोताओ, हम आपको बता दें, देश बंधु चित्तरंजन दास असहयोग आंदोलन के दौरान सपत्नीक गिरफ्तार हुए थे और उन्हें 6 महीने की सजा भी दी गई थी। उन्होंने कांग्रेस में ही एक अलग पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। अपना सारा जीवन स्वतंत्रता आंदोलन में समर्पित करने वाले चित्तरंजन दास का निधन 16 जून 1925 को हो गया था। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास को उनकी 101वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह अगला ट्रैक।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने

0: घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
1: तो दोस्तों, आज 16 जून है और आज का दिन हम उस शांत जीव को समर्पित करते हैं जो करोड़ों सालों से हमारी धरती और सागरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कछुआ की। आज पूरी दुनिया में विश्व समुद्री कछुआ दिवस मनाया जा रहा है।
2: श्रोताओं, हम आपको बता दें, यह दिन आर्ची कैर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें समुद्री कछुओं के संरक्षक या का जनक या समुद्री कछुओं का पिता कहा जाता है। उन्होंने अपना जीवन समुद्री कछुओं के अध्ययन और उनके संरक्षण को समर्पित किया था। वे वाकई एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कछुओं के संरक्षण को दिया।
1: और अब बात करते हैं कि 2026 में कंजर्वेशन की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, आज ही के दिन 16 जून 2026 को अटलांटिक महासागर में लेदरबैक कछुओं को बचाने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय अलायंस की शुरुआत की गई है, जिसे विल्स अटलांटिक लेदरबैक टर्टल अलायंस नाम दिया गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और संस्थान मिलकर उनके सुरक्षित भविष्य पर काम कर रहे हैं।
2: तो दोस्तों, ये जीव हमारी धरती के अनमोल रत्न हैं, इन्हें बचाना हमारा फर्ज है। आज के दिन हम यह प्रण लें कि आप समुद्र और उसकी लहरों को साफ रखने में मदद करेंगे और बच्चों को भी प्रकृति और समुद्री जीवों के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि जागरूकता ही संरक्षण की पहली सीढ़ी है।
1: तो आकाश, ये तो हो गई कछुओं की बात। अब हम अपने युवाओं दोस्तों से कुछ रोचक तथ्य के बारे में बताएंगे।
2: बिल्कुल करिश्मा, अब श्रोताओं, हम बात करेंगे कछुए की बात मेढक की। तो क्या आप जानते हैं, आजकल मेढक भी तौलकर बेचे जा रहे हैं?
1: सही में ऐसा है क्या?
2: जी हाँ करिश्मा, यूरोपियन देश दुनिया भर में मेढकों का सबसे बड़ा आयातक है, जहाँ हर साल करोड़ों मेढक मंगवाए जाते हैं। तुर्की, अल्बानिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से, खासकर फ्रांस, बेल्जियम में मेढकों से बने खाने बहुत ही पसंद किए जाते हैं।
1: ये तो मैं भी सुन रही हूँ, आजकल ये काफी फैंसी डिशेस में से एक हो रहा है, यानी कि इसको भी मछली और अन्य मांस भोजन की तरह बेचा जाता है, यानी कि जितना बड़ा और भारी मेढक उतना दाम।
2: बिल्कुल, तो है ना श्रोताओं, ये मजे की बात, जहाँ लोग मेढक तोलने को एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते हैं, अब हालात ये हैं कि सचमुच में मेढक तोले जा रहे हैं। तो करिश्मा, क्यों ना श्रोताओं को कार्यक्रम का आखिरी टैक्स सुनवाया जाए?
1: बिल्कुल आकाश,
2: आइए श्रोताओं सुनते हैं आखिरी।

0: तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है सलाम नमस्ते का, क्योंकि घड़ी की स्टूडियो ने किया है इशारा और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो श्रोताओं, आज आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है feedback@patna@gmail.com। अब अपने रेडियो दोस्त आकाश
1: और करिश्मा को
0: दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए मगही कार्यक्रम मागधी।

माग्धी सुन्निहार के नीलाद्री के प्रणाम। श्रोता बंधु, आय हन मंगलवार, हमने प्रस्तुत हियन हिनका लेल माग्धी कार्यक्रम के लेके। तो जैसन कि सब दिन बतबहियन कि आय की प्रसारित करबन हिनका ले, तो आय जे हमने बातचीत करबे न, तो जोग के असर बुढ़ापा पर, हाथ गोर पर या महिला लेल की होबे है आ एकर कतना फायदा होबे है योगाभ्यास के, हमनी एकरा पर बातचीत करबे। आ लोकगीत सुनबे रामशरण प्रसाद और साथी से, साथे साथ एगो भेंटवार्ता भी सुनबे मगही के ग्रामीण क्षेत्र में विकास के स्थिति। भेंटवार्ताकार हथिन डॉक्टर राधाकांत कुमार आ भेंट करता हथिन डॉक्टर लक्ष्मी पासवान। स्वस्थ आ ऊर्जावान बुढ़ापा लेल नियमित योग सबसे लमहर उपाय है। नहीं खाली जोड़े बल्कि दर्द जे अकर जा है हाथ गोर, देह जे में संतुलन में नहीं रहा है, पाचन कमजोर हो जा है, बुढ़ापा कहबे कर है कि एने सीओ तो ओने फट जेते, मने घिसल पिटल चद्दर वाला हाल हो जाए। तो ई लेल बुढ़ापा के प्रक्रिया के धीमा आ सुखद बनाबे के लेल उम्र के मुताबिक तरासन हो गलन, एकरा से तनी रीढ़ के हड्डी मजबूत हो जा है, संतुलनो निमन हो जा है, भुजंगासन एकरा से पाचन शक्ति, पेट आ गर्दन के दर्द में राहत हो जा है, भद्रासन एकरा से घुटना, कुल्हा और जांग के लचीला बनावल जा है, शवासन से तनाव मुक्त मन हो जा है, अनुलोम विलोम से फेफड़ा मजबूत होब है। योग आसन जब शुरू करथिन अगर बेसी उम्र में तो 10-15 मिनट करथिन, आ एकर बाद धीरे धीरे जब अपने इतना देर कर लहथिन बढ़िया से तब समय के बढ़ाथिन। आ खड़ा होवे भाई भुइयां पर बैठे में जो दिक्कत हो जान तो कुर्सी भाई देवार के सहारा ले लेथिन। नहीं खाली बुजुर्ग लोग, महिला के भी मासिक धर्म हो गले, गर्भावस्था होले, जब हुनकर मासिक धर्म बंद होबे है मने रजो निवृत्तिक समय होले, तो ऐसन में बड़ी आंधी तूफान सन के हुनकर देह मन के स्थिति रहे है, तो एकरा में योग कैला से तनाव से मुक्ति, जोड़ के दर्द ये सब से छुटकारा मिले है। आ साथे साथ जे देह है, देह में लचीलापन होबे है, मांसपेशी मजबूत होबे है, बुतरू हो इस पहने ओकर बाद भी जे शरीर में बदलाव होबे है ओकरा संहारे में बड़ी मदद मिले है। अब जैसे महिला में हार्मोन के बदलावो बहुत होबे है, वो चलती हुनका कखनो अवसाद हो जाहन तो कखनो बड़ी खुश हो जाथिन, कखनो बड़ी चिंतित हो जाथिन, कखनो खूब

बोले लगे हथिन तो ई सब नियन जे चीज है एकरा में भी योगासन बहुते फायदा करे है। बालासन से पीठ के निचला हिस्सा में दर्द में फायदा होवा हन। विपरीत करनी से रक्त संचार निमन होवा है। कोनासन से जे देह के कोना है ओकर मांसपेशी मजबूत होवा है। आ कपालभाति अनुलोम विलोम तब फेफड़ा कार्य क्षमता बढ़ेबे करे है। साथे साथ शरीर के विषरहित आओ चमड़ी के चिकनो बनबे है। आ हाथ गोर तो कोनो उम्र में रहे ओकरा लचीला आ निरोग होना बहुते जरूरी है। ता जो नियमित योग करा हथिन त दर्द जाम नस के कमजोरी एकरा सबसे मुक्ति मिल जेतन। अंगुरी के अकड़न घट जाए है। गोमुखासन से हाथ के मांसपेशी आ नस के खोले लेल बहुत फायदा करा है। आ ई कन्हा केहनी आर जे कहथिन कलाई कलाई के भी मजबूती दे है। तो ऐसे ही अपन समस्या के मुताबिक योगासन करथिन आ ओकरा से फायदा उठाथिन। आ अब हमनी सबसे पहिने एगो झूमर सुन लही। झूमर एकर कलाकार हथिन रामशरण प्रसाद अवसाथी।

0: कते निमन झूमर हले तो हिनका से आरो हमनी लोकगीत सुनबे आ देखथिन कि गर्मी जे है सब बढ़ते जा रहले हैं। हमनी सब पहिने भी देखा हलिए गर्मी तो जे नवतपा के दिन है तो कह हले कि नवतपा में 9 दिन जब धरती तपा है तो ओकर धरती पर अलग अलग असर पड़े है। कीड़ा मकोड़ा मर जा है, नमी सूख है, आ नमी जब सूख है तो ओकर बाद पानी जब पड़े है तो बड़ी बढ़िया हो जा है, धरती उपजाऊ हो जा है, सोंधा महक आवे लगे है। धरती पानी के सोख है जे बाद में जाके भूगर्भ के जल बने है। अब आजकल हमनी एगो आर चीज सुने लगलिए हैं कि अलनीनो चलती हर 3 बरस 4 बरस में एक बेरी गर्मी बढ़ जाए। अब कहथिन कि ई कौन बाबा आगल खून अलनीनो बाबा, तो ई जे है बताबह हियन सुननिहार सब कि हमनी के जरूर जाने के चाहिए कि हमनी के पर्यावरण में जे उथल पुथल हो रहे हैं तो ओकरा में उ पर्यावरण पर कौन कौन चीज के प्रभाव पड़े है। हमने सब जाने हिए कि गाछ वृक्ष कट गए रहले हैं, एकर प्रभाव पड़ रहले हैं, लेकिन आइ हमने तनी सुन बात करबे अलनीनो पर। ई जे है से एगो प्राकृतिक जलवायु चक्र है जे हमने के समुन्दर है तो समुन्दर मुख्य रूप से 3 गो है, ओकरा में जे हमने के प्रशांत महासागर है ओकर जे बिचला भाग है आ पूरब वाला भाग है ओकरा में सतह पर जे है महासागर गर्म हो जाए, समुद्र गर्म हो जाए आ तब जब मानसून के हवा के रुख रहा है जे दिशा रहा है उ तनी बदल जा है तो ओकरा से कहीं खूब मेघ पड़े लगे है आ कहीं खूब बाढ़ हो जाए है तो कहीं सूखा आ गर्मी के हालात हो जाए है। तो अभी हमने अभी पर्यावरण के लेके आरो खिस्सा करबे तो अलनीनो वाला खिस्सा तो हो गलन, बाकी हम ई मैं भेंट वार्ता के बाद सुनाब हियन। मगही के ग्रामीण क्षेत्र में विकास के स्थिति भेंट वार्ता का रहथिन डॉक्टर राधाकांत कुमार आ भेंट करता डॉक्टर लक्ष्मी पासवान।
1: आज के भेंट वार्ता के विषय है मगध के ग्रामीण क्षेत्र में विकास की स्थिति और एक बारे में जानकारी देवे लगी एलथिन है राधाकांत कुमार जी, परियोजना निदेशक ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना। तो सबसे पहले हम इनका अपना स्टूडियो में स्वागत कर रही, नमस्कार।
2: नमस्ते
1: राधाकांत कुमार जी, सबसे पहले हम अपने से ये जानने लगी चाहे ही कि मगध क्षेत्र के ग्रामीण एरिया में जो गांव गिराव के विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं कैल जा रहे हैं ओकर बारे में बताथिन कि एकर का स्थिति है, विकास कितना रूप में कैल जा रहे है।
2: देखो विकास के जो स्थिति है ना ओकरा सीधे सीधे बतावल जाए के मतलब कि कोई स्केल ना है, पैमाना ना है
1: जी, जी।
2: कि हम कोई चीज होली ओकरा सीधे सीधे बता दी। विकास के स्थिति एकरा से जानल जा है कि हमर जो मगह के क्षेत्र हले
1: जी, जी।
2: वो पहले कैसन हले और आज के तिथि में कैसन है
1: जी जी।
2: तो ये तो सब कोई मतलब कि जाने हथिन, सब कोई देखलथिन है कि पहले हम इसमें के गांव में स्कूल ना हो हले, बच्चा लोग बहुत दूर जा हले
1: और पढ़े लगी बहुत दूर जाए पड़ा
2: जाए पड़ा हले। और अभी तो है कि अब देखबे करो कि मतलब कि हर टोला में हर मोहल्ला में हमारे जो सरकार जो है उस सब में स्कूल और ये सब खोल दल के है। इवन पहले मतलब का हले ना कि कॉलेज भी जाए लगी लोगों के सोचे पड़ा हले कि हम बाल बच्चा के कहाँ एडमिशन करेबी। अब बहुत जगह से मतलब अच्छा अच्छा कॉलेज जो है मतलब खुल गए है, बस हमनी के जितना जो लेकिन बुतरुअन है सब वहीं आवा है जा है और आसानी से पढ़ ले है।
1: हाँ गांव देहात में भी कॉलेज हाई स्कूल मध्य विद्यालय ये सब खुल गए।

0: अच्छा, पहले सबसे ज्यादा कष्ट हो वाले हमन के जो सब जो लड़की सब जो हलन
1: जी जी
0: उनका उनका तो और दिक्कत हल, एक चलते कोई लड़की के पढ़ावा भी ना हलथिन।
1: हाँ
0: अब तो देखबे कैलू है कि हम लोग मगह के क्षेत्र में लड़कियां सब है जो बहुत आगे चल करके सब कुछ कर रही हैं,
1: जी
0: सब
1: जी
0: काम कर रही हैं, भी हर क्षेत्र में मतलब कि उनका अपना राम रोशन कर रहथिन है। और अब तो लड़का से ज्यादा लड़की लोग ही मतलब कि सब टॉप भी कर रहथिन, सब ये कर रहथिन,
1: हाँ मन लगा
0: तो
1: के
0: ये है।
1: पढ़े लगल थी ना सब।
0: हाँ, और ये होल एगो शिक्षा के क्षेत्र में
1: जी जी
0: ये सबसे भयावह स्थिति हल मतलब मगह क्षेत्र में ना, कि जब कोई बीमार पड़ा हलन तो कहाँ इलाज करावे जाते हैं,
1: हाँ, चिकित्सा के बहुत
0: कितना बड़ा अथी हल
1: समस्या
0: जो
1: है। जी जी
0: समस्या हल। मतलब हम तो देखलियो है कि मतलब जब बीमार कोई पड़ा हलथिन, खास करके रात में पड़ गलथुन, तो उनका
1: खटिया
0: खटिया
1: पर
0: पर
1: कर।
0: लाद करके आदमी मतलब जा रहा है पैदल, पता चल लो कि तब तक रास्ते में मर गलन। अब हमारा सरकार के मतलब की कृपा से सब जगह है जो मतलब ये कुछ बोला
1: अस्पताल के,
0: एम्बुलेंस
1: हाँ
0: एम्बुलेंस और गाड़ी और ये सब के सुविधा हो गले,
1: अस्पताल के भी व्यवस्था कर
0: व्यवस्था
1: देवल
0: सब जो
1: गले
0: हो
1: हैं।
0: गले, दवाई वहीं मिल जा है।
1: जी
0: पहले
1: जी
0: हॉस्पिटल सब में डॉक्टर रहते नहीं थे, अब सब जगह डॉक्टर के पोस्टिंग हो गले है, नर्सेज हैं, आंगनबाड़ी खुल गले है, छोटकन छोटकन बुतरुअन के इलाज होवे लगी सब वहीं होवा है।
1: जी
0: पहले जब मैं क्या बोले है, जब बच्चा जब पैदा लेवे के हल है तो गाँव के डगनिन सबको खुशामद कर रहा सब
1: हाँ, पहले डगरीने
0: वही
1: प्रसव के
0: कर
1: काम
0: तब
1: करीबे
0: करते
1: कराए
0: थे।
1: थे।
0: अब आप देखो कि सब गांव में कहूँ वो नर्स है, ये है, वो है, सब मतलब जा करके
1: जी जी
0: और सब सुविधा वहाँ मिल रहे है। दूसरा वहाँ का मतलब पहले क्या हाल है कि रोड रोड
1: जी
0: नाम के चीज़ है ये ना हले,
1: जी जी
0: बहुत से ऐसे लोग थे जो रोड देखबे नहीं किए थे। आज देखो कि सब जगह पक्की रोड है, ग्रामीण रोड है और ईटा करण वाला रोड है,
1: हाँ, हर
0: सब
1: गांव
0: तरह
1: के
0: के
1: मैंने
0: मतलब
1: सड़क से
0: कि
1: जोड़ देवल
0: सड़क
1: गए
0: से
1: हैं।
0: जोड़ देवल गेले।
1: जी।
0: तीसरा मतलब कि जो विकास के जो ये आया सबसे ज्यादा उसमें बिजली में, हमारा याद है कि जब हम लोग जब पढ़ा हली ना तो वही ढिबरी ढिबरी के
1: जी
0: ढिबरी
1: जी
0: मैंने
1: हाँ
0: समझा ना, ढिबरी जो
1: हाँ
0: मतलब किरासन तेल जगरा में
1: ढिबरी से
0: यूज
1: हमहूँ पढ़
0: करके,
1: लिए हैं।
0: और ढिबरी मतलब से हम लोग पढ़ते थे। हम तो इतना सुने कि पहले के लोग हैं जो वो क्या वो जो रात में जो एगो चलता है भुकीबा जिसको बोलते हैं, उसकी रोशनी में भी लोग पढ़ा हल। अब तो सब जगह बिजली पहुँच गए है, बिजली से ये है। तो
1: जी
0: ये
1: जी
0: सब विकास की स्थिति ही है कि जो पहले के मतलब जो विकास पहले जो हम निस्मन के हाल और ओकरा से आज जो भी अच्छा चीज़ है जो लोगों के काम आवा है ओकरे ही विकास का ही, और ये विकास होले है मगह में भी
1: जी
0: विकास
1: जी
0: होले है।
1: राधाकांत कुमार जी, अपने बड़ी अच्छा जानकारी दलथिन। अब अपने ये बताथिन कि जे भी विकास होले है, एकर बाद आओ विकास के कौन कौन सा स्थिति बना है, कौन कौन चीज चाहिए।
0: देखिए ये जो हमारे जो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार खास करके पहले शहर के लिए सब चिंता कर रहा वैसा स्थिति आज न है।
1: जी
0: आज
1: जी
0: गांव घर के भी चिंता सरकार भी कर रहते हैं, लोग भी जानते हैं, और जो शहर वाले लोग हैं ना वो भी चाह हथिन कि मतलब गांव घर के विकास हो।
1: हाँ,
0: तो
1: गांव के विकास लगी ढेरों योजना भी चल रहे
0: बहुत
1: हैं।
0: योजना चल रही है। अब योजना
1: जी
0: के जहाँ बात है लो
1: जी
0: तो
1: जी
0: योजना में सुन लू हो तो मनरेगा,
1: हाँ,
0: पहले
1: मनरेगा।
0: गरीब घरवा मतलब जितने भी जो लोग हलथिन वो गांव घर में जाते थे काम करने, तो उनको क्या मिलता था, एक सेर मजदूरी दो सेर मजदूरी
1: जी
0: और
1: जी
0: अनाज कुछ मिलता था, पैसा तो उन लोगों को देखने के लिए नहीं मिला हली उनका। आज वैसा स्थिति नहीं है, सरकार मनरेगा में हर परिवार के हर लोग के जो भी काम मांगते ओकरा काम दे है, 100 दिन के उसका 1 साल में काम देवे के जिम्मेवारी ले के है और ओकरा लगी पैसा दे है। तो इतना से तो ये हो गई कि सब लोग के पास कुछ ना कुछ पैसा आ गले। दूसरी चीज कि पहले के गांव में क्या था कि लोग काम है तो कर, अब नहीं है तो बैठल है, बरसात में तो काम मिलता ही नहीं था। आज मनरेगा के आने से ये हो गया है कि हर लोग जब चाहथन जब उनका काम चाहिए तब काम मिलत, जब खाली उनका एक काम मांगना है
1: जी
0: वो
1: जी
0: काम उनको मिल जाएगा।
1: लेकिन राधाकांत कुमार जी, एकरा में हम थोड़ा सा ये कहबन कि कहीं कहीं यहो शिकायत मिला है कि काम नहीं दिल जा है, लोग बैठे रह जाथिन काम करे के आशा में।
0: देखिए ऐसा बात तो है ये है कि मतलब कि काम ना मिल रहा है ऐसा बात ना है,
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: लोग ऐसा भी हथिन ना वो काम कर लेना चाहथिन, वो चाहथिन कि
1: अच्छा
0: बिना
1: अच्छा
0: काम कैले हमारा पैसा मिल जाए,
1: जी जी जी
0: तो ये एक समस्या भी है। लेकिन यदि काम मतलब कि कोई मांगलथिन और उनका काम यदि ना दिलन तो उसमें उनका घाटा नहीं है, 15 दिन तक यदि वो काम ना मिलले तो
1: जी जी
0: उनका मतलब कि बैठले बिना काम मतलब कैले और उनका है जो पैसा मिलते,

0: और एकरा चलते जिनके चलते उस पर काम उनको नहीं मिला, तो उस पर सरकार है जो निगरानी रखती है, उसको दंड देती है, उससे पूछल जा है कि हाँ भाई का बात हो रही जगह चलते उसका काम न मिले। कुछ लोग मतलब कि शिकायत है,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: इस शिकायत की मतलब कि दूर करने के लिए व्यापक रूप से हर संभव जितना जो मतलब उपाय चाहिए वो सब उपाय
1: ओकर भी
0: कैल जा
1: उपाय
0: रहा
1: कैल
0: है। जी
1: जा रहा है।
0: जी जी जी
1: राधाकांत कुमार जी, बहुत अच्छा जानकारी देलथिन। अब हम ये भी चाह रहे हैं कि आओ भी जो सरकारी योजना चल रहे हैं
0: जी
1: गांव गिराव के विकास लगी,
0: जी
1: ओकर बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताथिन,
0: हाँ, ओकर
1: ताकि
0: बारे
1: हमारे
0: में
1: श्रोता
0: देखिए,
1: लोग
0: ये तो
1: जानथिन और
0: मनरेगा
1: लाभ
0: बतेली।
1: उठाथिन।
0: देखो अभी मनरेगा में एक और में काम चल रहे हैं, वन रोपण के काम,
1: जी जी
0: पौधा लगावे के काम। तो
1: अच्छा, गाछ
0: पौधा
1: वृक्ष पेड़
0: गाछ
1: पौधा
0: वृक्ष
1: लगावा।
0: लगावे के जो ये है,
1: जी
0: ये
1: जी
0: इतना बढ़िया मतलब कि प्रोग्राम है कि एकरा बारे में जितना भी बोला वो कम हो। तो
1: जी जी
0: पौधा लगावे में

0: रोपण के काम,
1: जी
0: पौधा लगावे के काम।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा गाछ
0: पौधा
1: वृक्ष पेड़
0: गाछ
1: पौधा
0: वृक्ष
1: लगावा।
0: लगावे के जो ये है,
1: जी
0: ये
1: जी
0: इतना बढ़िया मतलब कि प्रोग्राम है कि एकरा बारे में जितना भी बोला वो कम हो। तो
1: जी जी
0: पौधा लगावे में 200 मतलब पौधा यदि कोई परिवार लगाता है या अपना खेत में भी लगा सका है, सरकारी में लगावे या जहाँ भी लगेवा,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो पौधा जे लगेलन है ना
1: जी जी
0: उनके फिर दे देवल जा है। तो अब देख ला, एक तो मतलब कि उनका पौधा लगावे के खर्चा दिलके और ऊपर से वो पौधवो उनका मिल गेले,
1: हाँ ये तो
0: तो
1: बड़ी
0: ये
1: अच्छा
0: तो मतलब
1: योजना
0: कि
1: है।
0: आगे के मतलब कि फिर संपत्ति हो गया।
1: जी
0: और इसमें ये ना है कि जगह खेती बाड़ी है ओकरे खाली, जो गरीब गुरबा जरा खेती बाड़ी नहीं है तो सरकारी जमीन में जो पौधा लगले है वो पौधवा ओकरा दे देवल जेते, तब तो वो भी एगो पौधा के मालिक हो गेलन।
1: अच्छा हम एकरे में एक ठुआ बात जाने लगी चाहिए कि जे खास करके भूमिहीन हथिन
0: जी
1: जिनका घर द्वार भी नहीं है, घर द्वार लगी भी जमीन जायदाद नहीं है, तो वो लोग लगी सरकार के का व्यवस्था है कि उपाय
0: देखो,
1: किया जा रहा है।
0: हमारा सरकार के व्यवस्था एक में सुनला हो तो इंदिरा आवास योजना,
1: जी।
0: इंदिरा आवास योजना के मकसदे ये है कि कोई ऐसा परिवार न रहे जकरा कि एक रहे लागी पक्का मकान नहीं हो। तो
1: माने
0: सभी,
1: बिना घर के कोई नहीं रहे के चाहिए।
0: हाँ, बिना सब आदमी जो भी है ओकरा एगो रहे के मकान जरूर होवे।
1: जी।
0: तो इसमें ये है कि जिसका अपना जमीन है तो वो अपना जमीन पर सरकार मतलब के अनुदान के रूप में उसको पैसा देती है, वो पैसा से वो अपना मन लायक घर बनावे,
1: जी।
0: उसी घर में वो मतलब पखाना बनाने के लिए भी पैसा मिला है तो वो पखाना भी बनावे। आगे में चापा कर लो, अभी जो बनेलियो वनरोपण वाला, तो
1: जी
0: वो
1: जी
0: वनरोपण में पौधा के पटवे लगी चापाकल लगावे के भी व्यवस्था है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: चापाकल के पानी खाली पौधवे लगे लगे ना अतः, वो तो गाँव के लोग भी पीते तो
1: जी
0: गाँव
1: जी
0: के लोगों को भी ओका पानी मिलते तो ओका फायदा वो भी उठावेगा। तो इंदिरा आवास में पौधा लगाने का घर के आगे जमीन है तो ये है, जिसका जमीन एकदम में नहीं है तो सरकार उसके लिए व्यवस्था जमीन करके घर बना करके भी उसको देने के लिए दी है पहले भी, और सोच रही है कि
1: जी
0: हम
1: जी
0: सबों को घर उसको रहने के लिए दें।
1: अच्छा शौचालय के खातिर जो व्यवस्था कैल गया है
0: जी
1: तो कहीं कहीं ये भी देखल जा है कि शौचालय नहीं बनले है या नहीं बनावल गले है।
0: देखा, एक शौचालय में क्या है ना कि पहले के जो लोग हलन सब ना वो बाहर में जा करके अपना आदत बना ले लन शौच करे के,
1: जी।
0: तो आज भी वो अपना आदत हटावे के मूड में न हथन। तो अब लोग क्या करते हैं ना कि इसके लिए अभी तो सरकार का है कि कोई ऐसा घर ना हो जहां पर एक शौचालय नहीं हो,
1: जी
0: उसमें तो ये
1: जी
0: भी नहीं है, ईपीएल बीपीएल जो सुना हो तो
1: जी
0: वो भी
1: जी
0: नहीं है, सबके जो भी अब सरकार जो अपना पखाना बनाता है उसको अनुदान के रूप में सरकार पैसा देगी और वो उसका यूज करेंगे,
1: यानी सबके लिए पैखाना
0: एकदम जरूरी
1: के
0: है।
1: व्यवस्था।
0: हाँ, एकदम
1: जी
0: सब परिवार को माने एकदम। अब तो सरकार ये सोच रही है कि जो खुले में शौच करेंगे ना
1: जी
0: ओकरा
1: जी
0: दंड भी देंगे, ताकि जो आदतन जिनका मतलब कि खराब हो गया कि ना हम बाहर ही जहाँ पखनमो बने थून और ओकर बाद भी मतलब कि बाहर ही जहाँ थे, तो
1: जी
0: उसके लिए प्रचार प्रसार सब ये सब मतलब कि कर रहा है। विद्या बालन जी के नाम सुनबे कैलू हो,
1: जी
0: वो
1: जी
0: मतलब कि इस चीज में टीवी पर सिनेमा पर सब पर आकर के प्रचार कर रहा है।
1: अच्छा आंगनबाड़ी के जो व्यवस्था कैल गेले है ओकर संबंध में कुछ भी
0: हाँ देखो,
1: बताथिन।
0: आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी का मतलब कि ये है कि जो टोला या मैं कस्बा या छोटा छोटा गांव या जहाँ वहीं पर जो छोटे छोटे जो बुतरुअन है ना
1: जी।
0: ओकरा पाले लागी ओकरा पढ़ावे लागी कि शुरुए से उसको मतलब कि रहन सहन अच्छा से मिले, उसका खाने का लड़का वो अच्छा मतलब तंदुरुस्त रहे बीमार नहीं हो, ये सब के व्यवस्था कर ला सारे जगह आंगनबाड़ी के व्यवस्था कर गए है।
1: तब तो यानी कहे के मतलब है कि लगभग बहुत अच्छा व्यवस्था कैल जा रहा है
0: हाँ, खास करके हमारे
1: तो।
0: मगह क्षेत्र में तो एक बहुत बड़ा प्रभाव भी देखे के मिला है।
1: जी
0: पहले
1: जी
0: तो पढ़ावे के प्रवृत्ति भी ना हले, स्कूल में भी जाए लगी मतलब कि प्रयास करे पढ़ाले, अब है कि ना स्कूले पहुंच गए है पढ़े वाला के पास,
1: यानी शिक्षा दीक्षा से लेकर के विकास के हर काम चल रहा है।
0: एकदम बढ़िया।
1: राधाकांत कुमार जी अपने बहुत अच्छा अच्छा जानकारी देलथिन, एरा लगी हम अपने के धन्यवाद देही, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
1: अच्छा
0: अभी अपने सुनलखिन ई भेंट वार्ता
2: मगही के ग्रामीण क्षेत्र में विकास की स्थिति। भेंटवार्ता कार हलखिन डॉक्टर राधाकांत कुमार आ भेंट करता हलखिन डॉक्टर लक्ष्मी पासवान। हिनका देही धन्यवाद। अभी

अपनी सब जे खिस्सा कर रहलियन हल कि अलनीनो चलती भी गर्मी बढ़ा है, कम से कम 3-4 बरिस में एक बेर समुद्र में ई चीज होइए जा है। तो अब अलनीनो चलती तो जे गर्मी बढ़ रहा है ओकर तो हमनी ज्यादा कुछ नहीं कर सके हिए, लेकिन हमनी के जे देखथिन अगल बगल पहिने कते गाछी रहा हले तो केतनो मने पछुआ चले भाई, केतनो लू चले, जो गाछी में जाके लोग गमछो भी छाक सुत रहा हले तो नींद पड़ जा हले, लेकिन एखने वो स्थिति नहीं है। मुश्किल से 10 से 15 दिन पछुआ चल रहा हैं आ मौसम एकदम से बदलल जाहे, जखने ठंडा पड़े के चाही तो तखने उमस हो जैतन, जखने मेघ पड़े के चाही तो तखने सूख जा है, जखने गर्मी पड़े के चाही तो तखने मेघ पड़े लगा है। तो ऐसा जो मौसम में बदलाव हो रहा हैं एकरा में कार्बन के जे सोखा है पेड़ पौधा वो धीरे धीरे घटल जा रहा है, जितना तेजी से गाछ वृक्ष कटले उतना तेजी से लगले नहीं। तो गाछ वृक्ष जो होबा है ई मने एकदम जे कह हथिन प्राकृतिक ठंडक लावे के काम करे है। आ हमनी के गांव घर में पीपर आ बड़ के गाछ, पीपर आ बड़ के गाछ के कहल जा है कि सबसे ज्यादे कार्बन डाइऑक्साइड जे गैस होबा है हानिकारक गैस ओकरा सोखा है आ ऑक्सीजन के द है। पीपर बरगद खाली दिने के नहीं रात रातों को ऑक्सीजन छोड़ते रहे है। तो आप सोच सका हथिन कि हमनी के संस्कृति में पीपर बरगद आ एकरा नियर आरो बहुत गाछ है, लेकिन पीपर आ बरगद जो देखथिन ओकरा पूजल जा है, मने हमनी के संस्कार में है कि गाछ वृक्ष के हुनकर महत्तम के देख के पूजा करल जा है। आ कुछ समसामयिक बातचीत पर आर करबन, अभी पहने सुन लहिए ई झूमर कलाकार एक बार फिर से हथिन रामशरण प्रसाद औसाथी।

एह बड़े निमन निमन झूमर सुनलिए। राम शरण प्रसाद आओ साथी से तहिनका देही धन्यवाद। आ हमने कहलियन हन कि एगो आरो बड़ी निमन जानकारी देवन इहे पर्यावरण पर, जे गर्मी बढ़ रहले हैं आ तितर बितर मौसम हो जा रहले हैं, पर एक ठंडा तो पड़े लगा है गर्मी, पर एक मेघ तो पड़े लगा है ठंडा। तो अभी इहे लेल जे IIT बम्बई है, अखने अब ओकरा मुंबई कह है, तो हुआ एगो तकनीकी विकास करल गेलन है कि मने कि तो भारत के पहला समेकित कार्बन कैप्चर उपयोगिता आ भंडारण के लेल हुआ क्षेत्रीय प्रयोगशाला के शुरुआत होलन है। ई भारत में पहिल बेर होलन है। तो आप देखथिन कि कौन इलाका में कितना जे है से कार्बन डाइऑक्साइड के सोखल जा रहले हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन हो रहले हैं, मने निकल रहले हैं। तो उहे हिसाब से ओ जो ऑक्सीजन के लेके बैलेंस करल जेतै, संतुलन बनावल जेतै आ हमनी के पर्यावरण के संतुलित रखे के कोशिश करल जेतै। हमें फेर जल्दी अइबन, तो अब हमनी के समय ओरिया गेलन है, विदा देथिन, फेर मिलबन, प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे मगही कार्यक्रम मागधी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, आइए इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से बस थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे समग्र मात्स्यिकी विकास हेतु पटना में आयोजित कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन, संकलन, संपादन और प्रस्तुति है हरेंद्र आजाद की।

लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। साढ़े 10 बजे का समय होगा फिल्म संगीत का। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर।

प्रणाम। ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज कैमूर में कहलन कि राज्य सरकार आम लोगन के समस्या के समय पर समाधान खातिर प्रतिबद्ध बा। मुख्यमंत्री कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखंड के पहड़िया पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में ई बात कहलन। वो कहलन कि बीतल एक महीना में सहयोग शिविर के माध्यम से मिलल कुल 3,03,678 आवेदन में से 2,61,618 आवेदन के निपटारा कल जा चुकल बा, जवन कुल आवेदन के लगभग 90% बा। आगे कहलन कि यह कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य जनता से सीधा मिल के उनकर समस्या के समाधान कल बा। सहयोग शिविर के माध्यम से लोग के शिकायत के तुरंत निपटारा कल जा रहा बा। तय सीमा में कार्रवाई ना होखला पर संबंधित अधिकारी लोग पर कठोर कदम उठावल जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करके राज्य के सुख समृद्धि आ विकास खातिर कामना कैलन। ए अवसर पर लगभग 196 करोड़ रुपया के लागत से 60 गो विकास योजना के उद्घाटन आ शिलान्यास कैलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा सुशासन आ गरीब कल्याण के 12 साल पूरा होखला पर आज से प्रदेश के सभे प्रखंड में प्रखंड सहयोग जन कल्याण शिविर आयोजित कल जा रहल बा। 18 जून तक चले वाला यह शिविर में केंद्र आ राज्य सरकार के विभिन्न योजना से जुड़ल आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, ईकेवाईसी आ लाभ वितरण के सुविधा एक जगह उपलब्ध करावल जा रहल बा। शिविर में हेल्प डेस्क और स्वास्थ्य जांच शिविर के व्यवस्था भी कल गई बा, ताकि लोग के जरूरी मार्गदर्शन हो सके आ सेवा आसानी से मिल सके। पूर्व मध्य रेल 17 जून के होखे वाला मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा खातिर पाटलिपुत्र आ पटना जंक्शन समेत बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशन से 30 गो विशेष ट्रेन चलावे जा रहल बा। रेलवे के एडीजी डॉक्टर कमल किशोर सिंह बतौलन की परीक्षा में करीब 5.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकेलन। एह कारण से आज अकाल बिहार में अलग अलग रूट पर विशेष ट्रेन चलावल जाए। पाटलिपुत्र जंक्शन आ पटना जंक्शन से अररिया, नौगछिया, भभुआ रोड, गया, बक्सर, राजगीर आ झांझा समेत कई गो स्टेशन खातिर विशेष ट्रेन चलावल जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए बतौले बाकी आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा खातिर पिछला 24 घंटा में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी अपन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुकल बाड़े। पुनर्परीक्षा 21 जून के आयोजित हुई। पारदर्शिता बढ़ावे आ पेपर लीक के आशंका खत्म करे खातिर सरकार 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन मैसेज करे पर रोक लगा देले बा। एनटीए के अनुसार ई प्रतिबंध परीक्षा के दिन आ ओकरा बाद तक लागू रही। साथ ही टेलीग्राम के 30 जून तक पहले से पोस्ट मैसेज के एडिट करे के सुविधा बंद करे के निर्देश दिहल गइल बा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा आ तैयारी के समीक्षा खातिर उच्च स्तरीय बैठक कैलन। वो विद्यार्थी लोग के सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था आ परीक्षा प्रक्रिया के निष्पक्षता पर विशेष जोर दहलन। वो गृह सचिव सभे राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश आ केंद्रीय एजेंसी के सुरक्षा प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन करे के निर्देश दहलन। पश्चिमी चंपारण के बेतिया अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर कार्यरत क्लर्क राजकुमार मिश्रा के निगरानी विभाग के टीम 15,000 रूपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कैले बा। निगरानी डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद बतौलन की क्लर्क जमीन के जमाबंदी अनलॉक करे के खातिर शिकायतकर्ता से रिश्वत मंगले रहलन। शिकायत के सत्यापन के बाद ई कार्रवाई कैल गई। पूर्वी चंपारण जिला में टीबी उन्मूलन अभियान के गति देवे खातिर सभे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरन के कफ अगेंस्ट टीबी ऐप के उपयोग पर 2 दिन के प्रशिक्षण देहल गइल बा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह डिजिटल ऐप के मदद से ग्रामीण क्षेत्रन में संभावित टीबी मरीजन के जल्दी पहचान आ स्क्रीनिंग आसान हो जाए, जौना से समय पर इलाज सुनिश्चित कल जा सकेला। गोपालगंज अउरी गया में पुलिस 3 गो अपराधी के इनकाउंटर कैले बिया। गोपालगंज में शराब तस्कर आ पुलिस के बीच मुठभेड़ भइल, जेमे उत्तर प्रदेश के अपराधी किशन कुमार के गोर में गोली लागल बा। उहे गया जी में गहना के दुकान से लूट करे वाला अपराधी आ पुलिस के बीच मुठभेड़ भइल, जेमे 2 गो अपराधी सुजीत चौधरी और मलाह के गोर में गोली लागल बा।

0: एकरे साथे आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एही जा समाप्त भइल।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है समग्र मात्स्यिकी विकास हेतु पटना में आयोजित कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन, संकलन, संपादन और प्रस्तुति है हरिंद्र आजाद की।
2: प्रस्तुत है समग्र मात्स्यिकी विकास हेतु पटना में आयोजित कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। आज दिनांक 16 जून 2026 को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा मत्स्य विकास भवन मीठापुर परिसर पटना में समग्र मात्स्यिकी विकास हेतु कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री नंद किशोर राम, माननीय मंत्री डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। तदुपरांत श्री तुषार सिंगला, निदेशक मत्स्य निदेशालय बिहार पटना, ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा,
3: आज के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री डेयरी फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार नंदकिशोर राम जी, हमारे माननीय सचिव डिपार्टमेंट शिशर कपिल अशोक सर, एनएफडीबी चीफ एग्जीक्यूटिव विजय कुमार बेहरा जी, उनकी पूरी टीम, इसके अलावा एनसीडीसी और बाकी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, नाबार्ड और बाकी डिपार्टमेंट्स के जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, हमारे सारे फिशरीज डिपार्टमेंट के एफओ, एफडीओस और डीएफओस, जितने भी फिशरीज परिवार से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे उपस्थित, इसके अलावा बिहार के कोने कोने से आए हमारे मत्स्य भाई बहन और हमारे फिशरीज स्टार्टअप के जो लोग हैं यहाँ पे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो कॉन्क्लेव का उद्देश्य है, यह हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं फिशरीज के, चाहे वो किसान हैं, चाहे स्टार्टअप हैं, चाहे वो हमारे पैनल्ड वेंडर्स हैं, चाहे हमारे रिसर्च और ट्रेनिंग से लोग जुड़े हैं, या हमारे फिशरीज के ऑफिसर हैं, इन सबके बीच परिचर्चा के लिए हमारी फिशरीज के जितनी उन्नत तकनीकें हैं, चाहे वो आरएएस है, बायोफ्लोक, सारी चीजों पर डिस्कशन करने के लिए और आने वाले दिनों में बिहार से फिशरीज के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, निर्यात को स्टार्ट करने के लिए, इस पर आज का हमारा परिचर्चा होगा।
2: बिहार के विकास में मत्स्य पालन को रेखांकित करते हुए श्री शीर्षत कपिल अशोक, सचिव डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग बिहार, ने कहा,
4: प्यारे मत्स्य पालक किसान भाइयों, देखिए ये जो कॉन्क्लेव यहाँ पे किया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य जो है आप सभी लोगों को कि इस कार्यालय की क्या भूमिका रहेगी, इसको अवगत कराना। अब ये ट्रेडिशनल मत्स्य पालन जो है, हम क्या करते थे कि हैंड टू माउथ, मतलब हम मछली का शिकार वहीं कर लिए और हम उसका प्राशन कर लिए, उसका ग्रहण कर लिए, ये नहीं होके इसको एक बिजनेस की तरह हमको डेवलप करना है। और आपने देखा होगा कि हम लोग जो है, हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ बहुत जा रहे हैं। इसका कारण है कि अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो हम लोगों को जो है अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना होगा, और इकोनॉमी को जो अगर मजबूत बनाना है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट, मतलब जो एक्सपोर्ट कितना करते हैं और इम्पोर्ट कितना करते हैं, अभी भी बहुत गैप है, ठीक है। तो ये गैप को मिटाने के लिए जो है हम लोगों को प्रयास करना है। और मछली का सेक्टर जो है, ये एक नया ऐसा सेक्टर आया है लाइव स्टॉक सेगमेंट में, कि इसमें जो है सबसे ज्यादा हम जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आय बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही एक्सपोर्ट होगा ये आय जो है ये आपके लिए जो है उपलब्ध हो जाएगी। तो इसके लिए जितने भी योजनाएं हैं, इसमें आप प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाह रहे हैं, फिश फीड मिल लगाना चाह रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक आरएएस या बायोफ्लॉक इत्यादि का जो उपयोग करना चाह रहे हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज या बेटर जीनोमिक्स वैल्यू के तहत जो भी मछलियाँ है प्रोडक्टिविटी में एनहांस कर सकती है, जिसकी एक्सपोर्टेबिलिटी अच्छी है, इसके बारे में जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे ये आपको बताए जाएंगे। देखो ये ज्ञान देने की संस्था नहीं है, ये जो है इम्प्लीमेंट करने वाली संस्था है। ये बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज होती है, हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सीफा हो गया, सीफे हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, और ये फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का ये मतलब है कि आपको जो रिसर्च हुआ है उस रिसर्च का उपयोग करके जो है जो भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे और उसके माध्यम से जो है वैल्यू एडिशन मछली पालन के सेक्टर में हमको जो करना है वो हम यहाँ पे करेंगे।
2: कार्यक्रम में पधारे डॉक्टर विजय कुमार बेहरा,

0: मुख्य कार्यकारी राष्ट्रीय मात्स्यिकी की विकास बोर्ड हैदराबाद ने कहा।
1: मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा एनएफडीबी ऑफिस यहाँ ठीक से चले और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो बिहार गवर्नमेंट का है उनके साथ अच्छा तालमेल रख के काम करे कि बिहार का फिशरी फार्मर का कैसे उन्नत, कृषक का कैसे उन्नति हो और बिहार में फिश प्रोडक्शन में कैसे देश में नंबर वन स्टेट हो, बिहार को एक नंबर फिशरी प्रोडक्शन स्टेट बनाना है। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम लोग मंत्री जी से सुनेंगे, डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। कल मंत्री जी बोल रहे थे कि 95% जितने बिहार में मछली की जरूरत है हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, 95% मछली हम बिहार में प्रोड्यूस करते हैं, 5% मछली हम बाहर से लाते हैं खाने के लिए। लेकिन हमारा आज जो मीटिंग हो रहा है, जो वर्कशॉप हो रहा है, आप लोगों से हमको सुनना है कि हम फिश जितने डोमेस्टिक कंजप्शन होता है उसको तो हम करेंगे, लेकिन हम बिहार से आंध्रा जैसा कैसे फॉरेन को एक्सपोर्ट करेंगे, इसमें क्या होगा, हमको फॉरेन करेंसी आएगा तो पैसा आएगा तो हमारा लाइवलीहुड बढ़ेगी, हमारे पास बिहार की समृद्धि होगी। इसी के लिए हम आज एक वर्कशॉप रखे हैं।
0: तदुपरांत मत्स्य की विकास के बारे में श्री नंद किशोर राम माननीय मंत्री ने अपने उद्बोधन में विस्तार से जानकारी दी।
2: आज का यह दिन बिहार के मत्स्य पालन के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह जुड़ने जा रहा है। समग्र मत्स्यिकी विकास हेतु कॉन्क्लेव से राज्य के मत्स्य पालकों, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोगी होगा। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है कि बहुउद्देशीय योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से कुल 31.2092 करोड़ राशि की लागत पर स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के मात्स्यिकी एवं जल कृषि की संपूर्ण वैल्यू चेन और आधारभूत संरचनाओं को आधुनिक बनाना है। इसके सफल कार्यान्वयन से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि होगी, साथ ही मत्स्य प्रसंस्करण व्यापार, वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीकी के प्रशिक्षण और मनोरंजन जैसी गतिविधियों को एकीकृत रूप से विकसित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अभूतपूर्व अवसर सृजित होंगे।
0: आगे उन्होंने गांवों की समृद्धि और बेरोजगारी उन्मूलन को लेकर विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं आगामी योजनाओं के बारे में बात की।
2: भारत गांवों का देश है और भारत की आत्मा गांव में बसती है। हमारा यह विभाग गांव में पहुंचेगा और गांव में पहुंचेगा मैं आग्रह करना चाहता आपसे कि हमारा विभाग बिहार के पलायन को रोकने में कामयाब होगा, ऐसा भरोसा है मुझको, ऐसा विश्वास है कि बेरोजगारी कम होगी, हमारे पास अपार संभावनाएं हैं।
3: अपनों की कसम, सपनों की कसम, निश्चित ही जमाना बदलेगा, सहयोग करें, विश्वास रखें, इतिहास पुराना बदलेगा।
0: इस कॉन्क्लेव में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से कृषक, मत्स्य पालक और संबंधित जन तथा भारी संख्या में विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इसी के साथ समग्र मात्स्यिकी विकास हेतु आयोजित कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न हुई। वाचन, संकलन, संपादन एवं प्रस्तुति हरेंद्र आजाद की।
4: अभी आप सुन रहे थे समग्र मात्स्यिकी विकास हेतु पटना में आयोजित कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1।

0: नमस्कार आनंद भाई, कहें
1: नमस्कार अर्चना बहन।
0: कैसन वाणी?
1: हाल समाचार तो सब ठीके है, मैंने कहे के बात नहीं है, सब ठीके है। जैसन भी है सब ठीके है। चोट लग गई तब भी सही, नहीं लगल तब भी सही, बुखार है तब भी सही, नहीं है तब भी सही, कहना ही है कि सब कुछ ठीक है।
0: और देखिए अभी तो गर्मी बात है, सुनो लोग तनी संभर के रह रहा बात, गर्मी से भी अब बाहर निकल।
1: गर्मी के बात तो देखो मौसम के बात होते रहते हैं। हम तो कर लिए है कि हाल चाल पूछ ला तो चले घड़ी आदमी के सबसे ज्यादा ठोकर लगा है, ठेस लगा है और घायल हो जाए,
0: देखिए
1: तो
0: ऐसे
1: चले घड़ी
0: ना,
1: सावधानी जरूर बरते के चाहिए
0: हाँ
1: दिन
0: ध्यान
1: पर
0: तो
1: दिन।
0: हर समय रखे के बा, चाहे घर में
1: हाँ
0: बानी चाहे बाहर वानी।
1: बिल्कुल। अच्छा घर के बात तो ठीक है कि घर में भी सावधानी रखना चाहिए, लेकिन जब चले के बात आवे तब बात होवे राह रास्ता के। राह रास्ता में भी आजकल देखा कि सड़क के जो निर्माण है इतना उच्चतर गुणवत्ता वाला हो रहे है कि गाड़ी घोड़ा पर रेस नियर भाग रहे, एकदम रेस लगा रहे हैं। पहले तो भाई गांव के सड़क हली हमने के तो उतना तक समझे हली, ओकर
0: ऊपर
1: बाद
0: खबर रहे तो बता, तेज से चल ना सके ना कोई।
1: न ओकर बाद स्टेट हाईवे के बात आबल, फिर नेशनल हाईवे, अब एक्सप्रेसवे के बात हो रही है, माने बात कुछ हो रही है उपयोग में आ रही है, जहाँ की न्यूनतम स्पीड लिमिट है, माने एकरा से कम स्पीड में चल नहीं सके एक्सप्रेसवे, तेज चलना है।
0: एकदम
1: हमने तो कहे भाई तेज चलबा तो गड़बड़ा जाए तो दुर्घटना हो सका है।
0: देखा
1: सबसे
0: ऐसा।
1: अहम बात कौन चाहिए अर्चना बहन, एगो बात कह दियो कि सड़क सुरक्षा के नियम के यदि पालन करल जाए तो हर जगह सुरक्षित रह सके आदमी।
0: एकदम सही। अब देखिए आनंद भाई, इस सड़क पर जो चले के नियम सरकार बनौले बा, तो ये हमनिये खातिर न बा, हमनिये के फायदा खातिर बा। अब अगर जैसे कि बुझी कि हेलमेट पहिरे के सरकार कह रहल बा, और लोग हाथ में टांग के हैंडल में लटका के घूमत रहे, तो ये बताई कि वो हैंडल में जो लटका के घूमत रहे तो वो हैंडल खातिर तो नहीं खे हेलमेट, और ये रवा के बचा रहल बा, तो फिर काहे ना खाली पुलिस के देख करके लोग झट से पहिर ले रहे कि फाइन ना देवे पड़ी, लेकिन ये फाइन से बचे के तो नहीं खे।
1: आ उनका जे नहीं जाना है शेर से ना बहन, यमराज खड़ा रहे जो हेलमेट
0: हाँ
1: हाथ में लेके घूमा
0: एकदम
1: की,
0: बुझे।
1: वो तो जना है नहीं, ले ले चल जाए, उनका पुलिस ले जात कि नहीं ले ले
0: हाँ
1: चल।
0: तो ये तो कोनो मतलब बुझे कि ये कोनो बात नहीं खे ना कि मतलब हम फाइन देवे के डर से चाहे पुलिस के डर, अरे ये अपना खातिर बा,
1: अपन
0: अपना
1: सुरक्षा लगी।
0: अपना सुरक्षा खातिर बा, तो ये के करी एक खातिर। तो सड़क पर जो चले वाला नियम बा वो तो मान ही के चाहिए। और देखिए कि रोड पर ऐसू रहुआ तो तेज रफ्तार के बात कही नहीं, एगो और चीज देख ले वानी आनंद भाई कि लोग लहरिया चलावे ले मोटरसाइकिल, अब वो बुझे कि वो अपनो जान के खतरा कैले बारे या दूसरों के जान के खतरा कैले बारे।
1: अब देखा अर्चना बहन, दू चक्का होवे कि तीन चक्का होवे कि चार चक्का, आजकल तो 6 चक्का वाला तेज चलवा है और रोज दुर्घटना के निमंत्रण दे, अपनों घायल होवे दूसरों के घायल करे है। सीट बेल्ट के बात यदि करल जाए चार चक्का में चलाए वाला के बहुत जरूरी है पहनना, लेकिन सीट बेल्ट पहने के बारी आवत तक कहथिन कि भाई ये तो लगा हमारा बांध देलक, आ हमारा लगा कि जब तक हम सीट बेल्ट नहीं पहने तब तक लगे गाड़ी चलावे में मने नहीं लगे, लगे खुल
0: वो बात बा, आ देखी कि वो बात तो डोरा सुरक्षा खातिर बा।
1: सुरक्षा लगी है, जब तक सीट बेल्ट नहीं पहना तब तक तो एयरबैग भी नहीं खुल रहा है जी, सुरक्षा लगी अहम है, बहुत जरूरी है।
0: आ दूसर चीज की देखी ला कि मोबाइल पर लोग बतिया होता चलल जा रहल बा, चाहे पैदल चले वाला हो बस चाहे वाहन चलावे वाला, अरे इतने जरूरी बात है तनी गाड़ी के किनारे करके बतिया ली निमन से तब अपन जाए।
1: कितना
0: अब
1: आदमी के
0: मोबाइल
1: शौक
0: के देखी जे बतियावत रहेला तो बुझे कि ओकरा सुनाई तो तनी ढंग से नहीं है देवेला, और
1: वो
0: पीछे
1: समझा,
0: गाड़ी पों पों
1: हाँ
0: कर
1: समझा
0: रहल
1: कि वो
0: बा।
1: बहरे हो गए रन है।
0: हाँ
1: कितना बार तो ये देखे ही ना कि शौक कोची होबा है कि बात नहीं कर रहे रन है तो गाना लगा के
0: हाँ
1: कान में
0: गाना
1: ठूसले
0: सुन
1: हथिन,
0: रहा है वो ठेठी
1: कंठेठी
0: लगा करके देख।
1: ठेपे ने कंठेठी लगा कर रखे अब बती ले जा रहा है, लगा है कि भाई उनका लगी यमराज नहीं है रोड पे।
0: और वही तरह बा कि नशा चला के भी गाड़ी मत चलाई, नशा तो देखिए कि ऐसी ही नुकसान करेला, और ओ में अगर गाड़ी चला रहा बानी तो ऐसी ही बेहोश बानी रहा,
1: चला
0: उसमें तो
1: बिहार में तो
0: नहीं।
1: अगर संभावना कमे है,
0: हाँ वो बात तो सही
1: लेकिन
0: बा,
1: मोबाइल के
0: लेकिन
1: नशा धैले है सबके, मोबाइल
0: हाँ
1: कान में लगा करके घुसा के अब
0: और
1: बतियावा चाहे गाना सुनते चल जाए।
0: हाँ और देखिए कि

0: ट्रैफिक सिग्नल के भी जरूर देखे के चाही, लाल पीला हरा अगर बत्ती बा तो का कह रहल बा वही हिसाब से गाड़ी के आगे बढ़ाई चाहे चली।
1: देखा लाल सिग्नल हो गलो तो रुक जा, हरा हो गलो तो चल, आ पीला हो गलो तो रुक रुक आ देख कि कौन चीज करे लगी। यदि ट्रैफिक सिग्नल कहे है कि चल तो चल, रुक तो रुक, आ यदि कुछ नहीं कहे वाला है खाली लगातार पीला जल रहा है तो चरो बगली देख के आ तब आगे बढ़े। सावधान रहे वाला पीला सिग्नल है, जेब्रा क्रॉसिंग पर ही पार करे के चाहिए पैदल चले वाला के।
0: नहीं
1: कि कहीं से भी पार करूँ। अच्छा एक गाड़ी चले वाला के
0: भाई रोड पर अक्सर हम देखी ला, हमारा देख के बहुत खराब लगे ला कि जेब्रा क्रॉसिंग तो कोई जानबे ना करेला कि जानबूझ के उसे करेला, ये तो हमारा ना बुझाला। बाकी गाड़ी जब चले लागी नू तब धड़फड़ धड़फड़ ई रोड से ऊ रोड लोग पार करेला, एक पार से ओ पार रोड में जाई। अब बताई गाड़ी जब चले के शुरू कर तो ओघड़ी गाड़ी के तो देख करके आदमी के रुक जाए के चाहिए। जब गाड़ी रुको तब रुआ पार करी, जब क्रॉसिंग से करी, चाहे ऐसू हूँ ओजा अगर गाड़ी रुकल बा तबे रुआ पार करी। देख अगर उन्हें अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं खे तो दाया बाया देख करके निमन से पार करी। हॉस्पिटल दने जा रहल बा लोग, स्कूल दने जा रहल बा, आ मार हॉर्न बज के जा रहल बा। अब बुझी कि जे वो में अस्पताल में जे मरीज बाड़े उनका कितना दिक्कत हुई, बुझी कि इतना तेज तेज हॉर्न जे बाजेला तब केकरो कौन तकलीफ बा नहीं खे बा, तो इस सब के तो तनी ध्यान रखे के चाहिए। जब सड़क पर आदमी चल रहल बा तो जितना भी बा आदमी के कोशिश करे के चाहिए कि हर नियम आदमी निमन से पालन करो।
1: देखो आज ये बात तनी ये गुनी भी ज्यादा प्रासंगिक है कि सभी देवी देवता राजगीर से निकल के आ गल की हैं। जब तक मलमास मेला हले तो 33 कोटि देवता राजगीर में निवास कर रहे की हैं, तब तक तो ठीक है, तू मनमानी कर लेला। अब भाई सब देवी देवता घूम रहे हैं सौंसे भारत में, तो सावधानी होके रह।
0: और अब जब इतना देख रहा बानी तो पैदल चले वाला बूढ़ बारे रोड पर लेखनो चले ले, तो इहो दोनों के तनी ध्यान रखे के चाहिए। बूढ़ बाड़े तो तनी रोक देवा गाड़ी, तनी धीरे कर देवा तो का दिक्कत हो जाए। आ लेखन बाड़े तो लेखन तो देखी कि उनका तो बुझाला ना, वो तो सगरो उनका खेले के मैदान बुझाला, तो तनी हाथ उनका धर के रखी ताकि इन्ने उन्ने भागस ना, दौड़स धूपस ना, आराम से उनका के लेकर के सड़क पर फुटपाथ पर चली, पैदल चले वाला खास करके। इस तरह से इस सब जे भी कुल नियम बा ई कुल हमनिये खातिर बा, और ई नियम के अगर पालन करब जा तो एकर फायदा भी हमनिये के बा। ऐसा नहीं खे कि नियम पालन करके दूसरा के फायदा होके वाला बा। तो एक तरह से सड़क पर सुरक्षा के जो नियम बा एकर पालन करी और अपना आपके सुरक्षित करी, तब का विचार बा आगे। गीत सुनल जाई
1: सुनवा बा,
0: चले तब सुनवा रहल बानी हरिवंश पासवान जी से ई गीत।

0: वाह वाह वाह, ये हलखी हरिवंश पासवान लोक भजन सुना रहलखिन। आगे समय भी मिलत इनका से सुनने के अवगित, लेकिन अभी बात करल जाए कुछ घूमे फिरे के टहले के। राजगीर के बात करिए थोड़ी देर पहले, जहाँ मलमास मेला कल्हे खत्म होले है, आज राजगीर के बारे में विशेष रूप से जानल जाए कि राजगीर पर्यटन स्थल है तो कितना महत्व के है और कौन कौन चीज एक विशेषता है। एक तो वार्ता के माध्यम से
1: जानकारी,
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक वार्ता के माध्यम से जानल जाए। वार्ता के विषय है राजगीर एक पर्यटन स्थल। वार्ता सुना रही है श्री श्याम सिंह यादव।
1: चलिए सुनिए।
2: राजगीर भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में से एक है, जो बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पंच पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि आज एक सुंदर वैश्विक पर्यटन स्थल बन गया है। ये भारत का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ हर उम्र लोगों के सैर सपाटे का खास प्रबंध किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ इतिहास के शोधकर्ताओं के लिए अलग अलग विषयों के शोध और अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र उपलब्ध हैं। यहाँ एक और छोटी स्कूली बच्चों के घूमने के लिए पार्क, जू, सफारी है, नौकायन, वाटर पार्क की व्यवस्था है। वहीं युवाओं के लिए झूलता पुल, ग्लास ब्रिज, निशानेबाजी तथा तीरंदाजी की व्यापक सुविधाएं मौजूद हैं। प्राचीन इतिहास और अनुसंधान से जुड़े लोगों के लिए प्राचीन नगर के भग्नावशेष के साथ 44 किलोमीटर लंबी साइक्लोपीडियन दीवार के अवशेष मौजूद हैं। राजगीर के वित्तापासन दीवार चीन के प्रसिद्ध दीवार से भी प्राचीन है और इसका निर्माण काल ईसा से पूर्व 9वीं शताब्दी में माना जाता है। इसके अलावा प्रकृति गुफाएं तथा सोन भंडार जैसे कृत्रिम गुफाओं भी मौजूद हैं, जो पत्थर तराशने की प्राचीन शिल्पकला का उदाहरण है। अगर भूगोल और वनस्पति विज्ञान की बात करें तो राजगीर की पहाड़ियाँ पृथ्वी की सबसे प्राचीन निर्माण है। यहाँ प्राप्त वनस्पतियों का अपना अलग संसार है, मगर साम्राज्य का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक के द्वारा यहाँ औषधीय पौधों का विशाल क्षेत्र बना गया था, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों का संसार है। बेनू वन जीवक का आम्र वन आज भी देखा जाता है।

यहाँ के ऐतिहासिक गर्म जल के झरने और नैसर्गिक वातावरण बड़े बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य कारक एवं स्वर्गीय आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजगीर सर्व धर्म समभाव का क्षेत्र रहा है। यहाँ बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों के तमाम संत और गुरुओं का प्राचीन काल से लगाव रहा है। उन तमाम धार्मिक संतों से जुड़े दर्शनीय स्थल आज भी लोगों के आकर्षण केंद्र बने हुए हैं। राजगीर मगध साम्राज्य के शासक बिम्बिसार की राजधानी हुआ करती थी। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। बसुमतीपुर, बृहदपुर, गिरवजपुर और कुशागपुर के नाम से प्रसिद्ध रहे राजगीर नगर को आज कल राजगीर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक साहित्य के अनुसार राजगीर ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रथम देशना स्थली रहा है। इसके साथ ही राजगीर भगवान बुद्ध की कर्म भूमि रही है। राजगीर प्रसिद्ध मुस्लिम सूफी संत एवं तपस्वी मखदूम अहिया मनेरी की तपोभूमि के रूप में भी चर्चित रहा है। यहाँ का मखदूम कुंड क्षेत्र उसका उदाहरण है। राजगीर का वर्णन ऐतिहासिक बौद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि संस्कृत साहित्य में देखा जाता है। जैन ग्रंथ विविध तीर्थकल्प के अनुसार राजगीर जरासंध, सैनिक बिम्बिसार, अजातशत्रु जैसे प्रसिद्ध शासकों का निवास स्थान था। महाभारत की कथा के अनुसार जरासंध और भीम के बीच मल्लयुद्ध यहाँ हुआ था। यहाँ मौजूद जरासंध का खड़ा पर्यटन के आकर्षण का केंद्र है। बुद्ध ने अपने जीवन के 5 महत्वपूर्ण वर्षावास राजगीर में व्यतीत किए थे तथा कई महत्वपूर्ण सूत्रों का उपदेश यहाँ दिए थे। प्रथम बौद्ध संगीत इसी राजगीर के वैभवगिरी पर्वत पर स्थित सप्तरणी गुहा में हुआ था, जो देश विदेश पर्यटकों का विशेष दर्शनीय स्थल है। आज राजगीर बिहार के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल हो चुका है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को विश्व का दूसरा और देश का पहला स्काई ग्लास ब्रिज, से लाइस नेचर सफारी व उत्तर भारत के पहला वन्य जीव चिड़ियाघर पार्क के अलावा घोड़ा कटोरा का पहाड़ी झील, वैभवगिरी पर्वत पर शांति स्तूप, पांडु पोखर, बेनुबन एवं 8 सीटों वाले केबिन झूला मार्ग का सफर रोमांचित करता है। इसके अलावा यहाँ जैन तीर्थस्थल विरायतन, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन पर्यटकों के विशेष आकर्षण के केंद्र हैं। यहाँ सप्ताहों घूमने फिरने और पर्यटकों का आनंद ले जा सकता है। राजगीर में विश्व का दूसरा व देश का पहला स्काई ग्लास वॉक ब्रिज से लाइस नेचर सफारी का भ्रमण करना आज हर पर्यटक की पहली पसंद है। इसका उद्घाटन 26 मार्च 2021 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। यह राजगीर की 5 पहाड़ियों के सेनागिरी तथा वैभवगिरी पर्वत की गोद में लगभग 500 हेक्टेयर फैला है। यहाँ के रोमांचक यात्रा में सस्पेंशन ब्रिज, रोप स्काई ब्रिज लाइन, जिप लाइन, साइकिलिंग, रॉक क्लाइंबिंग करना अपने आप में रोमांच से भरपूर है। राजगीर के इस प्राकृतिक शिविर क्षेत्र में पेड़ों के झोपड़ी, बांस की झोपड़ी, मिट्टी के घर, लकड़ी के घर, बगीचा, प्राकृतिक झरना, ओपन थिएटर एरिया, सरोवर, तीरंदाजी तथा राइफल निशानेबाजी, कैफेटेरिया, घास के मैदान के साथ बच्चों का मनोरंजन पार्क भी है। राजगीर के नेचर सफारी में घूमना जंगल के में मंगल के साथ एक अनोखा प्राकृतिक सैर है। नेचर सफारी 100% पर्यावरण हितैषी क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फिलहाल रोजाना भारी संख्या पर्यटकों का यहाँ आना होता है, जिनके लिए 5 सफारी गाड़ियों के व्यवस्था है। सोन भंडार से जंगल के भीतर आवागमन की दूरी तय करने के लिए लगभग 40 मिनट का समय लगता है। राजगीर का विशेष आकर्षण का केंद्र हाल में बना शीशे का पुल है, जिसे ग्लास ब्रिज के नाम से पुकारा जाता है। साहस और कल्पनाओं के प्रति आकर्षण का ध्यान में रखकर इस स्काई ग्लास बाग ब्रिज का निर्माण किया गया है। यह 85 फीट लंबा तथा 5 फीट चौड़ा है। इसके फर्श पर इंस्टॉलेशन केवल पारदर्शी शीशे का किया गया है। शीशा डबल लेयर बुलेट प्रूफ है। 25 से 30 लोग खड़े होकर अपने सामने दोनों पर्वतीय वादियों को, गहरी घाटियों को देख सकते हैं। यहाँ किसी जलवायु कालीन पर खड़े होकर गहरी खाई के ऊपर से उड़ान भरने जैसा एहसास करता है। नीचे लगभग 225 फीट गहरी खाई का नजारा अपनी खुली आंखों से देखना रोमांचपूर्ण लगता है। इस पर कमजोर दिल वाले तथा 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 4 फीट से नीचे कद वाले पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है। राज्य का दूसरा आकर्षण सस्पेंशन ब्रिज अर्थात रोमांचक पुल है। नेचर सफारी अर्थात प्राकृतिक आखेट में स्काई ग्लास ब्रिज के पास रोमांचक झूलता हुआ पुल है, जिसका नाम सस्पेंशन ब्रिज है। इसे वैभवगिरी पर्वत श्रृंखला के एक दूसरे छोर से तक जोड़ता है। यह 330 फीट लंबा और 4.5 फीट चौड़ा है। लकड़ी और केबल से बने इस ब्रिज के दोनों लोहे के जाली घेरा हुआ है। यह पुल हिलता डुलता और काम

ता है जब इस पर लोग चहलकदमी करते हैं तो यह और भी तेजी से दाएं बाएं की ओर हिलता है। लोग पुल के साथ साथ हिलने लगते हैं। राजगीर का जिप लाइन यानी रस्सी झूला युवाओं के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इसके सहारे झूलना जो पशु जैसा उड़ने का एहसास कराता है। नजर सफारी में बर्फगिरी पर्वत श्रृंखला के बीच जिप लाइन का 500 मीटर दूरी अगली पहाड़ी की छोर तक है। हवा में 20 फीट की ऊंचाई पर जिप लाइन साइकिलिंग नेचर सफारी के कैप एरिया परिसर में जीप

0: तक है हवा में 20 फीट की ऊंचाई पर जिप लाइन साइकिलिंग नेचर सफारी की कैप एरिया परिसर में जिप लाइन साइकिलिंग का रोमांच भी पर्यटकों को लुभाता है। नेचर सफारी में तीरंदाजी तथा राइफल शूटिंग रेंज बनाया गया है। तीरंदाजी में लगभग 10 मीटर दूर लक्ष्य को टारगेट करते हैं, वहीं दूसरी ओर राइफल शूटिंग रेंज में लगभग 15 मीटर टारगेट भेजते हैं। नेचर सफारी में घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए फार्म हाउस के में समय बिताने का लोगों के ठहरने के लिए बांस का कॉटेज मिट्टी के घर तथा लकी कॉटेज बनाए गए हैं। यहाँ के जंगली वातावरण में लोग अपने फुर्सत के पल बिता सकते हैं। कैंप एरिया में भी पेड़ पर झोपड़ी बना है। यहाँ विशाल पेड़ों का बना झोपड़ी नुमा घर जहाँ रात बिताना एक रोमांचक अनुभव है। इसके अलावा खपराइल मिट्टी की झोपड़ी बांस और फूस की झोपड़ी लकड़ी के घर आदि बना कर नेचर सफारी कैंप एरिया को सजाया गया है। यहाँ 3 सितारा होटल की तरह व्यवस्था है। सोनागिरी पर्वत की तलहटी में वन्य जीव चिड़ियाघर सफारी 191 हेक्टेयर में 176 करोड़ की लागत से बिहार के इकलौते वाइल्ड लाइफ जू सफारी का निर्माण कराया गया है। यहाँ अलग अलग शेर सफारी, बाघ सफारी, तेंदुआ सफारी तथा भालू सफारी बनाया गया है। यहाँ पर एक अलग से 46 हेक्टेयर में क्रमशः हिरण, चित, पसंभर के लिए सुरक्षित सफारी बनाया गया है। इसके अलावा 11 हेक्टेयर भूभाग में विश्व विभिन्न प्रजातियों की चिड़ियों के लिए जलीय पक्षी विहार तैयार किया गया है। यह क्षेत्र अखोट प्रतिबंधित है। राजगीर के अन्य आकर्षण में घोड़ा कटोरा झील भी शामिल है। राजगीर घोड़ा कटोरा झील की खासियत यह है कि यहाँ के पानी मीठा है, साथ ही प्रदूषण से मुक्त है। नौका विहार के शौकीन लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ स्वच्छता का काफी ख्याल रखा जाता है। घोड़ा कटोरा पहाड़ी झील इकाई के डली फ्रेंडली पर्यटन क्षेत्र है। झील के बीच 70 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तक मुद्रा वाली एक विशाल काय प्रतिमा स्थापित की गई है। पर्यटकों को बोध गया के बाद अब घोड़ा कटोरा झील में स्थापित विशाल काय बुद्ध की प्रतिमा लुभाती है। राज्य के सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र विश्व शांति स्तूप है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भगवान बुद्ध के प्रिय निवास स्थल राजगीर विश्व शांति स्थापना के लिए युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए का संदेश देने के लिए राजगीर के रत्नागिरी पहाड़ी पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया था। राजगीर बुद्ध ने सर्वधर्म पुंडलिक सूत्र का उपदेश दिया था। विश्व शांति स्तूप से गिद्धकूट पर्वत का शिखर सीधे दिखता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी जापानी धर्म गुरु निशिदोत्सु फुजी गुरु जी ने 160 फीट ऊंचे इस स्तूप का निर्माण 1969 ईस्वी में कराया था, जिसे 25 अक्टूबर 1969 ईस्वी को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर बीबी गिरी ने उद्घाटन किया था। जमीन से 1350 फीट ऊंची रत्नागिरी पर निर्मित 160 फीट ऊंची शांति स्तूप तक पहुंचने के लिए जापान सरकार द्वारा देश में सबसे राज्य मार्ग अर्थात केबल रोप के निर्माण कराया गया था। अब इस रेप के साथ 8 सीटों वाला केबल कार भी चल रहा है। राजगीर न तो केवल एक आधुनिक पर्यटक स्थल है बल्कि विभिन्न धर्म जुड़े धार्मिक स्थलों का केंद्र भी है। यहाँ की पहाड़ियों पर बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, इस्लाम धर्म से जुड़े कई स्थल हैं जहाँ तीर्थयात्रियों का आना जाना होता है। सुदूर पहाड़ों पर उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना एक अलग तरह के आस्था और रोमांच का विषय है। यह कष्टकारक होते हुए भी स्फूर्तिदायक अनुभव देता है। बड़े बुजुर्गों, लोगों जो पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते हैं, ऐसे अक्षम तीर्थयात्रियों के लिए सुगम साधन उपलब्ध है, उनके लिए यहाँ पालकी व्यवस्था है। इस पर सवार होकर राजगीर की 5 पहाड़ियों का दर्शन किया जा सकता है। इन पहाड़ों में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के अनेक मठ मंदिर तथा स्तूप हैं। पर्यटकों के लिए यह यात्रा बेहद ही खास होता है। राजगीर के पर्यटन श्रृंखला में पालकी एक विशेष महत्व रखता है। राजगीर के बाहरी क्षेत्र में पांडु पोखर और बेरतन की सैर आनंददायक आनंद दिया जा सकता है। यहाँ सभी उम्र के लोगों के मनोरंजन के लिए उपयुक्त 22 एकड़ फैले पांडु पोखर में प्रवेश करते ही सहसा आपको चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की याद आ जाएगी। अगर आपको थकान लगे तो संगीत की मीठी आवाज एवं पानी के फव्वारों के बीच बैठकर आराम कर सकते हैं। तलाक बीच पांडु महाराज की 7 फीट की खड़ी मूर्ति पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। यहाँ से थोड़ी दूर पश्चिम बढ़ेंगे तो बिरातन का शांत और स्फूर्तिवान वातावरण का केंद्र मिलेगा। यहाँ जैन धर्म और उनसे जुड़े अनेक दर्शनीय सामग्री और दृश्यों का अवलोकन कर अभूतपूर्व आनंद ला सकते हैं, पा सकते हैं। इससे और आगे जाने पर नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का परिसर है, जहाँ प्राचीन नालंदा महाविहार का तर्ज पर पूर्ण रूप पर्यावरण हितैषी परिसर है। यहाँ के प्रकृति वातावरण मनमोहक तरह आनंदित करने वाला है।
1: आनंद भाई, अभी हमने का एक वार्ता सुनने जा, राजगीर एक पर्यटन स्थल और वार्ताकार रहे डॉक्टर श्याम सिंह यादव। तो इतना उपयोगी जानकारी जे हमने के भेटल, एक खातिर तो इनका धन्यवाद देवल बना।
2: अच्छा देखा, पहले राजगीर के बारे में कितना चीज बतेल की, भगवान मालिक है कितना लोग के कितना याद रहत, लेकिन राजगीर जाते एक के तुरी सब चीज घूम जाए, भले 4 दिन लगे कि 1 सप्ताह, तब जा करके राजगीर के घूमल पूरा कहे तो आज सब जगह घूम पेबा। कितना चीज बदलखी, व्यवहार गिरी पर्वत के, गृतकूट पर्वत के, रायतन के, ग्लास ब्रिज के, है ना, सफारी के,
1: विश्व शांति स्तूप।

0: विश्व शांति स्तूप है, सब बहुत सारे
1: स्वर्ण भंडार
0: संत के अखाड़ा, हाँ,
1: सब बहुत
0: फिर
1: चीज़
0: सब जो सद्धारा है, ब्रह्मकुंड है, सब घूमना मतलब एगो कहा कि तीर्थस्थल के घूमना के बराबर है। तो राजगीर जरूर एक बार जाए के चाहिए और सब जगह घूमे के चाहिए। विस्तार से बतावे लगी श्याम सिंह यादव के धन्यवाद का विचार है। काटो फिर गीत सुना जाए, कलाकार हखी हरिवंश पासवान, सुनल जाए उनका से ये गीत।
1: चलिए

0: वाह, देखिए गंगा गीत अभी हमने का सुनने जाए
1: हाँ
0: और बड़ा निमन लगा। और यही के जोरे लेकिन चौपाल के समय भी ओरिया गिल बा, तो हमने का फिर खेती गृहस्थी में बतिया।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े

0: बदलने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अर्चना बहन, कार्यक्रम में अब सुनल जाए एक ठो प्रायोजित कार्यक्रम, जो फिट है वो हिट है।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर पटना।

0: आज मंगलवार का दिन है। नमस्कार आप सबों को। कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है के माध्यम से कैसे हैं आप सब, बताइए तो जरा। ढेर सारे फोन कॉल्स आए थे, गर्मी बहुत पड़ रही है, बच बचा के रहना है। बहुत सारे फोन, बक्सर से फोन आया, डुमराव से फोन आया, आरा से भी फोन आया, भागलपुर से भी फोन मिला था। अच्छा लगा, पटना के लोग तो आते ही रहते हैं। बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है में। जी हाँ, हम ये कार्यक्रम आपके लिए लाते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। इस कार्यक्रम में हड्डी और नस, जी हाँ, का कितना भी पुराना रोग होना, उसके बारे में चर्चा की जाती है ज्यादातर। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर की तरफ से, जो कि है पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, विष्णु प्लेस के बगल में राय जी की गली है, पटना में है। उनकी तरफ से हम डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं, सवाल पूछते हैं। आपके द्वारा भेजे गए वैसे सवाल होते हैं जिनका सरोकार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होता है, उनके लिए हम समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। हम नंबर बताते हैं, नंबर नोट करें डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का, 8877372299, 8877372299। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का और शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला।
1: नमस्कार, प्रणाम आप सभी को जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इतना दिन से आप लोग इतना प्यार देते हैं इस कार्यक्रम को, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही देते रहिए। और खासकर मैं उन सारे अपने श्रोता जो कि रेडियो पे हैं, इसी माध्यम के द्वारा देश दुनिया के लोगों को ठीक किया, और आप जिसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो आप लोग सुनते हैं और फिर विश्वास करके आते हैं। बहुत सारे मरीज ठीक हुए, कुछ नहीं भी ठीक हुए होंगे, लेकिन मैक्सिमम कोशिश रहती है कि हमारे पेशेंट्स ठीक हो जाएं, कहीं ना कहीं उनको परेशानी ना हो, पैसे की परेशानी ना हो। जितना भी जिनके पास होता है वो लेके आते हैं और अपना इलाज करा के जाते हैं, पहले से बेहतर होते हैं। हम कोई भगवान नहीं है कि आपकी लाइफ का हमने गारंटी ले लिया है कि आप एकदम ठीक ही हो जाएंगे, आपको छू दिया तो एकदम आपका कितना सालों का पुराना बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। हाँ, जरूर ये है कि आप बीमार हैं, जहाँ एकदम हर जगह से हार चुके हैं, तो यहाँ साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में आते हैं तो एक उम्मीद जगती है और पहले से आप बेहतर होते हैं। इसी उम्मीद के साथ ये संस्था आज विगत कई वर्षों से आप लोगों के बीच बैठ के सेवा दे रहा है और ऐसा देते रहेगा। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।
0: डॉक्टर साहब, गर्मी शुरू हो चुकी है, हीट वेव चल रहा है, लू भी चल रही है, ऐसे में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, इस पर लोगों से सबसे पहले आप बात कीजिए।
1: देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि गर्मी के दिन में हीट वेव की समस्या तो सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि लू लगता है। लोग बाहर में, अभी गेहूं की कटनी हो रही है, बहुत सारे लोग उसमें निकलते होंगे, तो जब भी आप निकलिए कोशिश करिए कि सर कम से कम आपका ढका रहे और लू ना लगे, क्योंकि अगर ठंड के दिन में अगर आपको स्ट्रोक होता है तो उसमें बचने की संभावना हो जाती है। लेकिन अगर गर्मी में हीट वेव की वजह से अगर आपको पैरालिसिस या लकवा का शिकायत होता है तो उसमें जान जाने की समस्या सबसे ज्यादा होती है, उसमें स्पॉट डेथ हो जाता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना है कि हीट वेव से बचना है, मतलब कि धूप से बचना है, कोशिश करें कि कम निकले। हाँ, अगर किसी को कुछ परेशानी होती है तो आप हमारा नंबर नोट करिए, नंबर है 8

0: नौ नौ। ये नंबर है साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर का, जो कि पूर्वी बोरिंग कनाल रोड राय जी की गली पटना में है।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम चल रहा है जो फिट है वो हिट है। मैं हूँ राजेश और हमारे साथ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह बैठे हैं, जिनका नंबर है 8877372299। डॉक्टर राजीव, घुटने की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, किसान भाइयों के लिए भी या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए भी ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। दर्द निवारक गोली कोई खा लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, क्षणिक आराम हो जाता है, लेकिन फिर वही वही वही स्थिति हो जाती है, वापस लौट जाते हैं दर्द में। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि इन सभी को, जिसको भी घुटने की दर्द है, राहत हो, आराम मिले।
0: देखिए राजेश जी, जहां तक घुटने का सवाल है, तो घुटना एक ऐसा हमारे शरीर का पार्ट है जिसपे पूरा शरीर चलता है, एक पिलर है, एक व्हील है, एक चक्का है। इसको समझिए एक तरह से एग्जाम्पल में कि इसी पे इंसान चलता है। मतलब जैसे गाड़ी में चक्का होता है, वैसे शरीर में पैर है, अब पैर के साथ घुटना है, घुटना ही जो है हमारा पूरे शरीर का लोड लेता है। तो एक तो आप ये समझिए कि इतने सालों से आपका पांव चल रहा है, तो कभी ना कभी तो घिसेगा ही घिसेगा। तो घिसेगा तो आप क्या करते हैं इसमें? घिसेगा तो आप, जैसे गाड़ी घिसता है और चक्का घिसता है, तो आप उसको चेंज कराते हैं। बहुत बार क्या होता है कि नहीं, पैसा नहीं है चक्का चेंज कराने का, तो आप उसको रिपेयरिंग कराते हैं। वैसे ही घुटना का है कि अगर जो आदमी चेंज नहीं करा सकता है, तो घुटने का रिपेयरिंग कराना है। रिपेयरिंग कराने के लिए उसके घुटने के अंदर लिक्विड जो ग्रीस होता है उसको डाला जाता है। अगर घुटना टेढ़ा हो गया है तो मशीनों से उसको कोशिश करी जाती है कि बहुत हद तक सीधा हो जाए। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, दवाइयाँ होती हैं। तो अभी फिलहाल जो घुटने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स जो जिसका पूरा ऐड हो रहा है, हर लोग आ रहा है उसी के लिए, इसका नाम है रोबोटिक नी डिकम्प्रेशन, जिसमें घुटना सटा हुआ घुटना बिना ऑपरेशन का खोल दिया जाता है। तो वैसे तमाम लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जिनको भी ऑपरेशन से बचना है, तो साई हेल्थ केयर के दरवाजे पे तो जरूर एक बार आए। हाँ, हमेशा हम कहेंगे कि आप कितना ठीक होंगे ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हर मरीज में अलग अलग अलग अलग इलाज होता है, वेरी करता है उनके शरीर, उनकी इम्यूनिटी पे, उनके जो शारीरिक शक्ति है उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना आप अच्छा होंगे। बहुत बार क्या होता है कि आपका इंटरनल बहुत सारे पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम से बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उसमें हम जो चाहते हैं जैसा रिजल्ट आया वैसा नहीं आ पाता है। लेकिन जो स्ट्रांग है, जिनका इंटरनल हर चीज, उनका उनका ब्लड लेवल अच्छा है, किसी तरह का कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे जो परेशानी है, जो वाइटल उनके अच्छे हैं, तो फिर वो पेशेंट निकल जाता है, उसकी अच्छी रिकवरी आ जाती है। लेकिन जिनके वाइटल्स प्रॉब्लम है, बहुत सारे दिक्कतें हैं, ऑलरेडी शुगर है, बीपी है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट का प्रॉब्लम है, इस तरह से किडनी का प्रॉब्लम, तो वैसे चीजों में बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ती है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो उस समय में हम जैसा खोजते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट से पेशेंट को रिकवरी हो जाए, तो वो नहीं हो पाता है। तो वैसी चीजों में है कि आपको थोड़ा ध्यान देना है, अपना आके पूरा फुल चेकअप कराइए एक बार। किसी भी इलाज से पहले आप बोलिए डॉक्टर को, जैसे हम लोग नहीं भी जांच करें तो आप कहिए कि जांच करके सर पूरा अच्छे से देखिए और उसके बाद इलाज कराइए, क्योंकि एक बार बीमारी पकड़ा जाता है ना, तो इलाज करने में आसानी होता है और आप ठीक भी होते हैं। तो ऐसे केसेस हैं घुटने के, तो आपको आना है और ठीक करवाना है, और मुझे लगता है कि आपको हम अच्छी तरह से चला पाएंगे।
1: वाह डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, यही बेबाकी आपको दूसरे से अलग करती है। कहते हैं आप कि मैं भगवान नहीं हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, ये भी कहते हैं एकदम, हाँ, एक ईमानदारी से कि बहुत लोग ठीक होते हैं, बहुत लोग नहीं ठीक हो पाते हैं, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए कि आपके शरीर में अगर कोई विकार है तो वो ठीक हो सके, और मैं कोशिश करूंगा। बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा ये बातें आपने जो हमारे साथियों, हमारे श्रोताओं से कही। बहरहाल डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का नंबर नोट करें, 8877372299, 8877372299। ये डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का नंबर है और ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं जो फिट है वो हिट है, साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, विष्णु प्लेस के बगल में राय जी की गली है, पटना में है इनकी तरफ से, और यहीं बैठते हैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, क्या समस्या है? अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, वैसे पेशेंट जिनके गर्दन से हाथों की तरफ दर्द आता है, बहुत ज्यादा दर्द आता है, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नई विधि में उनके लिए क्या इलाज?

0: हो सकता है ये बता दीजिए।
1: तो मैं बताना चाहूँगा कि इस बीमारी को ही ठीक करने के लिए डिकम्प्रेशन यूनिट लाया गया है कि कहीं भी दर्द की समस्या है, अगर वहाँ पे प्रेशर है, नसों में हड्डियों में प्रेशर है तो उसको रिलीज किया जाता है। गर्दन से कंधा में आता है तो उसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। मतलब सर्वाइकल मतलब गर्दन, रेडिकुलोपैथी मतलब रेडिएट करना। गर्दन से जो रेडिएशन होता है हाथों में उसी को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। कभी कभी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कंधा जाम हो जाता है, उसके कारण होता है जो शुगर के मरीज है, जिनको चीनी की बीमारी है, उनका कंधा जाम होता ही होता है। तो वैसे लोगों को भी मैं कहूंगा कि आपका अगर ऐसी परेशानी होती है, रात में सोने वक्त आपका कंधा बहुत दर्द करता है, तो उसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कंधा दर्द आपके हार्ट पेन का कारण हो सकता है, हार्ट अटैक करा सकता है। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और मेरे को लगता है कि ऐसी बीमारियों के लिए रामबाण उपाय साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में है, यानी कि हमारे यहाँ, यानी कि मेरे पास, डॉक्टर राजीव सिंह के पास। सिंपल सा मशीनों से, दवाओं से, एक्सरसाइज से आप एकदम ठीक हो जाएंगे और आप अपने लाइफ में पुनः जैसे थे वैसे चले जाएंगे। बहुत सारे लोग उठा के आते हैं यहाँ पे कि चल नहीं पा रहे हैं, पेशाब पखाना बेड में होता है, लेकिन उनको भी ठीक करके भेजा जाता है। यहाँ थोड़ा नंबर लगाने का असुविधा जरूर है, बहुत भीड़ रहती है, इसलिए थोड़ी परेशानी जरूर होती है आप लोगों को।
0: डॉक्टर राजीव, आपसे एक आग्रह है, आपके यहाँ जो नए नए मशीन्स लगे हैं ना, उसके विषय में हमारे सुनने वालों को जरा जानकारी दे दीजिए।
1: देखिये, वैसे तो राजेश जी, हमारे यहाँ सारे इक्विपमेंट्स हैं और आज नहीं, बहुत टाइम से इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो रखे हैं, लेकिन फिलहाल जिसका सबसे ज्यादा मार्केट में चर्चा है वो है स्पाइनल डिकम्प्रेशन और नी डिकम्प्रेशन। स्पाइनल डिकम्प्रेशन और नी डिकम्प्रेशन ये उस बीमारी के लिए है जिनके घुटने सट गए हैं, जिनके घुटने टेढ़े हो गए हैं, जिनके घुटने का ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो उसको खोलने की, बिना ऑपरेशन से खोलने की विधि को डिकम्प्रेशन कहते हैं। मतलब कोई चीज कंप्रेस हो गया, सट गया, उसको खोल देना है बिना ऑपरेशन का, तो रोबोटिक डिकम्प्रेशन नी ज्वाइंट के लिए, घुटना के लिए स्पेशली। और एक जो ट्रीटमेंट है स्पाइनल डिकम्प्रेशन, जिसमें कमर में जिनका नसें दब जाती है, जिनको साइटिका की बीमारी है, जिनके कमर से पैरों में दर्द आ रहे हैं, तो वैसे लोग भी बहुत बार क्या होता है कि सर्जरी में फंस जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सर्जरी कराने के बाद ठीक हो जाते हैं, ना, फिर भी दिक्कत ही रहता है। तो हम क्यों सर्जरी कराने जाए जब हमको दिक्कत ही रहता है? तो अब जो हम लोग लेके आए हैं लेटेस्ट इक्विपमेंट्स स्पाइनल डिकम्प्रेशन में, उसमें कोई ऑपरेशन, कोई चीरा की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर से ही आपका नस खुल जाएगा, बाहर से ही खुल जाएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड, AI बेस्ड ट्रीटमेंट आजकल शुरू हो गया है, आप सोचते हैं उससे ऊपर काम करती है मशीनें। अब कहां वैसे सिस्टम में है, सारा कुछ तो मशीन से हो रहा है, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हर वो चीज देखिए, मोबाइल आपके पास है, पूरी दुनिया दिखती है, कहां बैठे हैं, यहां से वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, क्या क्या सब चीज एक दूसरे को, कितना हजार किलोमीटर भी दूर है तो आप एक दूसरे को देख लेते हैं। वैसे ही मशीनों में इतना सिस्टम आ गया कि आपके अंदर में क्या क्या गड़बड़ी है वो सब दिख जाता है। तो उससे मशीनों के द्वारा आपके नसों को खोल दिया जाता है, आपके घुटने को खोल दिया जाता है। तो वैसी चीजें अगर आपको पता रहेगी तो आप क्यों इधर उधर भटकेंगे, क्यों लोकल में जाएंगे? आपको आना है, अगर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट कराना है जिसमें किसी तरह का शरीर में कटिंग ना हो और आप नॉर्मल वे में ठीक हो जाए, तो साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर जो है पटना में है, आपको जानना है, आना है और आके ठीक होना है।
0: बहुत बहुत आभार डॉक्टर राजीव कुमार सिंह कि आप कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है में आए और बेबाकी के साथ आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, जिसका फायदा हमारे सुनने वाले जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। ये थे डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये रेडियो कार्यक्रम आता है। आप एक कदम बढ़िए, हम चार कदम बढ़ेंगे। हड्डी और नस की कोई भी समस्या हो ना, तो छिपाइए नहीं, परहेज नहीं कीजिए, हाँ, इग्नोर मत कीजिए। डॉक्टर का नंबर है 8877372299। 8877-3722-99 इस पर कॉल करें और डॉक्टर राजीव कुमार सिंह से बात करें, वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। फिलहाल चलने का वक्त हो गया है। आज के कार्यक्रम से राजेश निकलता है आप सबों को नमस्कार कहते हुए। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भर

0: भरपूर मजा लेते रहें।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर पटना।
2: अभी हमने प्रायोजित कार्यक्रम सुन लिए है, जो फिट है वो हिट है। अब चर्चा कुछ काम के बात की।
3: अब देखिए कि किसान भाई खेती करे रहे तो कई तरह के फसल उपजावे रहे, कुछ फसल से तुरंत पैसा भेटेला, कुछ के है कि कुछ समय लागे ला। लेकिन जे व्यावसायिक फसल होला ओसे तो ओकर अलगे महत्व बा, ओकरा से पैसा के आमदनी तो ढेरे होखेला। जैसे गेहूँ चना धान तरकारी आदि व्यावसायिक कहे के मतलब भइल कि ओकर कल कारखाना में जरूरत पड़ेला, कपास जूट आदि इस सब जे बा ये तो कल कारखाना वाला भइल। और जे अनाज के बात करनी तो अनाज तो देखिए कि सबके उपयोग के चीज़ है, तो एक तरह के जे भी कल कारखाना लागेला जिसमें कि उत्पाद जो है वो कृषि से हमनी के भेटेला, कृषि आधारित उद्योग में काम देवेला।
2: देखो कृषि आधारित उद्योग औसन उद्योग के कहल जाए जे कि अपन कच्चा माल लगी सीधे तौर पर कृषि उत्पाद पर निर्भर करे है। ऐसा उद्योग वास्तव में किसान के आय बढ़ावे के साथ साथ बेरोजगार लोग के रोजगार के बढ़िया और सुगम साधन भी उपलब्ध करावे है। जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के ही बात करल जाए तो में फल सब्जी के संरक्षण जैम और जेली के बनावे के बात हो भाई अचार जूस और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ भी तैयार किया जाए। चीनी उद्योग जो कि सीधे सीधे गन्ना माने केतारी से तैयार करल जाए। वस्त्र उद्योग सीधे सीधे कपास से जूट से तैयार कर लिया जाए। इसने ढेरों सा तिलहन में ले ला तो सरसों मूंगफली सोयाबीन सूरजमुखी सब व्यवसायिक उत्पादन कर जा सके है सबसे। और वनस्पति घी भी अगर से बनना है चाय कॉफी। फिर डेयरी उद्योग की बात करें तो पनीर दूध घी मक्खन सब तैयार।
3: तो देखिए कि जे जैसे फल के बात बात चाहे दूध के डेयरी उद्योग के बात कही
4: तो यह सब में तो बाकी जल्दी खराब होके वाला बा। और खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा इनका के हमने के बहुत दिन तक इस्तेमाल कर सकेला जा। जैसे फल के जैम जेली सब बन गए तो ढेर दिन चल जाला। टमाटर के देखी सॉस बनाता केचप बनाता तो उसे टमाटर भी बहुत दिन तक हमनी के सुरक्षित खा सकता नहीं जा।
3: तो ए रंग से ये सब जितना भी कृषि आधारित उद्योग तो ये खातिर तो हमनी के कृषि पर ही निर्भर
2: बिल्कुल ये सब अपनावे की जरूरत है ताकि रोजगार प्राप्ति भी करल जा सके। अब हमारा विचार है कि एक आठ गीत हो जाए। कलाकार हकी हरिवंश पासवान सुनल जाए उनका से ई गीत।
3: चलिए।

0: हमने का एक गीत सुनने जा, और देखिए कि इतना निमन निमन गीत सुने खातिर, तो इनका सब गीत खातिर धन्यवाद।
1: जरूरी धन्यवाद दे तो।
0: हाँ, और अब समय तो ओरिया रहा बा, चले के बेरा हो गया बा, तो नमस्कार आनंद भाई।
1: नमस्कार अर्चना बहन।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल के तहत खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी प्रखंडों में आज से 3 दिवसीय सहयोग सहजन कल्याण शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैमूर और सिवान के शिविरों में हुए शामिल। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले 22 जून तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम सेवा पर लगाया प्रतिबंध। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेलवे कर रहा है 30 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की 12 वर्ष पूरे होने पर आज से प्रदेश के सभी 534 प्रखंडों में 3 दिवसीय प्रखंड सहयोग सहजन कल्याण शिविर की शुरुआत हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैमूर और सिवान जिले में आयोजित शिविर में शामिल हुए। कैमूर के भगवानपुर प्रखंड स्थित पहड़िया पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते एक महीने में सहयोग शिविर के माध्यम से 3,03,678 प्राप्त हुए आवेदनों में से 2,61,618 आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं, जो कुल प्राप्त आवेदनों का 90% है।
1: साथियों, हम लोगों ने शिविर कार्यक्रम शुरुआत किया है और लगभग एक महीना पूर्ण वाला है, एक दो दिनों के अंदर, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 3,03,678 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ। 2,61,628 लोगों का आवेदन निष्पादित किया गया। कार्यक्रम का मकसद है जनता से संवाद, जनता के समस्या का हल करना।
0: उन्होंने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से लोगों की शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है और निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।
1: जनता जो लगातार किसी भी तरह के परेशानी को झेल रहा हो, उन समस्या को समाप्त करना है। और इसके जो कानून है बड़ा स्पष्ट है साथियों, 10 दिन के अंदर यदि कोई आदेश पारित नहीं हुआ तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से वैसे पदाधिकारी को पहला नोटिस दिया जाता है, दूसरा नोटिस जब 20 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, और तीसरा नोटिस 25 दिन के बाद, और 30 दिन तक यदि किसी पदाधिकारी ने आदेश नहीं किया तो 31वें दिन वह स्वतः निलंबित कर दिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे बिहार में रहकर अपराध करते हैं तो इसे चुनौती माना जाएगा और 48 घंटे के भीतर जवाब दिया जाएगा।
1: कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है, और बिहार नहीं छोड़ता है, और यदि अपराध करता है तो एक तरह से चैलेंज माना जाएगा, और यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करेगी।
0: इससे पहले उन्होंने मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि और विकास की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 196 करोड़ रुपए की लागत से 60 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मां मुंडेश्वरी धाम में रोपवे निर्माण की दिशा में जल्द पहल की जाएगी, साथ ही मंदिर परिसर के विकास और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को मां मुंडेश्वरी धाम से जोड़ने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आज सिवान के पचरुकी प्रखंड के पपौर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भी शामिल हुए। श्री चौधरी ने यहां 180 करोड़ रुपए की लागत वाली 38 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही योजनाओं के लिए आवेदन भी दिया। एक रिपोर्ट।
2: पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 25 विभागों के अलग अलग काउंटर लगाए गए, जहां आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया। जहानाबाद में जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने मोदनगंज प्रखंड के जैतीपुर कुरुआ सहित विभिन्न पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविरों का निरीक्षण कर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन और पोर्टल पर अपलोड की स्थिति की समीक्षा की और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इधर सुपौल जिले के निर्मली प्रखंड स्थित बेला सिंगार मोती पंचायत में जिलाधिकारी सावन कुमार और पुलिस अधीक्षक शरत आरएस ने सहयोग शिविर के दौरान पात्र लाभुकों के बीच मौके पर ही जॉब कार्ड का वितरण किया। वहीं अरवल जिले के प्रभारी मंत्री दीपक प्रकाश ने सदर प्रखंड के सोनबरसा पंचायत में आयोजित शिविर के दौरान लोगों से संवाद किया और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित

0: समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शेखपुरा जिले के पंचायतों में आयोजित विभिन्न सहयोग शिविरों में प्रभारी मंत्री श्वेता गुप्ता, जिलाधिकारी शेखर आनंद तथा पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों ने भाग लिया। दूसरी तरफ सारण में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविरों में लोगों की समस्याएं सुनी तथा इनके त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। उधर भागलपुर के अम्बा पंचायत सहयोग शिविर में जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने लोगों की शिकायतें सुनी और शिविर में प्राप्त अधिकांश आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया। समाचार कक्ष से निधिश्री।
1: 18 जून तक चलने वाले इन शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, पंजीकरण, सत्यापन, ईकेवाईसी तथा लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम पर 30 जून तक संदेशों को संपादित करने की सुविधा भी बंद रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। पूर्व मध्य रेल कल होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्र और पटना जंक्शन सहित विभिन्न स्टेशनों से 30 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा। एडीजी रेल डॉ. कमल किशोर सिंह ने बताया कि परीक्षा में लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षार्थियों के आवागमन में सुविधा के लिए आज और कल विभिन्न रूटों पर विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। आज पाटलिपुत्र और पटना से किशनगंज, नरकटियागंज, अररिया, नवगछिया तथा भभुआ के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल भी पटना, गया, बक्सर, कियूल, राजगीर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, औरंगाबाद, हाजीपुर तथा नवगछिया सहित विभिन्न स्टेशनों से 26 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य

0: सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देर शाम 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचेंगे। श्री चौहान इस दौरान कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे कल पटना के नौबतपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान वे किसानों से संवाद करेंगे तथा कृषि भूमि संरक्षण, टिकाऊ खेती और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में तेजी से और समग्र विकास हुआ है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ी है और विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर खुले हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। वहीं मेट्रो रेल का नेटवर्क लगभग 250 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 1,200 किलोमीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनों से अधिक हो गई है। पश्चिम चंपारण के बेतिया अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर कार्यरत क्लर्क राजकुमार मिश्रा को निगरानी विभाग की टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार क्लर्क ने शिकायतकर्ता से जमीन की जमाबंदी अनलॉक करने के लिए रिश्वत की मांग की थी, जिसके सत्यापन के बाद यह कार्रवाई की गई। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मॉनसून की उत्तरी सीमा जमुई और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। हालांकि मॉनसून की सक्रियता में कमी आने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
2: राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष भाग शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने 331 लीटर शराब की एक बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड के कैदी गांव में कृषि उद्यमी सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को खाद, बीज, कृषि संसाधन और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले में टीबी उन्मूलन अभियान को गति देने के लिए सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को कफ अगेंस्ट टीबी ऐप के उपयोग का 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस डिजिटल ऐप की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान और स्क्रीनिंग आसान होगी, जिससे समय पर उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी प्रखंडों में आज से 3 दिवसीय सहयोग सहजन कल्याण शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैमूर और सीवान के शिविरों में हुए शामिल। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले 22 जून तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम सेवा पर लगाया प्रतिबंध। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेलवे कर रहा है 30 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: PIR at 90.
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गया जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
2: गया जिले के खिजरसराय में बीते दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रौद्योगिकी केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने गया जी इस्लामपुर खिजरसराय पथ से देवगांव स्थित टेक्नोलॉजी सेंटर तक सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का भी शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी केंद्र क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गया के प्रसिद्ध पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट के शिल्पकारों को बधाई देते हुए कहा कि GI टैग मिलने से बिहार की पारंपरिक कला और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की लोक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर है तथा GI टैग से इन उत्पादों को कानूनी संरक्षण के साथ वैश्विक बाजार में नई प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। गया जी के शुभम कुमार ने JEE एडवांस्ड 2026 परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया। शुभम ने IIT दिल्ली जोन के छात्र हैं। उन्होंने कुल 360 में से 330 अंक प्राप्त किए हैं। इससे पहले शुभम ने JEE मेन 2026 में दोनों सेशन में भी 100% स्कोर किया था। शुभम ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के लिए उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी और रोजाना 8 घंटे अध्ययन करते थे। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम और निरंतर मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित युवा संगम के फेज 6 कार्यक्रम के तहत पंजाब से आए युवाओं के प्रतिनिधि मंडल ने गया की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत से परिचय प्राप्त किया। प्रतिनिधि मंडल ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर परिसर तथा विष्णु पद मंदिर का भ्रमण किया और बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं की जानकारी ली। इधर बीते दिनों संसदीय राजभाषा समिति की द्वितीय उप समिति के 10 सांसदों के एक शिष्टमंडल ने महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जनजातीय गरिमा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जनजातीय समुदाय के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तथा वनाधिकार अधिनियम के तहत भूमि के पट्टे वितरित किए गए। अपने संबोधन में श्री मांझी ने कहा कि आदिवासी समाज देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकार उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिछले दिनों म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग एक दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर तथा बकरौर स्थित सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल भी मौजूद रहा। भारत सरकार की ज्ञान भारतम परियोजना के अंतर्गत प्राचीन ज्ञान संपदा के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी तथा नव नालंदा विहार की विशेषज्ञ टीम ने गया जी स्थित एक निजी पुस्तकालय में संरक्षित दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया। इस दौरान लगभग 700 वर्ष पुराने कई महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथ मिले। विशेषज्ञों ने इन पांडुलिपियों को इतिहास, संस्कृति और शोध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गया वन प्रमंडल द्वारा ब्रह्म वन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप

0: में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भाग लिया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का विस्तार चर्चा की गई। श्री कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ते प्रदूषण, जल संकट और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों की सराहना करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा जन जागरूकता पर बल दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे गया जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्रीमती डे के स्वर में गीत। कार्यक्रम है सुगम संगीत।

0: श्रीमती डे के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। आज का विषय है आतंकवाद।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष

0: पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में, आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
1: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
0: जी,
1: विश्वास और जन कल्याण
0: जी,
1: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
0: जी।
1: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
0: जी,
1: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
0: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
1: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
0: जी।
1: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
0: जी।
1: पर भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
0: जी।
1: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल, सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं
0: जी,
1: उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो। तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
0: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आप

0: ने नेट जीरो इमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है। आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
1: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है जी। अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है जी। लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं, वहां PM 2.5 और PM 10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है जिसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में है, उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहां के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है
0: जी। प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है। और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे।

0: ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना, कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है। इसके लिए अपना आपको एनवायरनमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में कैपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए जी। और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं जी। नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे
1: जी।

0: तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व है उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है। जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है, और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है जी। और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी

0: बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता,
1: बिल्कुल
0: है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूं कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है।
1: जी
0: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना। लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है, उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है
1: बिल्कुल
0: पक्षियों के
1: जी
0: लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है। और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड
1: जी
0: तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो,
1: जी
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे?
1: जी
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है।
1: बिल्कुल
0: तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा। आप एक बात बताइए
1: जी
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है?
1: जी
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है?
1: जी
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन,
1: जी
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है।
1: जी हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है, ये नेट जीरो के है।
1: जी
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है, ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है, ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है, वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है, वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं, वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और
1: जी
0: इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए,
1: जी
0: अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय

0: तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी।
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन, था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा है, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पर ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पर अपनाएं, तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाए, एक पेड़ माँ के नाम लगाए और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

लेकिन तैयार रहिए इसमें आप, नए बहलाओं के साथ कोशिश करूंगा मैं, जो कि कोशिश करूंगा जो अलग होंगे, जो आप लोगों की टेपों में नहीं हो शायद। रंजिशें सही।

दो शेर नए हैं, अहमद फराज साहब के नहीं है, लेकिन रदीफ और काफिया एक ही है। अब ये नहीं कह सकता मैं कि अहमद फराज साहब ने पहले गजल लिखी है या उन शायर ने पहले गजल कही है, तो उनके शेर हैं।

0: मेहंदी हसन के गाए इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम

0: समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: लॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार।

दिल्ली। इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी राम जी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1,000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत

0: जाति में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders.

0: पर कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मीटिंग में सीज़न के दौरान नामवाफिक मौसमी सूरतेहाल से ज़राअत और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी तौर पर तमाम ज़रूरी इकदामात किए जाने को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। जनाब चौहान ने हिदायत दी है कि ऊना ज़िला में जहाँ कम बारिश या गैर मुसावी बारिश होने का इम्कान है, पेशगी तौर पर तमाम इकदामात किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अज़ला की शनाख्त की जानी चाहिए और रियासतों के साथ मिलकर फसल के हिसाब से हंगामी मंसूबे तैयार किए जाने चाहिए, ताकि मौसमी चैलेंज की सूरत में फौरी तौर पर किसानों को मुतबादिल आलात और ताउन फराहम की जा सके। नई दिल्ली से सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज ऐलान किया है कि तारीखी ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियांग में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने मुल्क के दिफा में गोरखा फौजियों के जोश व जज्बे और कुर्बानियों के तई खराज अकीदत पेश किया। जनाब अधिकारी ने मजीद ऐलान किया कि रियासती पुलिस फोर्स में जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी, जिससे गोरखा जवानों को बड़ी तादाद में रोजगार के मौके मिलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती भर्तियों में कम से कम 30% सीटें ख्वातीन के लिए रिजर्व होंगी। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम दहशतगर्दी के खिलाफ नरेंद्र मोदी हुकूमत की कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बरस 6 और 7 मई की दरमियानी शब को ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को एक वाज़े पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता, लेकिन दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई सुर्ख लाइन खींच दी कि अगर दहशतगर्दी किसी की स्टेट पॉलिसी है तो उसे एक बराह रास्त और कुव्वत से भरपूर रद्द अमल का सामना करना होगा। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में वाक़ दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया। इस कार्रवाई में 100 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। इधर 7 पड़ोसी मुल्कों तक फैली 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी ज़मीनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज भारत मुल्क को अवलियत देने के उसूल की रहनुमाई में अपनी मुअस्सर खारजा पॉलिसी पर अमल कर रहा है। साथ ही वो दिफा के शोबे में खुद कफील होने की जानिब पेशरफ कर रहा है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने कहा कि आसाम में खुली सरहद एक बड़ा मसला था और नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मामले से निमटने के लिए तेजी के साथ काम किया है। NDA हुकूमत दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तई पूरी तरह पुरअज़्म है। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने पेरिस मुआहदे की दफा 6.2 के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM पर अमल आवरी के जवाबित को इख्तियार किया है, ताकि आब हवा से मुतालिक कार्रवाई, जहरीली गैसों के अखराज में कमी और पायदार तरक्की की स्कीमों के मुतालिक तआवुन को फरोग दिया जा सके। माहौलियात, जंगलात और आब हवा की तब्दीली की वजारत के मुताबिक अमल आवरी के जवाबित को क्रेडिटिंग के मुश्तरका मैकेनिज्म के लिए पिछले बरस दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाए तआवुन के मुफाहमत नामे के बाद इस बरस 8 जून को इख्तियार किया गया। ये मैकेनिज्म तख़फीफ के प्रोजेक्टों में शराकत दारी का एक खाका फराहम करता है, जिसकी रूह से भारत में जहरीली गैसों के अखराज में तख़फीफ या कतई ख़त्म किए जाने की बात की गई है, साथ ही पायदार तरक्की के लिए तआवुन की बात भी की गई है। ईरान ने आज कहा है कि अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के मुआहदे के तहत इसराइल को लिबनान से बाहर निकलना होगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने कहा कि जनूबी लिबनान में इसराइल की जारी मौजूदगी अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाए मुफाहमत नामे की खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिका ने

0: Bandi. Bandi.
1: Yeah. सोने दो।
0: उठाना चाहते हो?
1: अबे नहीं, नींद पूरी हो जाने पर।
0: बंदी,
1: चुप ही रहो।
0: फिर अफसर ना मिलेगा।
1: कितनी ठंड है। कोई एक कंबल डालकर ठंड से मुक्त करता है।
0: आंधी की संभावना है।
1: तो?
0: यही अफसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं।
1: तो क्या? तुम भी बंदी हो?
0: धीरे बोलो।

0: नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं।
1: अच्छा, शस्त्र मिलेगा?
0: प्रयत्न करने पर मिल जाएगा। भूत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे?
1: शस्त्र मिलने पर। अच्छा, पहले बंधन खोलो।
0: हाँ, अच्छा।
1: आभार, आभार। आओ, आओ गले मिल लो मित्र।
0: छोड़ो, छोड़ो मुझे।
1: अरे क्या हुआ?
0: आभार के लिए आलिंगन की आवश्यकता नहीं।
1: अरे, ये क्या? तुम स्त्री हो?
0: क्या स्त्री होना कोई पाप है?
1: शस्त्र कहाँ है?
0: कोशिश करती हूँ।
1: तुम्हारा नाम?
0: चंपा।
1: शस्त्र कहाँ से लाओगी?
0: तुम यूं ही स्थिर पड़े रहो, मैं लुढ़कती हुई पास के नाविक तक जाती हूँ।
1: देखो, बहुत खतरा है, सावधानी से जाओ। संभल के, संभल के।
0: ये लो, कृपाण रखो।
1: होशियार रहना।
2: सावधान! अरे सावधान, आंधी आ गई। बाल उतारो।
0: तुम्हारा नाम क्या है?
1: बुद्ध गुप्त।
0: कोई अवसर है तो लगकर उस रस्सी तक पहुंच जाओ जो भूत से जुड़ी है। काट डालो उसे।
1: ठीक है, जाता हूं।
0: हाँ, संभल कर।
1: तुम ध्यान रखना।
0: हाँ,
1: होशियारी के साथ।
0: हाँ।
1: रस्सी कट गई। देखो, हवा कितने वेग से हमारी नाव भूत से दूर लिए जा रही है। स्वतंत्र है चंपा।
0: अभी नहीं, अभी तुम्हें नायक से जूझना है। शांत पड़े रहो, आंधी का वेग एकाध प्रहर में मंद पड़ जाएगा।
1: सूर्योदय में एकाध प्रहर बाकी है।

0: उठो उठो बुधगुप्त उठो, नायक इधर ही आ रहा है।
1: ओहो, सुबह हो गई, सागर तो बड़ा शांत है।
0: आंधी थमे काफी देर हो चुकी है, नाव में हड़कंप मचा है, पोत के अदृश्य हो जाने से सब चिंतित है।
2: ये क्या बुधगुप्त, तुमको किसने मुक्त किया? इससे कृपाण ले तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा।
1: किसके लिए?
2: पोताध्यक्ष मणिभद्र के लिए।
1: मणिभद्र? तुम्हें कहीं मणिभद्र या उसका पोत दिखाई दे रहा है?
2: तो ये कृत्य तुम्हारा है, तुम्हें ने पोत की रस्सी काटी।
1: सुनो नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं।
2: तुम जलदस्यु बुधगुप्त?
1: हाँ।
2: तुम?
1: हाँ, मैं जलदस्यु बुधगुप्त।
2: कदा भी नहीं, नाव का स्वामी बनने के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा।
1: तो ठीक है, द्वंद्व युद्ध के लिए मैं प्रस्तुत हूं, निकालो कृपाण। हाँ?
2: हाँ? ये क्या, मेरा कृपाण?
1: मैं तुम्हें अवसर देता हूं, अपने किसी अनुचर से कृपाण मांग लो।
2: निकुंज
3: जी नायक,
2: कृपाण इधर दो।
3: ये लीजिए।
2: लो बुधगुप्त, संभालो। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। ओ, ओ, मेरी छाती से हट जाओ।
1: तो तुम मुझे स्वामी स्वीकारते हो?
2: बोल। मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। तुम मेरे स्वामी हो।
1: तो ठीक है, तुम्हें अभय दिया, जाओ।
0: तुम वीर पुरुष हो, द्वंद्व युद्ध में तुम्हारा कौशल देखकर मैं चकित हो गई। तुम इन नाविकों के योग्य स्वामी हो।
1: यहाँ चारों दिशा में विस्तृत सागर है, तुम लोग अभी कहाँ हो?

0: होंगे
1: बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नए द्वीप के पास।
2: नया द्वीप?
1: हाँ, वहाँ हम लोगों का आना जाना काफी कम होता है। सिंघल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है।
0: कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे?
1: अनुकूल हवा मिलने पर 2 दिन।
0: 2 दिन? तब तक के लिए खाद्य
1: का

0: हवा कितनी भली लग रही है, रात यही हवा कितनी क्रूर हो गई थी।
1: ऐसा ना कहो, हवा हितैषी बनकर आंधी ना लाती तो हम मणिभद्र के चाकर बनकर रह जाते।
0: उस पुटिल का नाप डालो, तुम जैसे वीर पुरुष पर वह कब तक स्वामित्व जत लाता।
1: तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया?
0: फणिक मणिभद्र की पाप वासना ने।
1: अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है?
0: गंगा के तट पर, चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे।
1: किंतु तुम मणिभद्र के पोत पर क्यों आई?
0: वही बता रही हूँ। माता का देहावसान हो जाने पर मैं पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली।
1: सब कुछ नियति है चंपा, मैं भी ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय हूँ। किंतु दुर्भाग्य देखो, जल दस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, अब तुम क्या करोगी?
0: मैं अपने भाग को इस सागर की तरह दिशा ही नहीं रहने दूंगी।
1: हाँ चंपा, यदि मैं आकाश दीप की तरह दिशा सूचक बन जाऊं।
0: मैं त्वरित निर्णय के पक्षधर नहीं हूँ।
1: ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे भीतर ये लहरें क्यों उठ रही हैं? मैं हत्याजीवी हूँ, एक भीषण दस्यु। चंपा की आंखों में आकांक्षा के लाल डोरे नहीं है, तब भी समुद्र के वक्ष पर थिरकती ये संधि मुझे राख रंजित क्यों लग रही है?
2: हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए।
1: अच्छा नाविक, तुमने इस द्वीप का नाम क्या बताया था?
2: इस द्वीप का कोई नाम नहीं है।
1: अच्छा, कोई नाम नहीं है? तो ठीक है, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे।
2: ठीक है महानाविक, हम लोग इसे चंपा द्वीप ही कहेंगे।

0: जया, जया
1: आज्ञा रानी।
0: तो मुझे रानी क्यों कहती है रीत?
1: महानाविक की आज्ञा है रानी।
0: क्या मैं तुझे रानी लगती हूँ?
1: इस विशाल प्रासाद की अधीश्वरी कोई रानी ही हो सकती है ना?
0: किंतु मैंने तो किसी को नहीं कहा था प्रसाद बनाने के लिए।
1: ये महल आपके रूप लावण्य के अनुरूप है रानी।
0: तू तो बहुत बोलने लगी है।
1: 5 वर्षों से आपके साथ हूँ, थोड़ा बहुत सीख लिया है, अन्यथा हम द्वीपवासी बोलने में पट्टू कहाँ है।
0: अच्छा अच्छा, उधर ऊपर देख।
1: हाँ,
0: वो आकाशदीप कैसा लग रहा है?
1: अबरक की मंजुषा में किसी नक्षत्र की तरह दे दीप्यमान है।
0: सच?
1: हाँ रानी।
0: मेरी इच्छा होती है कि आकाशदीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए।
1: हाँ?
0: किंतु वैसा कैसा संभव है?
1: महानाविक आ रहे हैं, मैं चलती हूँ।
0: आओ बुद्ध को स्वागत है।
2: बावली हो क्या चंपा, यहाँ बैठी अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें ये काम करना है?
0: क्षीर निधि शाही अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाशदीप जलवाऊं?
2: हंसी आती है।
0: अच्छा, बुधगुप्त को हंसी भी आती है?
2: हाँ आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है?
0: हाँ, वो भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते?
2: तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी?

0: मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो, तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहानी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकुल में अनाज लादकर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे।
1: वे तो अभाव के दिन थे जावा।
0: तुम उन्हें अभाव के दिन कहते हो, उन रस भरे दिनों को। सागर के इस प्रशांत जल में अगणित बार हम लोगों की नाव कभी आलोक में प्रभात में, कभी तारों की मधुर ज्योति में कैसी थिरकती थी, तुम्हें याद नहीं बुद्धगुप्त? उस विजन अनंत में जब लहरों की लोरियां सुनते सुनते मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम श्रम से कलान पालों में शरीर लपेटकर कैसे एक दूसरे का मुंह देखते रहते थे, वह नक्षत्रों की मधुर छाया।
1: अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचार सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो।
0: ये सब वृथा है।
1: वृथा नहीं, सत्य है चंपा। क्या तुम्हें मेरा परिवर्तित रूप दिखाई नहीं देता?
0: परिवर्तित रूप? हाँ, परिवर्तन मुझे दिखाई देता है।
1: इसे उलाहना में मत स्वीकारो। क्या मैंने दस्यवृत्ति नहीं छोड़ दी?
0: तुमने दस्यवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो।
1: नहीं चंपा, मैं तो भगवान की।
0: चुप रहो कठोर दस्यु, मंगल कामनाओं के तरल स्पर्श से तुम वंचित रहे। मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी और मेरे पिता जब नौकरी पर समुद्र में जाते थे, मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में गंगा के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वो प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक ठीक पथ पर ले चलना। मैं अपनी स्नेहमयी माँ को टोक टोक ताका करती, इसके माथे पर सिंदूर का लाल टीका चमकता रहता, मांग पर रक्त वर्णी रेखा दूर तक खिंची रहती। प्रार्थना के उन मुहूर्तों में उसका रूप कितना दिव्य हो जाता था, श्रद्धा और विश्वास से आलोकित उसके मुखमंडल पर कितना तेज बरसता था।
1: हमें बहुत देर से खड़ा है चंपा, तुम चलकर विश्राम करो।
0: जब मेरे पिता लंबी समुद्री यात्रा से वर्षों बाद लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की। ये सुन माँ गदगद हो जाती, मेरी माँ। नाविक, ये उसे की पुण्य स्मृति है।
1: चंपा, तुम बहुत भावुक हो रही हो। जो अभी संसार में नहीं है उनके प्रति ऐसी ममता का क्या औचित्य?
0: तुम निष्ठुर हो बुद्धगो, ममता में औचित्य ढूंढते हो। तुम क्या प्रेम कर सकते हो?
1: ऐसा ना कहो चंपा, माला की हत्या ही मेरी वृत्ति थी, खड़ग और कृपाण ही मेरे संगी थे, रक्त की धारा मेरे भीतर उल्लास भक्ति थी। चंपा, तुम्हारे संग पाते ही वो सब अतीत हो गया।
0: और धन की लिप्सा, वो तो अतीत ना हो सकी, बस रूप भर बदल गया।
1: चंपा, नरधन का जीवन नारकीय होता है, धन केवल भौतिक अभावों का पूरक नहीं होता, वो श्रेष्ठ जीवन यापन का आधार भी होता है।
0: ये एक भ्रमपूर्ण उक्ति है। श्रेष्ठ जीवन तो मेरे पिता का था, सरल और आडंबरहीन।
1: फिर पिता?
0: हाँ, फिर पिता। मेरे वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ मेरे दृष्टि से।
1: चंपा,
0: हट जाओ हत्यारे, मेरे निकट ना आना।
1: चंपा, चंपा, ये तुम्हें अचानक
0: मुझे स्पर्श करने का साहस ना करो जलदस्यु, मैं तुमसे घृणा करती हूँ। हाँ, हाँ, मैं तुमसे घृणा करती हूँ।
1: ये क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी। जाओ, जाओ सो रहो।
0: जाओ।
1: अच्छा अच्छा, मैं जाता हूँ।
0: जाओ, चले जाओ। चले जाओ।
1: जाता हूँ, जाता हूँ चंपा, जाता हूँ।
0: चले जाओ यहाँ से।
1: तुम जाओ, सो जाओ, मैं जाता हूँ।

0: रानी, सागर बहुत शांत है।
1: शांत और गंभीर, जैसे किसी गहन विचार में निमग्न हो।
0: मुझे तो सागर बहुत उदास दिखाई दे रहा है, जैसे आपकी ही छाया बिखर गई हो।
1: जया,
0: हाँ,
1: तू मेरी पीड़ा नहीं समझ सकेगी। प्रेम और घृणा साथ साथ हो तो उस द्वंद की तू कल्पना कर सकेगी। मन की अन्य मनस्कता कुछ भी स्थिर नहीं रहने देती। देख,
0: हाँ,
1: सागर में कितना जल है, कितनी शीतलता है। अगर ये तन की प्यास नहीं मिटा सकता, मन को तृप्त नहीं कर सकता।
0: रानी व्यथित है?
1: सच जया, कभी इच्छा होती है जैसे तट में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी तरह हृदय फाड़ कर रो पड़ूं। या ये जो दूर क्षितिज में दहकता सूरज समुद्र में डूब रहा है, उसी की तरह मैं भी जल समाधि ले लूं।
0: शुभ शुभ बोलिए रानी, ऐसे हृदय विदारक विचारों से स्वयं को मुक्त रखें। अब वो देखिए, बजरा समीप आ रहा है, संभवतः महानायक सुमात्रा से लौट रहे हैं।
1: महानायक ने लौटने में बड़ी शीघ्रता की।
0: केवल देह लिए कब तक फिरें, हृदय तो यहीं चंपादीप में छोड़ जाते हैं। शायद उन्होंने आपको देख लिया है, बजरा इसी ओर आ रहा है।
1: वो तो इसी ओर निहार रहे हैं।

0: चंपा, चंपा हाथ लाओ, संभल के संभल के। अजया
1: जी, महानायक,
0: तू नौका लेकर तट पर जा।
1: जी अभी जाती हूँ।
2: कहो बुद्धगुप्त, कैसी थी यात्रा?
0: ठीक ही थी चंपा, इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती
2: तो अच्छा होता। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है।
0: उफ चंपा, कितनी निर्दयी हो तुम।
2: निर्दयी तो हूँ, किंतु तुम्हारे निकट ये निर्दयता ना जाने क्यों तिरोहित होने लगती है। अन्यथा
0: तुम उखड़ी उखड़ी बातें क्यों करती हो चंपा? मेरा सानिध्य तुम्हें अप्रीतिकर क्यों लगता है? अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट क्यों नहीं करती? बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो, वो क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर तो देखो महानाविक, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता है, खटड़ों के पल बैठा तुम्हारी अभ्यर्थना कर रहा है।
2: लेकिन क्यों? मेरा सामिप्य तुम्हें लाभान्वित नहीं कर सकता, उल्टे संभव है तुम्हारे प्राणों के लिए खतरा उत्पन्न कर दे।
0: तुमसे खतरा? रानी, तुम कहो तो कपाण से अपना हृदय पिंड निकाल कर जल में विसर्जित कर दूं।
2: अच्छा, इतना प्रेम है मुझसे?
0: हाँ चंपा, शब्दों की सामर्थ्य से भी परे।
2: बुद्धगुप्त,
0: चंपा, चंपा, तुम्हारे अभाव में मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। चंपा,
2: बुद्धगुप्त, तुम मुझे भावुक करने लगे हो।
0: चंपा, तुम एक रहस्यपूर्ण मोहिनी की तरह आचरण क्यों करती हो? अरे ये क्या, तुम्हारे हाथों में कृपाण?
2: बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया।
0: ओह चंपा, तो आज से मैं विश्वास करूं कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया।
2: विश्वास? कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास ना कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं

0: रानी वो देखिए, सुदृढ़ दीप स्तंभ कितना सुंदर और भव्य दिख रहा है। महानाविक द्वार पर आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं।
1: यहाँ तो खूब जमघट है, द्वीप के जन महोत्सव के आनंद में नृत्य कर रहे हैं।
2: तुम्हारा स्वागत है चंपा।
1: कुसुम भूषण से सज्जित ये बालाएं तो बड़ा मनोरम नृत्य कर रही हैं। किंतु ये मुझ पर फूल क्यों उछाल रही हैं?
2: ये सब तुम्हारा स्वागत कर रही हैं।
1: इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई जया?
0: आज रानी का ब्याह जो है।
1: क्या ये सच है बुद्धगुप्त?
0: मैं तैयारियां देखकर आती हूँ।
1: बोलो बुद्धगुप्त, क्या ये सच है?
2: यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ये सच में हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ।
1: चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निस्सहाय और अनाथ जानकर आज सब प्रतिशोध लेना चाहा?
2: चंपा, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ, वो एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे।
1: काश मैं इसका विश्वास कर सकती, तब इस निष्ठुरता में भी तुम कितने महान होते।
2: चंपा, हम लोग जन्म भूमि भारत वर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शचि के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हुए है। मुझे देश की बहुत याद आती है, जानती हो चंपा, तब भी मैं क्यों नहीं जाता? इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूं चंपा। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ।
1: बुद्धगुप्त,
2: आज मुझे मत रोको चंपा, मन की कह लेने दो। मैं ईश्वर को नहीं मानता, पाप को नहीं मानता, दया को नहीं समझ सकता। मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहती हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। पशु बल और धन का उपासक हूं मैं, किंतु किसी शांत और एकांत कामना की हंसी मन में खिलखिलाने लगी है।
1: किंतु बुद्धगुप्त,
2: चलोगी चंपा? पोत वाहिनी पर असंख्य धन राशि लाद कर राज रानी सी जन्म भूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो और कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें।
1: बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभोग का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए।
2: चंपा, चंपा, एक बार पुनर्विचार कर लो।
1: यह मेरा अंतिम और अटल निर्णय है।
2: तो ठीक है चंपा, तब मैं अवश्य चला जाऊंगा। यहां रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। चंपा, इन लहरों में मेरा विनाश हो जाए।
3: महानाविक, पोत प्रस्थान के लिए तत्पर है, बेला निकली जा रही है, अब चलिए। महानाविक, चंपा देवी का निर्णय अटल है, आप भावुक ना हो महानाविक, कृपया प्रस्थान करें।
2: चंपा, मैं जा रहा हूं।
1: जाओ,

0: जाओ बुद्ध गुप्त जाओ, ईश्वर तुम्हारा भला करे।
1: किंतु चंपा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी?
0: पहले सोचती थी तुमने ये जो दीप स्तंभ बनाया है इस पर आलोक जलाकर अपने पिता के समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे ये आकाश दीप।
1: विदा चंपा,
0: जाओ बुद्ध गुप्त जाओ।

0: आकाश दीप श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर। भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है: नायक केसे सिन्हा, चंपा अर्चना सोनी, नाविक राजीव नयन कुमार, जया यामिनी और बुद्धगुप्त संजय सिंह। रूपांतरकार थी संध्या त्रिपाठी। कार्यक्रम का संयोजन किया था कृष्णचंद्र सिन्हा ने और इस नाटक के निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता थे विशुद्धानंद।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक आकाशदीप। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार।

श्रोताओं को कुमुद का नमस्कार। सुंदर सजी बारात, चंपा कली लगी मोरी का किनारा, गोल गोल मोती जड़ा। पिता लोगों से पूछते हैं, बबुए की मोरी कैसी बनी है? चाचा पूछते हैं, बारात कैसी सजी है? अम्मा और चाची की खुशी के क्या कहने, एक हीरा लुटाती है, दूसरी मोहर।

विवाह के गीतों में एक होता है जोग। जोग के गीत गाकर, जोग की जड़ी पिलाकर दामाद को वश में रखने की कोशिश की जाती है। कन्या पक्ष की स्त्रियां कहती हैं, देखो दामाद जी, हम असली जोगिनी हैं, समझे? भेड़े को जैसे नाथ कर रखा जाता है, वैसे हम तुम्हें रखेंगी। तुमसे मुर्गे, कुकुर और बिल्ली की बोली बोलवाएंगी। दामाद बेचारा मन ही मन रोकर कहता है, हाय कैसे जोगिनियों के देश में ब्याह रचा दिया बाबा ने।

कन्यादान के गीत। आम के पत्तों पर बेटी के बाबा बैठे हैं, चंदन के पीढ़े पर दामाद। बेटी का कहना है, पहले गऊ और सोना दान हो जाए, फिर उसे दान किया जाए।

बगिया के बीचों बीच कोठी बनी है। छत पर पिताजी सोए हैं। पंखा झलते झलते माँ पूछती है, बेटी को दहेज में क्या क्या दे रहे हो? पिता ने कहा, सोना रूपा धेनु गाय के अलावा अपनी पुतुल जैसी बेटी जो मेरे घर का श्रृंगार है उसे भी तो दे रहा हूँ। बेटी सब सुन रही थी। उसने कहा, बाबूजी इतने से कैसे काम चलेगा, अम्मा की चेरी भी दे देना। बगिया में घूमते घूमते थक जाऊंगी, कुम्हला जाऊंगी तो बेनिया कौन ढुलाएगा।

राजा दशरथ की अयोध्या नगरी अपूर्व है। जैसे राजा दशरथ वैसे ही राजा जनक और उनकी जनकपुरी, जैसे राम वैसी सीता, इससे आगे कल्पना नहीं जाती। कोई पसगे में बैठता ही नहीं। विवाह का उछाह है, गया गजाधर, काशी विश्वनाथ, इंद्र इंद्रासन, पातालपुरी, वासुकीनाथ, सर्वत्र निमंत्रण भेजे गए हैं। तिल कुश और संपत्ति दान करने के बाद कन्या दान की बारी है। ब्रह्मा जी के हाथों में आम्र पल्लव के कंगन बंधे हैं। वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म महबूब की मेहंदी से इस गीत को, जिसके लिए स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने।
1: ये जो चिलमन है

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 17 जून 2026 को दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0612-2222500 एवं 0612-40-2639। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लें, 0612-2222500 और 0612-40-2639। रिकॉर्डिंग की तारीख 17 जून 2026 और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

मुकेश और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म गोरा और काला में। अगला गीत आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
4: आसमान में सिर उठाकर

0: ये बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

भूपेंद्र को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मौसम में। लीजिए आप सुनिए किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को, जो है फिल्म घर से।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म छोटी बहू के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत होता है यहीं पर संपन्न। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी

0: अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Inam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of G7 summit in Avignon, France. Tomorrow, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with U.S. President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in context of